वंदे मातरम। सुप्रभात। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आज दिन शनिवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 18वीं तिथि तदनुसार 9 मई 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 होने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा।

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। इस समय प्रातः के 5:59 हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: रमेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले 2 टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस सामने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:05 हो चुके हैं। आइए मिलकर आनंद लेते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना सौम्या दीक्षित के साथ।

राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, संकट हरना जिनका काम है, ऐसे रामचंद्र जी को हमारा बारंबार प्रणाम है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: हे माँ जगदम्बा भवानी, जीवन में भर दो निश्चल उत्कृष्ट भक्ति, हर ओर फैले उजियारा, संयम शांति उल्लास, तन मन की शक्ति। जय शेरावाली।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अभी आप आनंद ले रहे थे भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम वंदना सौम्या दीक्षित के साथ। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन बिंदु।
1: आज समर्पण का स्वरूप क्या होना चाहिए, प्रायः हम इसे समझ नहीं पाते। और मुझे लगता है हनुमान जी की कथा, राम जी की कथाएं हम श्रवण करते रहते हैं, तो हनुमान जी के जीवन चरित्र में एक दर्शन मिलता है कि एक बार हनुमान जी महाराज अयोध्या में राघवेंद्र सरकार के सभा में विराजमान थे और राघवेंद्र सरकार हनुमान जी की तरफ देख रहे थे। और जब हनुमान जी राम जी की तरफ देखते तो हनुमान जी को देखता हुआ देख करके राम जी के नेत्र दूसरी तरफ मुड़ जाते। यह घटना कई दिनों से माता जानकी जी देख रही थीं। एक दिन अंतःपुर में उन्होंने पूछा प्रभु से कि क्या कारण है कि आप हनुमान जी को देखते हो और हनुमान जी जब आपकी तरफ देखते हैं तो आप अपनी नज़र क्यों फेर लेते हो। तो राघवेंद्र सरकार ने कहा उसका इतना ऋण है कि आज तक जीवन में उसने इतने बड़े बड़े काम किए और मेरे लिए किए, फिर भी उसने जीवन में कोई अपेक्षा नहीं रखी। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने उसे कुछ नहीं दिया जिसने मेरे लिए सब कुछ किया। तो जानकी जी ने कहा तो आप उनसे कहिए कि क्या चाहिए आपको। तो राघवेंद्र सरकार ने कहा मैं कई बार पूछा और हनुमान ने कहा कि मेरे समर्पण को द्रव्य से तौलने की, चाहे पद से तौलने की आवश्यकता नहीं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे अंतर मन में यह भाव बार बार उदित होता है कि मुझे हनुमान को कुछ देना चाहिए। तो जानकी जी ने कहा जब वह कुछ नहीं लेते, चाहे आप कुछ नहीं दे पा रहे हो, तो एक सरल सहज उपाय है कि एक पत्र में आप कह दो, लिख दो कि हनुमान मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। अगले दिन सभा लगी, फिर प्रभु आसन पर विराजमान हुए और एक पत्र जानकी जी का कहा मान करके, और एक पत्र में उन्होंने लिखा कि हनुमान तुम्हारे ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। हनुमान जी आए, हनुमान जी के हाथ में उन्होंने धीरे से वह पत्र दे दिया। हनुमान जी ने पढ़ा कि मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, तो हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए और हनुमान जी ने कहा प्रभु देखिए आपकी कृपा मेरे समर्पण के दिव्यता को और श्रेष्ठ कर देता है कि प्रभु आप कहते हो कि हनुमान तुम्हारे कारण ही सुग्रीव को किष्किंधा का साम्राज्य मिला और विभीषण को लंका का साम्राज्य मिला, और दूसरे की बात छोड़ दो मुझे अयोध्या का राज्य भी तुम्हारे कारण मिला, लेकिन प्रभु अयोध्या का राज्य, किष्किंधा का राज्य, चाहे लंका का एक एक राज्य, एक एक पद प्राप्त हुआ, लेकिन नाथ पूर्ण समर्पण का भाव और आपके प्रति समर्पण का भाव मेरा था कि आप मुझे प्राप्त हो गए। कहने का आशय इस हनुमत चरित्र का मात्र इतना है कि जब आपका समर्पण शुद्ध होगा, जीवन में किसी के प्रति, किसी कार्य के प्रति अगर समर्पित हैं आप, समर्पण है, तो निश्चित है उस समर्पण का फल आपको प्राप्त होगा। अगर समर्पण में अशुद्धि है तो आप कोई कार्य कर रहे हो, पूर्ण समर्पित नहीं हो, तो आपको वह फल प्राप्त नहीं हो सकता जिस फल की आप कामना कर रहे हो। बिना मांगे हनुमान जी को जो प्राप्त हुआ, केवल एक समर्पित भक्त के कारण हनुमान जी महाराज चतुर्दिक पूज्य हुए। और मुझे लगता है कि संपूर्ण विश्व में हनुमान जी महाराज की पूजा इसलिए होती है कि जिन्होंने केवल रामानास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोस्मि हम रामे चित्तलदम सदा भोतमी भो राम मामुद्र, जिन्होंने राम के अलावा कुछ समझा ही नहीं, इतना समर्पण, इतना अद्भुत समर्पण। अगर ऐसा ही हमारे जीवन में भी समर्पण का भाव बने तो मुझे लगता है कि हमारा भी जीवन उस जीवन में वो प्राप्त हो सकता है कि जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। तो सबसे पहले हम विचार करें कि जिस कार्य के प्रति, चाहे जिस संबंधों के प्रति, जिससे हम कुछ अपेक्षा रखे हुए हैं, क्या हमारा समर्पण दिव्य है, क्या हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं कि नहीं है। आज पूर्ण समर्पण का ही देन है कि राघवेंद्र सरकार हनुमान जी महाराज से पूछते हैं कि तुम्हें बताओ क्या चाहिए। यह समर्पण का स्वरूप अद्भुत हनुमान जी के चरित्र से आपको प्राप्त होता है। तो जीवन में समर्पण का स्वरूप दिव्य रखिए, निश्चित है जो आप चाहते हो आपको प्राप्त होगा।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन बिंदु।

आइए जान लेते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संक्षिप्त रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में यानी कि 6:40 पर आप आनंद ले सकते हैं मानस गान का। देश गान आप सुन सकते हैं 7:10 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम 7:31 पर पूर्वा सुहानी में आप आनंद ले सकते हैं। 8:45 पर आकाशवाणी के 90 साल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम हिट्स सुपर हिट्स का समय रहेगा 8:45 पर, याद रखिएगा जरूर। जिले की हलचल लखनऊ से प्रसारित आप होता है ये कार्यक्रम, ये होगा 9:15 पर। देश गान का एक बार फिर से आनंद लेंगे 9:25 पर। सुगम संगीत का समय होगा 9:50 पर।

10:05 पर आप सुनेंगे गाते गुनगुनाते फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। लोकगीत का कार्यक्रम का समय रहेगा 11:05 पर। लोक रंग कलाकार हैं श्रीमती इंदु गुप्ता। 11:30 पर आप एक बार फिर से आनंद लेंगे गीतांजलि कार्यक्रम, जो फिल्म संगीत पर आधारित होगा। नाटक का समय होगा दिन में 12:00। एक लोरी वयस्कों के लिए।

गाने सुहाने फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम आप आनंद लेंगे 12:30 पर। सुगम संगीत का समय होगा 12:55 पर। महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत का समय होगा 1:15 पे। खेती किसानी कार्यक्रम का समय होगा 1:50 पर। हमारे सायकालीन प्रसारण सेवा में आप सुन सकते हैं कार्यक्रम युववाणी, समय होगा 5:05 पर। बालवाणी कार्यक्रम का समय होगा 5:15।

सायकालीन प्रसारण सेवा में ही आप सुनेंगे खेती बारी कार्यक्रम 6:10 पर, लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा 6:45 पर आप आनंद ले सकते हैं। देश हमार कार्यक्रम में आप सुनेंगे काव्य पाठ ब्रह्मानंद शुक्ला का और समय रहेगा शाम 7:00। प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंजाबी गीत और समय होगा 7:10। आज का संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे अनु मलिक को और समय होगा 7:31। हिंदी कार्यक्रम का समय होगा 8:00।

सायकालीन प्रसारण सेवा में ही आप सुनेंगे 8:15 पर सुगम संगीत, जिसमें आज की कलाकार है वनीता सिंह। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

राजा दशरथ ने कैकेयी को कई प्रकार से समझाया, अनुनय विनय की कि वो विवेक से सोच समझकर दूसरा वर मांगे, क्योंकि राम के बिना उनका जीवन नहीं रह पाएगा। किंतु राजा के कोमल वचन कैकेयी की क्रोधाग्नि में मात्र आहुति का काम कर रहे हैं। रानी की एक ही टेक है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहां आपकी माया नहीं चलेगी। या तो जो वर मैंने मांगा है वो दे, नहीं तो ना ही करके अपयश के भागी बने। सवेरा होते ही यदि राम मुनिवेश धारण करके वन को नहीं जाते तो हे राजन, निश्चय जानिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। इतना कहकर कैकेयी ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे क्रोध की नदी उमड़ी हो। दो वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का हठ उस नदी की तीव्र धारा है, मंथरा की प्रेरणा भंवर है, और क्रोध रूपी वो नदी राजा दशरथ को मूल रूप से ढहाती हुई विपत्ति के समुद्र की ओर ले चली है। राजा ने समझ लिया कि स्त्री के रूप में मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है। उन्होंने कैकेयी के चरण पकड़कर विनती की कि वो सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी न बने, वो उनका मस्तक मांग ले जो वो शीघ्र दे देंगे, राम के विरह में उन्हें न मारें। किंतु राजा की गुहार व्यर्थ हुई। उन्होंने जान लिया कि रोग असाध्य है। अत्यंत आर्तवाणी से हा राम कहकर वो पृथ्वी पर गिर पड़े।

0: अभी आप आनंद ले रहे थे मानस गान का। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details log on to www.ddindia.com।

0: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
1: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
0: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
1: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार, हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार। अब से कुछ ही देर में

0: भारतीयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। सुवेन्दु अधिकारी अद्य पश्चिम बंगाल राज्यस्य प्रथमस्य भाजपेति दलस्य मुख्यमंत्री रूपेण शपथ ग्रहणं करिष्यति। कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र शपथ ग्रहण समारोहः आयोज्यते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाहः, भाजपाध्यक्षः नितिन नवीनः, केन्द्रीय मंत्रिणः, एनडीए शासितानां राज्यानां मुख्यमंत्रिणः च शपथ ग्रहण समारोहे भागं ग्रहीष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। पूर्वं ह्यः श्री अधिकारीवर्यः राज्य भाजपा विधायिका दलस्य नेता निर्वाचितः अभवत्। कोलकाता नगरे गृहमंत्रिणः अमित शाहस्य उपस्थितौ विधायक दलस्य सभा अभवत्। सभायाः अध्यक्षः श्री शाहः अवदत् यत् सर्वे प्रस्तावाः सुवेन्दु अधिकारिणः पक्षे एव प्राप्तानि। भाजपा विधायिका दलस्य नेतृत्वे निर्वाचनानन्तरं श्री अधिकारी पश्चिम बंगस्य राज्यपालेन आर एन रविना सह मिलित्वा राज्ये प्रथमं भाजपा नेतृत्वस्य सर्वकारस्य निर्माणाय प्रतिज्ञां प्रदत्तवान्। विधानसभा निर्वाचने भाजपेति दलं ऐतिहासिकं विजयं प्राप्नोत्। टीएमसीति दलस्य 15 वर्षाणां शासनं च समापितम्। पुदुचेरी राज्ये राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधनस्य मुख्यमंत्री पदस्य प्रत्याशी एन रंगासामी इत्येषः उपराज्यपालेन के कैलासनाथन वर्येण सह मिलित्वा अग्रिम सर्वकारस्य निर्माणाय प्रस्तावः प्रदत्तवान्। श्रीरंगासामी बहुसंख्यायां विधायकानां समर्थनपत्राणि उपराज्यपालाय समर्पितवान्। रक्षानुसंधान विकास संघटनेन DRDO इत्यनेन भारतीय वायुसेनया च गुरुवासरे ओडिशा तटस्य समीपे टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन तारेति शस्त्रस्य प्रथमोड्डयन परीक्षणं सफलतया सम्पादितम्। तारेति भारतस्य प्रथमा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्रव्यवस्थास्ति या मार्ग निर्देशित युद्धोपकरणान् यथार्थ निर्देशित शस्त्रेषु परिवर्तयति। दुबई नगरे भारतस्य वाणिज्य दूतावासेन समुद्रे मृतस्य एकस्याः नौकायाः भारतीयस्य चालकदलस्य मृत्योः विषये शोकः प्रकटितः। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीये पटले सन्देशे कॉन्सुलेट जनरल इत्यनेन घटनैषा दुर्भाग्यपूर्णम् उक्तम्। सः पोतस्य स्वामिना सह निरन्तरं सम्पर्के अस्ति, अधिकविवरणानि च अन्वेष्टुं प्रयासरतः अस्ति। दूतावासेन आश्वासितं यत् अस्मिन् विषये सर्वविधसाहाय्यं प्राधान्येन प्रदीयन्ते। हॉर्मुज जलसन्ध्यां गतिरोधः तदा तीव्रः अभवत् यदा संयुक्तराष्ट्रसंघस्य सुरक्षापरिषदि अमेरिका समर्थितस्य प्रस्तावस्य प्रारूपम् ईरान देशेन निराकृतम्। तद्दोषपूर्णं राजनीतिना प्रेरितं चास्ति इति उक्तम्। तेहरानेन उक्तं यत् अयं प्रस्तावः विवादस्य समाधाने साहाय्यं न कृत्वा अवैधरूपेण कार्यं कर्तुं प्रेरयिष्यति। तेहरानेन संयुक्तराष्ट्रसंघस्य सदस्यराष्ट्रान् प्रस्तावितस्य प्रस्तावस्य समर्थनं न कर्तुं प्रार्थितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ दिल्ल्याः अरुण जेटलीति क्रिकेट क्रीडाङ्गणे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलं 8 पराजितम्। अद्य जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रीडाङ्गणे राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं तमिलनाडु में तमिल वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवी को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा है कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा में संबंधित था। ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। उधर अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को स्थिर करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की समुद्री गतिविधियों को सीमित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में फिर से बातचीत शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बैठक करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Suvendu Adhikari will take oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. The oath-taking ceremony will be held at the Brigade Parade Ground in Kolkata. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, BJP President Nitin Naveen, Union Ministers and Chief Ministers of all NDA-ruled states are expected to attend the swearing-in ceremony. Earlier, Mr. Adhikari was elected the leader of the state BJP Legislature Party. The Legislature Party meeting was held in Kolkata in the presence of the Home Minister yesterday. In Tamil Nadu, the uncertainty over formation of government under TVK Chief C. Joseph Vijay continues. The new twist came as IUML has rejected the reports of its support to TVK to form the government. Reports are also coming that the swearing-in ceremony, which was to take place today, will not be held. Earlier, TVK had claimed that the actor-turned-politician once again met the governor yesterday and staked claim to form the government, saying

ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। इस समय प्रातः के 7:10 हो चुके हैं। आइए आनंद लेते हैं देशभक्ति गीत का।

0: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:18 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
4: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ।
2: भारतीय आर्काइव्स,
0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में पहली बार बनेगी भाजपा की सरकार, शुभेंदु अधिकारी आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई मंत्रियों ने पूरी की स्वगणना की प्रक्रिया, जनगणना में हर नागरिक की भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश भर के जनपद न्यायालयों और तहसीलों में आज हो रहा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ आज हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जताया कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल कोलकाता में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध नेता चुना गया। बैठक के बाद श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
5: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: प्रदेश में 7 मई से डिजिटल जनगणना के अंतर्गत पहले चरण की स्वगणना

0: शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल ऑनलाइन माध्यम से जनगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है और इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। वहीं उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी कल अपना जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन भरा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा,
1: जनगणना का प्रथम चरण चल रहा है, मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या फिजिकल भर करके जनगणना की प्रक्रिया को शीघ्र शीघ्र पूरा करें। इससे जनगणना पूरी होकर के और आगे जो संवैधानिक कार्य हो पूरे हो सके, जनगणना प्रपत्र हमने ऑनलाइन भर दिया।
0: डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल, पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी कल स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की। लखनऊ स्थित यूनिसेफ कार्यालय में कल जनगणना संचालन क्षेत्रीय निदेशालय उत्तर प्रदेश ने यूनिसेफ के सहयोग से सेंसस मैटर्स फॉर चिल्ड्रन विषय पर जागरूकता और क्षमता विकास सत्र आयोजित किया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि स्वगणना जनगणना 2027 का एक प्रमुख नवाचार है। यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन आज और कल किया जाएगा। दोनों दिन परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा के लिए कुल 4,64,605 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने कल 17 जनपदों के 319 परीक्षा केंद्रों की तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। 11 मई को आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना, प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। प्रदेश में संचालित स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था को समाप्त कर सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में संचालित करने के संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बताया कि RDSS योजना के अंतर्गत स्थापित सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्टपेड मोड में परिवर्तित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब मई 2026 की विद्युत खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाएगा और उपभोक्ताओं को बिल SMS और WhatsApp के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क अथवा संचार संबंधी समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमेटिक रीडिंग प्राप्त नहीं होगी, वहाँ एजेंसियों के माध्यम से मैनुअल रीडिंग लेकर समय से बिल उपलब्ध कराया जाएगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: कानपुर में कल सांसद रमेश अवस्थी ने जरीब चौकी रेलवे ओवरब्रिज का भूमि पूजन किया। करीब 320 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह ओवरब्रिज जाम की समस्या से राहत दिलाएगा। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार में विकास की गति तेजी से बढ़ी है। प्रदेश के होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री

0: धर्मवीर प्रजापति ने कल मिर्जापुर में 28 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले मंडलीय होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार होमगार्ड्स के हित में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आकाशवाणी भवन से इस मैराथन को रवाना किया। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
1: हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
0: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि यह आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
2: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक इस पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
3: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने कई जगहों पर तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि कल के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 मई से हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में पहली बार बनेगी भाजपा की सरकार। शुभेंदु अधिकारी आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई मंत्रियों ने पूरी की स्वगणना की प्रक्रिया। जनगणना में हर नागरिक की भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश भर के जनपद न्यायालयों और तहसीलों में आज हो रहा है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ आज हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जताया कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। Namaskar.

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान। सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद। अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त। यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक। जब भी आप चलाएं कोई वाहन, ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details log on to www.ddindia.com।

शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आपने सुना शर्मिली फिल्म से गीत, नमक हराम फिल्म से गीत अनामिका से और काजल से। आइए अब सुनते हैं हमराज फिल्म से गीत।

हमराज फिल्म के इस गीत के साथ ही समाप्त होती है हमारे आज की फिल्म संगीत का कार्यक्रम पूर्वा सोहानी। मीडिया वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्स और FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।

0: नीमा सैंडल, हर पल चंदन का एहसास।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार।
2: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
3: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल RN रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
2: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
4: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष द्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
2: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
4: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
2: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। IUML ने TVK को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले TVK ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। AMM के पार्टी के नेता TTV दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्ना रुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक S कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें AIADMK के महासचिव एडापड्डी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में LVMH मोइट हेनेसी लुई विटो ACE के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का

0: संकल्प
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।

0: और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
3: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it called Manav Kavika. Radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने

0: की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोक सत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी। राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सुवेंदु अधिकारी आज सुबह मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह हलफ बरदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने केरलम, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और फुटबॉल में भारत ने 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एशिया कप के क्वार्टर फाइनल्स में पहली बार जगह बनाकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। सुवेंदु अधिकारी आज मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। हलफ बरदारी की तकरीब कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: रियासत नई सरकार की हलफ बरदारी की तारीखी घड़ी का मुशाहदा करने के लिए तैयार है। ये तकरीब कोलकाता के आइकॉनिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। हालिया इख्तिताम पजीर असेंबली इंतखाबात में फैसलाकुन वोट हासिल करने के बाद रियासत की सियासी तारीख में पहली मरतबा भारतीय जनता पार्टी की क्यादत वाली सरकार बाकायदा तौर पर ओहदा संभालेगी। हलफ बरदारी की तकरीब में मुल्क भर से पार्टी की हिमायत करने वाले लाखों अफराद, सियासी लीडरों और मुअज्जज मेहमानों की आमद का इम्कान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी की बरसर इक़्तदार रियासतों के वज़ीर आला इस तकरीब में शिरकत करेंगे। गवर्नर RN रवि वज़ीर आला और नई काबीना के मेम्बरों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। पार्लिमानी पार्टी के नौमंतखब लीडर सुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि रियासत में इदारा जाति बदरवानी की छानबीन के लिए एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन कायम किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि RG खर अस्पताल और संदेश खाली जैसे वाकयात के सिलसिले में भी तहकीकात शुरू की जाएगी। अधिकारी ने इस जीत को बीजेपी कारकुनों की इज्तिमाही कोशिशों को मौसूम करते हुए पार्टी के मंशूर में शामिल सभी वादों को वक्त पर पूरा करने का अहद किया। ये तकरीर 25वें बैशाखी के मौके पर मुनक़िद की जा रही है, जो रविंद्रनाथ टैगोर का यौम पैदाइश है। इससे तकरीब की सकाफती और अलामती अहमियत बढ़ जाएगी। पूरे वस्ती कोलकाता में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रोग्राम को खुशसूबी के साथ मुनक़िद कराने को यकीनी बनाने के लिए हज़ारों पुलिस अहलकारों को तैनात किया गया है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मगरबी बंगाल में बीजेपी हुकूमत भारत की सरहदों को महफूज बनाएगी और कौमी सलामती के लिए सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करेगी। कल कोलकाता में मगरबी बंगाल के 9 मंतखबा बीजेपी अरकान असेंबली से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि बीजेपी की जीत का मकसद अपनी तंजीम को तौसी देने या इसके नजरियात को जवाब फराहम करने का नहीं है, बल्कि इस जीत का मकसद मुल्क की कौमी सलामती की सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करना है। उन्होंने कहा कि आसाम, त्रिपुरा और अब मगरबी बंगाल में बीजेपी की हुकूमतें सरहद को नाकाबिले तस्खीर किले में तब्दील कर देंगी।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: जनाब शाह ने जोर देकर कहा कि बीजेपी हुकूमत में दरअंदाजी और गायों की स्मगलिंग नामुमकिन हो जाएगी। तमिलनाडु में TVK के सरबराह सी जोसेफ विजय के तहत सरकार की तश्कील के सिलसिले में अब भी गैर यकीनी सूरत हाल है। नया मोड़ ये आया है कि IUML ने हुकूमत की तश्कील के लिए TVK को अपनी हिमायत की खबरों से इनकार कर दिया। एक और वाकये में ये खबरें भी आ रही हैं कि हलफ बरदारी की तकरीब जो आज मुनाकिद होनी है मुनाकिद नहीं होगी। प्रोफेसर कादिर महीउद्दीन की सरबराही वाली IUML ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिजागा वेत्री करगम को हिमायतनामा नहीं दिया है। एक और हैरानकुन वाकया यह है कि AMMK पार्टी के लीडर TTV दिनाकरन ने गवर्नर से रुजू किया है और इस कामराज की तरफ से हिमायतनामा पेश किया है, जो मन्नार दुई से मुंतखबा वाहिद MLA हैं। उन्होंने यह हिदायतनामा AIADMK के जनरल सेक्रेटरी एडापड्डी पलानी स्वामी को वजीर आला बनाने के हक में पेश किया है। एक रिपोर्ट।
3: तमिलनाडु में जहां 85% से ज्यादा वोट डाले गए हैं, अभी तक नई हुकूमत और वजीर आला के तकरूर का इंतजार है। नई हुकूमत की तश्कील में इसलिए ताखीर हो गई है कि वाहिद सबसे बड़ी पार्टी टीवीके भरपूर अक्सरियत 118 की तादाद तक अभी तक नहीं पहुंच सकी है। अलबत्ता वीसीके की तरफ से महज एक और हिमायतनामा मौसूल हुआ है, जिसे एक हतमी कदम माना जा सकता है, क्योंकि पार्टी के पास दो अरकान असम्बली आ गए हैं, जिसके बाद ये तादाद 118 हो जाएगी। तब तक किसी फैसले का इंतजार रहेगा। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सब्रमणि को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS मुकर्रर किया है। वजारत दिफा का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि ओहदा संभालने की तारीख से अगले अहकाम तक फौजी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमात अंजाम देंगे। वो जनरल अनिल चौहान की मुलाजमत की मुद्दत 30 मई को मुकम्मल होने के बाद अपना ओहदा संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि एक इंतहाई मुअज्जज़ अफसर हैं, जिनकी 4 दहाइयों से ज्यादा की शानदार खिदमात हैं। वो सितंबर 2025 से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट में मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल कमांड के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने मगरबी और शिमाली महाजों पर अहम ऑपरेशनल फॉर्मेशंस की कमांड भी की है। हुकूमत ने वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को बहरिया का अगला सरबराह मुकर्रर किया है। वजारत दिफा ने कहा है कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन इस वक्त मगरबी बहरिया की कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। एडमिरल तकरीबन 4 दहाइयों की शानदार खिदमात हैं। भारतीय बहरिया में मुख्तलिफ ओहदों पर रहते हुए उनका ऑपरेशनल स्ट्रेटजिक और जवानों से मुतालिक बंदोबस्त का काफ़ी तजर्बा है। वो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह लेंगे, जो 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 का कल बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। ये तकरीबात मंदिर की तामीर नौ के 75 साल पूरे होने के मौके पर मनाई जा रही हैं। इन तकरीबात में मुल्क भर के अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: सोमनाथ के मंदिर में सोमनाथ अमृत पर्व पठात्मक अति रुद्र के

0: साथ शुरू हो गया है। आज 3 रोज यज्ञ का भी आगाज होगा, जिसके दौरान सामग्री के तौर पर तकरीबन 125,000 अशिया मुकद्दस आग की नज़र की जाएंगी और मौजूदा बैन अल-अक़वामी तनाज़ात के दौरान आलमी अमन और इंसानियत की भलाई के लिए दुआ की जाएगी। ये तकरीबात 11 मई को इख्तिताम पज़ीर हो जाएंगी, जब मंदिर में अज़ीम उश्शान तरीके से कुंभाभिषेक का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें 11 मंदिरों का पानी नज़र किया जाएगा। अहमदाबाद से अपर्णा खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ईरान की तरफ से अमेरिका की हिमायत वाली करारदाद के एक मुसवदे को मुस्तरद किए जाने के बाद आबनाए हुरमुज़ पर तातुल में शिद्दत आ गई है। ईरान ने कहा है कि इस करारदाद में खामियां हैं और इसके पीछे सियासी मकसद कारफरमा है। ईरान ने कहा है कि इस तजवीज़ से गैर कानूनी इकदाम को कानूनी जवाब हासिल होगा, बजाय इसके कि इससे तनाज़े को हल करने में मदद मिले। ईरान ने अक़वामे मुत्तहिदा के रुकन मुल्कों से अपील की है कि वो इस मुजवजा करारदाद की हिमायत न करें। तफसील हमारे नमानिगार से।
0: इस करारदाद को अमेरिका के साथ साथ बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर की हिमायत हासिल है और इसमें तवानाई की दुनिया की सबसे अहम गुजरगाह में जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए कहा गया है। अमेरिका ने ईरान पर कमर्शियल जहाज़रानी के लिए ख़तरा पैदा करने और बहरी ट्रैफिक को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम आयद किया है। इसी दौरान ईरान की फ़ौज ने कहा है कि अमरीकी फ़ौजों ने मुत्तहिदा अरब इमारात में फुजैरा बंदरगाह के नज़दीक ईरान के एक तेल टैंकर और एक और जहाज़ को निशाना बनाया था, जबकि इत्तला के मुताबिक अमरीका के फ़दाई हमलों में बंदर खमीर, सिरिक और किस्म जजीरे में शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। इधर ईरान का फ़दाई निज़ाम भी अपने दिफा के लिए सरगर्म है। समंदर में बढ़ती हुई इस महादाराई में इंसानी जानें भी तलफ हुई हैं, लिहाजा दुबई में भारत के मिशन ने एक जहाज़ में सवार भारतीय हमले के एक अहलकार की हलाकत पर दुख का इजहार किया है और इसे एक अफसोसनाक वाक़ा करार दिया है। इस सबसे अलग ईरान ने खलीज ओमान में एक टैंकर पकड़ लिया है, जबकि अमरीका ने कहा है कि उसने उसी रोज 2 जहाज़ों को नाकारा बनाया है। कल के इन वाक़ात के बावजूद सिफारती ज़राए ने काम करना बंद नहीं किया है। 14 निकाती अमरीका ईरान मुजवजा फ्रेमवर्क अपनी जगह मौजूद है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: अमरीका ने 10 अफराद और कंपनियों के खिलाफ बंदिशों का ऐलान किया है, जिनमें चीन और हांगकॉन्ग के अफराद और कंपनियां भी शामिल हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने हथियार और शाही ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने में दरकार खाम मवाद हासिल करने की ईरान की कोशिशों में मदद दी है। तफसील हमारे नामे निगार से।
2: अमरीका की तरफ से ये बंदिशें सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदर शी जिनपिंग के साथ एक मीटिंग के लिए चीन जाने के मंसूबे से कुछ दिन पहले आयद की गई हैं, क्योंकि ईरान के साथ जंग खत्म करने की कोशिशों में तातुल पैदा हो गया है। एक बयान में अमरीकी महकमा खजाना ने कहा कि वो ईरान के फौजी सनअती ठिकाने के खिलाफ इकतसादी कार्रवाई करने को तैयार है, ताकि ईरान को हथियार बनाने की सलाहियत को असर नौ परवान चढ़ाने से रोका जा सके। महकमे ने कहा है कि वो एयरलाइंस समेत ऐसी किसी भी गैर मुल्की कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने को भी तैयार है जो ईरान की नाजायज तजारत की हिमायत करती हो। वो उन गैर मुल्की माली इदारों पर दूसरे दौर की बंदिशें आयद कर सकता है जो ईरान की कोशिशों में मदद दे रहे हैं, जिनमें वो इदारे भी शामिल हैं जो चीन की छोटी आज़ाद रिफाइनरी से वाबस्ता हैं। माहिरीन का कहना है कि महकमे ख़जाना की इस कार्रवाई का मकसद आबनाए हुरमुज़ और इलाकाई इत्तेहादियों में जहाज़ों की आमदोरफ्त में धमकी देने की ईरान की सलाहियत के खिलाफ कार्रवाई करना है। न्यूज़ डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के दरमियान एक 3 रोज़ा जंग बंदी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यह आर्जी माहदा दूसरी जंग अजीम में उस वक्त की सोवियत यूनियन के रोल की याद में मनाई जाने वाली रूसी फतह के दिन की तकरीबात के मौके पर किया गया है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में जनाब ट्रंप ने कहा कि यह जंग बंदी 9 मई से 11 मई तक रहेगी और इसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान किसी भी तरह की फौजी कार्रवाई मुअत्तल रहेगी। उन्होंने कहा कि इस माहदे में दोनों तरफ से 1,000 कैदियों को रिहा किया जाना भी शामिल है। भारत के महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिन में केरलम, माहे, तकसीब, लक्षद्वीप, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक आज छत्तीसगढ़, गंगाई मगरबी बंगाल, झारखंड और विदर्भ में गरज चमक और 50 किलोमीटर फी घंटा से की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। फुटबॉल में भारत ने पहली बार 17 साल से कम उम्र के खवातीन के AFC एशियन कप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करके तारीख रकम की है। भारत ने कल चीन के शहर सुजाऊ में अपने ग्रुप बी के फाइनल में लबनान को 4-0 से हराया। भारत के लिए प्रतिका बर्मन ने 7वीं और 85वें मिनट में और देवी सेंजम ने 36वें और जोया ने 72वें मिनट में गोल किए। इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने पर भारत 2026 के फीफा अंडर 17 खवातीन आलमी कप में अपनी जगह बना लेगा। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
0: शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने मगरबी बंगाल में बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी को लीडर मुंतखब किए जाने के बाद रियासत के उजाला के तौर पर उनके नाम के ऐलान की खबर को शाये सुर्खी बनाया है। हलफबरदारी की तकरीब आज दिन में 11 बजे होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत सरकर्दा लीडर इसमें शिरकत करेंगे। मुश्तरका कमांडरों की कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन कमांडरों से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि जंग में बढ़तरी और दुश्मन से आगे रहने के लिए हैरत का अंसुर पैदा करें। इंतखाबी कमीशन ने असेंबली इंतखाबात और ज़मीनी इंतखाबात से मुतालिक इंडेक्स कार्ड और शुमारती आदाद व शुमार जारी किए। DRDO ने मकामी ग्लाइड हथियारों के निज़ाम तारा का कामयाब तजर्बा किया। इन खबरों को रोजनामा प्रताप ने पहले सफ़े पर जगह दी है। भारत और सिंगापुर इंसदादी दहशतगर्दी और सरहद पार जरायम पर मुश्तरक वर्किंग ग्रुप के 5वें इजलास में दहशतगर्दी और सरहद पार जरायम के लिए ताउन बढ़ाने पर मुत्तफिक। ब्रिक्स की सदारत के दौरान भारत MSMEs ताउन को फ़रोग देने की तैयारी में। इन खबरों को रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने खसूसी तौर पर शाये किया है।
1: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह हलफ बरदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने केरलम जनूबी अंदरूनी कर्नाटक तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और फुटबॉल में भारत ने 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एशिया कप के क्वार्टर फाइनल्स में पहली बार जगह बनाकर तारीख रकम की है। इसी के साथ ये खबरनामा ख़त्म हुआ।

आकाशवाणी के 90 साल होने पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इसी पर आधारित सुनते हैं कुछ हिट्स, सुपर हिट्स फिल्म्स के गीत।

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है CSU मुंबई @gmail.com।

अभी आपने राबता फिल्म से टाइटल ट्रैक सुना, आइए अब सुनते हैं दो गीत, बेताब फिल्म से और पीके फिल्म से। ये रहा

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिट्स सुपर हिट्स मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल।
0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से जिले की हलचल।
6: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए शामली और अमेठी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं शामली जिले की हलचल, आलेख और स्वर है अनुज सैनी का।
7: शामली जिले में जिलाधिकारी आलोक यादव ने गेहूं खरीद की कलेक्ट्रेट में समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्रय केंद्रों पर किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और गेहूं का भुगतान नियमानुसार 48 घंटे के भीतर किसानों के आधार लिंक बैंक खातों में पहुंच जाना चाहिए। DM ने चेतावनी दी कि निरीक्षण के दौरान यदि कोई अनियमितता मिली तो संबंधित केंद्र प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला खाद्य विपणन अधिकारी प्रज्ञा शर्मा ने बताया कि जनपद में 30 मार्च 2026 में कुल 29 क्रय केंद्रों के माध्यम से गेहूं की खरीद जारी है। इसमें खाद्य विभाग के 4, PCF के 16, PCU के 6 और भारतीय खाद्य निगम के 3 केंद्र संचालित है। अब तक जिले में 1934 किसानों से 7,504 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। भुगतान के संबंध में बताया कि अब तक 1455 किसानों को 1526 लाख रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी क्रय केंद्र सुबह 9 बजे अनिवार्य रूप से खुल जाने चाहिए। केंद्र प्रभारियों को अपनी उपस्थिति ऑनलाइन करनी होगी। शामली जिले के ग्रामीण अंचल की गली मोहल्लों और बाजारों को बिजली कटौती के दौरान भी दूधिया रोशनी से जगमग रखा जाएगा। बाबू कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर योजना के तहत जिले को कुल 275 सोलर लाइटों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिला प्रशासन ने इस पूरी परियोजना के लिए 59,11,675 रुपए का बजट निर्धारित किया है। परियोजना अधिकारी यूपी नेड़ा RB वर्मा ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए तय की नई कार्य योजना के तहत जिले की 20 ग्राम पंचायतों का चयन किया जाएगा जहां 150 सोलर लाइट्स लगाई जाएंगी। योजना के तहत लगाई जाने वाली प्रत्येक लाइट की कीमत 21,497 रुपए तय की गई है। ये लाइटें आधुनिक तकनीक से लैस होंगी। 12 वोल्ट और 18 वाट की इन लाइट्स में रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लागू होगा जिससे अगले 5 वर्षों तक इनकी कार्य क्षमता की ऑनलाइन निगरानी की जा सकेगी। इसमें लाइट खराब होने पर तत्काल मरम्मत सुनिश्चित हो सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के व्यवसायिक केंद्रों और बाजारों के लिए 125 सोलर लाइट का एक अलग लक्ष्य मिला है। इन्हें उन स्थानों पर लगाया जाएगा जहां दुकानों की संख्या अधिक है और जहां बस स्टैंड और सार्वजनिक चौक स्थित है। शामली जिले में ऊर्जा निगम ने बिजली घरों पर लंबे समय से जमे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सख्त रुख अख्तियार किया है। अधिशासी अभियंता ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से तैनात कर्मियों के लिए नए आदेश किए हैं। इसके तहत अब कोई भी कर्मी अपनी गृह क्षेत्र या एक ही स्टेशन पर वर्षों तक तैनात नहीं रहेगा। अधिशासी अधिकारी सौरभ पाठक ने नए आदेश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को उसके निवास स्थान वाले क्षेत्र के STKV फीडर या सब स्टेशन पर तैनात नहीं किया जाएगा। शामली में कृषि विभाग ने नियमों की अनदेखी करने वाले 358 कीटनाशी विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई की है। शासन के आदेश अनुसार सभी विक्रेताओं को एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन प्रणाली IPMS पोर्टल पर पंजीकरण और मासिक रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य था, लेकिन निश्चित समय सीमा बीत जाने के बाद भी जिले के 900 में से 358 विक्रेताओं ने इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया। जिला कृषि रक्षा अधिकारी प्रदीप यादव ने पारदर्शिता और नियमों के उल्लंघन को देखते हुए इन सभी के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 28 दिनों के भीतर पंजीकरण और डेटा फीडिंग का कार्य पूरा नहीं किया गया तो इन लाइसेंसों को स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा। वेस्ट यूपी का शामली जिला, जिसे दुनिया अब तक केवल शुगर बाउल के नाम से जानती थी, वहां अब खेती का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। जिले के प्रगतिशील किसानों ने केवल गन्ने पर निर्भरता छोड़ खेती के विविधीकरण को अपना लिया है। अब शामली के खेतों में गन्ने की मिठास के साथ सरसों की पीली चादर और दलहन की महक एक नई ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कहानी लिख रही है। सरकारी आंकड़े इस बदलाव की तस्दीक करते हैं। साल 2023 तक जिले में तिलहन का रकबा महज 650 हेक्टेयर था, जो वर्तमान साल 2026 में 10 गुना बढ़कर 7000 हेक्टेयर पार पहुंच गया है। अकेले रबी सत्र में सरसों की रिकॉर्ड बुआई हुई है। मृदा सुधार के लिए किसान अब उर्द और मूंग जैसी दलहनी फसलों की ओर भी तेजी से रुख कर रहे हैं। इस परिवर्तन का मुख्य श्रेय जिला कृषि विभाग के संवाद और इंटरनेट के माध्यम से बढ़ी जागरूकता को जाता है। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव की टीम ने चौपालों और सोशल मीडिया के जरिए किसानों को नई किस्मों और फसल चक्र की जानकारी दी। किसान अब इंटरक्रॉपिंग यानी सह फसली खेती के जरिए एक ही खेत से दोहरा लाभ कमा रहे हैं। गन्ने के बीज, सरसों और आलू उगाकर लागत कम की जा रही है, वहीं पॉपुलर के पेड़ और आम के बाग किसानों के लिए सुरक्षित निवेश का जरिया बन गए हैं। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया,
8: जनपद शामली में दलहन तिलहन निर्भरता अभियान के अंतर्गत दलहन तथा तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए जनपद में गन्ने के साथ दलहन और तिलहन की सह फसली खेती तथा दलहन तिलहन की खेती के अंतर्गत जनपद में दलहन तिलहन के क्षेत्रफल में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। इसमें कृषि विभाग के द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान तथा उनके द्वारा वितरित निःशुल्क मिनी किट तथा उच्च गुणवत्ता के बीच की बहुत बड़ी भूमिका रही है।
6: शामली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अमेठी जिले की हलचल। आलेख है रजनीश सिंह का।
9: जनगणना 2027 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी संजय चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनगणना के प्रथम चरण, व्यवस्थाओं, प्रशिक्षण एवं जन जागरूकता से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि जनगणना 2027 के अंतर्गत प्रथम चरण में मकानों की गणना की जाएगी, जो दिनांक 7 मई से 21 मई 2026 तक संचालित होगी। इसके पश्चात 22 मई से 20 जून तक हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का विस्तृत कार्य संपन्न किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व अर्पित गुप्ता ने स्वगणना प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस बार जनगणना में डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है। नागरिक स्वयं पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे, जिससे डेटा संग्रहण अधिक तेज, सटीक और पारदर्शी होगा। उन्होंने बताया कि स्वगणना के लिए पोर्टल बहुभाषीय, सुरक्षित एवं उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है, जिसमें मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन, ओटीपी सत्यापन, पता दर्ज करना, मानचित्र पर लोकेशन चिन्हित करना तथा प्रश्नावली भरकर SC ID प्राप्त करना शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि स्वगणना से फील्ड कर्मचारियों का कार्यभार कम होगा तथा डेटा की गुणवत्ता बेहतर होगी, क्योंकि जानकारी सीधे नागरिकों द्वारा भरी जाएगी। इसके अतिरिक्त यह प्रक्रिया 24/7 उपलब्ध रहेगी, जिससे व्यस्त एवं प्रवासी परिवारों को भी सुविधा मिलेगी। जनगणना की तैयारी के अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें मास्टर ट्रेनर, सुपरवाइजर, प्रगणक एवं अन्य विभागीय अधिकारियों को शामिल किया गया है। साथ ही जन जागरूकता हेतु मीडिया, सामाजिक संगठनों, शिक्षण संस्थानों और विभिन्न विभागों के माध्यम से अभियान चलाया जाएगा। बैठक में यह भी बताया गया कि स्वगणना को बढ़ावा देने के लिए दिवस बार कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसके तहत अलग अलग दिनों में प्रशासन पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, महिला समूह और अन्य वर्गों को जोड़कर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर, पंचायत भवन एवं शहरी वार्ड कार्यालयों में सहायता केंद्र स्थापित कर नागरिकों को सहयोग प्रदान किया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनगणना कार्य को गंभीरता से लेते हुए समन्वय के साथ करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कोई भी क्षेत्र या परिवार छूटने न पाए। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर गौरीगंज में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी संजय चौहान द्वारा किया गया। यह कार्यशाला महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशों के क्रम में आयोजित की गई, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं, रिटायर्ड महिला शिक्षकों एवं महिला समूहों को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जनपद में बड़े हर्षोल्लास, उत्साह और उमंग के साथ मनाई गई। सभी सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालयों में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही विविध कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी संजय चौहान, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुप्ता, अपर जिलाधिकारी न्यायिक अनिल चतुर्वेदी सहित अन्य अधिकारियों कर्मचारियों ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वाराणसी स्थित कंपोजिट विद्यालय शिवपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में स्कूल चलो अभियान शैक्षिक सत्र 2026-27 का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जनपद अमेठी के विकास भवन स्थित प्रेरणा सभागार में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अधिकारियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी उपस्थित रहे। प्रसारण उपरांत जिलाधिकारी संजय चौहान द्वारा नवीन शैक्षिक सत्र में प्राथमिक विद्यालय माधोपुर में नामांकित छात्र छात्राओं का स्वागत किया गया। इस अवसर पर बच्चों को स्कूल बैग व स्टेशनरी वितरित की गई, जिससे उनमें शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़े। कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं नामांकन अभियान में सराहनीय योगदान देने वाले 11 शिक्षकों को जिलाधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।
6: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है, आइए मिलकर आनंद लेते हैं देशभक्ति गीत का।

0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है, आइए सुनते हैं उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।
1: सर अपने अफसाने को सामीन के सामने पेश करने की कोशिश की है आज की अफसाना निगारा नुसरत शमसी ने, तो आइए समाप्त करते हैं उनका अफसाना सफेद पैराशूट।
2: मुझे सफेद रंग इस हद तक पसंद है कि मैंने कभी जिंदगी में कोई दूसरा रंग पहना ही नहीं, या यूं कह लो कि जब से होश संभाला तब से मेरा बचपन कितना रंगीन गुजरा इसका मुझे इल्म नहीं। हाँ, जब से मेरी माँ ने मुझे सफ़ेद पैराशूट की कहानी सुनाई, उन्होंने इस रंग को मेरे अंदर जैसे जमा सा कर दिया था, पेस्ट कर दिया था, और वो इतना पुख्ता रंग चढ़ाया कि फिर मैं ज़िंदगी भर सफ़ेद रंग में ही अपनी दुनिया बसा बैठा। जब मैं 3 साल का था तो मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ, जिसकी हल्की हल्की छवि मेरे जहन में है, उनका चलना, उठना, बैठना, आवाज़ देना, प्यार करना, मेरे कपड़े बदलना, मेरी ज़िदें पूरी करना, मेरे काले होते दांतों की फिक्र, हर सुबह ब्रश कराते वक्त समझाना, अगर मेरा शू निकल जाता तो सुबह सुबह मुझे नहला धुला कर तैयार करना, ये सब मुझे हल्का हल्का याद है। शक्ल इसलिए नहीं भूल पाया कि ज़माना कैमरे का था। हाँ, तो जब मैं 3 साल का था कि अचानक उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी। अब वो अक्सर अक्सर काम करते लेट जाया करती, फिर वो जल्दी जल्दी डॉक्टर के यहाँ जाने लगी। कभी उनके हाथ में सुई लगी होती तो कभी सर में पट्टी बंधी होती। रफ्ता रफ्ता वो लगातार बिस्तर पर रहने लगी। मैं और मेरी बहन, जिसकी उम्र 5 साल के करीब रही होगी, अब हमें कभी दादो और कभी नानों के यहाँ रहना पड़ता। अब जब भी मम्मी की तबीयत बेहतर होती है और हम दोनों के करीब होती, हमें कोई ना कोई कहानी ज़रूर सुनाया करती। कभी जंगल और जानवरों की, कभी परियों की, कभी फरिश्तों की, कभी नबियों की। फिर उन्होंने एक बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ़ किस्म की कहानी सुनाना शुरू कर दी, जिसे सुनकर मैं और मेरी बहन बहुत हैरान हुए। वो कहानी उन्होंने फिर हर रोज़ सुनाना शुरू कर दी, जैसे उस कहानी के किरदार बन गए। अब हम वो कहानी मम्मी को सुनाया करते थे। इन दिनों हम तीनों बहुत ही खुश रहा करते थे, हालांकि मम्मी की सेहत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। अब उन्हें कई कई दिन डॉक्टर के यहाँ रहना पड़ता था, लेकिन जब भी उनके करीब जाते

0: मुस्कुराकर हमारा जहन बदलने लगती और बातें करते करते किसी न किसी तरह हमारी बातों का इख्तिताम सफ़ेद पैराशूट वाली कहानी पर होता। हाँ, उसमें दिलचस्पी पैदा करने के लिए मम्मी हर रोज़ कुछ नई बात शामिल कर देती। वो कहानी कुछ यूँ सुनाया करती थी कि बच्चों, एक नई कहानी सुनो। जैसे हमारी ये ज़मीन है और आसमान है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने हमारे लिए और ज़मीन और आसमान यानी दूसरी दुनियाएं बनाई हैं। जिस तरह हम यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी गाड़ी, बाइक या जहाज़ पर सफ़र करते हैं, बिल्कुल उसी तरह दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता भी बिल्कुल अलग है। जिस तरह पानी में बग़ैर तैराकी का लिबास पहने हम तैर नहीं सकते और अलग किस्म के कपड़े पहने बगैर हम तैराकी नहीं कर सकते कि डूब जाने का ख़तरा होता है, बिल्कुल उसी तरह उस दुनिया में जाने के लिए सफ़ेद पैराशूट पहनना पड़ता है। जाने वाले को एक ख़ास किस्म के बेड पर लेटना पड़ता है। वो नहा धोकर सफ़ेद पैराशूट पहनता है। उसे खामोश भी रहना पड़ता है और आंखें भी बंद रखना पड़ती हैं। फिर एक और ख़ास जगह होती है, जैसे जहाज़ों के उड़ने की जगह ख़ास होती है, बिल्कुल वैसी ही उसका भी एक मैदान होता है और उस दुनिया में जाने का रास्ता भी बिल्कुल अलग है। सब लोग मिलकर उससे उस मैदान में छोड़ आते हैं। फिर अल्लाह ताला सफ़ेद परों वाले फरिश्ते को गाड़ी लेकर भेजते हैं और लोग वहाँ दूसरी दुनिया में जाकर रहने लगते हैं। हम दोनों बहन भाई मम्मी का मुंह हैरत से तका करते। फिर मैंने हैरानी से पूछा, फिर ये कि हो सकता है कि मैं कुछ दिनों बाद वहाँ उस दुनिया में रहने चली जाऊँ? हमें लेकर जाएंगी? मेरी बहन ने मासूमियत से पूछा। नहीं नहीं, वहाँ छोटे बच्चे नहीं जाते। तो फिर आपके बगैर कैसे रहेंगे? उसने फिर सवाल किया। ये बताना तो मैं भूल ही गई कि बिल्कुल आप जैसे मेरे बच्चे वहाँ भी हैं, बल्कि उनके नाम भी यही हैं जो अभी तक मेरे बगैर रह रहे हैं। अब मैं उनके साथ रह लूँगी। आप लोग पापा को तंग नहीं करना, रोना धोना बिल्कुल मत, और जो मैं समझाती हूँ उसे याद रखना और अच्छा इंसान बनना, खूब पढ़ना लिखना, बड़ा आदमी बनकर दिखाना। मैं वहाँ की दूरबीन से देखती रहूँगी। हो सकता है आप लोग अच्छे बच्चे बने रहें तो मैं वापस आ जाऊँ, पर मेरी एक शर्त है, इस बार मैं शक्ल बदल कर आऊँगी। क्यों मम्मी, ऐसा क्यों? ये भी तो देखना है कि मेरे बच्चे मुझे पहचानते हैं कि नहीं। वो मुस्कुराकर हमारे पेटों में गुदगुदाती तो समझ गए ना, मेरे दोबारा आने पर मुझे अच्छे बच्चे बने हुए मिलना और खा पी कर थोड़े बड़े भी हो जाना। अशू, तुम तो मुझे निकाल लेना, बड़े हो जाना पापा की तरह, वो फिर गुदगुदाती। और हाँ, ये टॉप सीक्रेट है, अभी किसी को बताना मत। वो हमारे कान में फुसफुसाती और फिर सीने से लगाकर भींच कर प्यार करती। जब वो हमें अलग करती तो लगता कि रोई हैं, लेकिन वो तो मुस्कुरा रही होती थी। इस कहानी ने मुझे किसी और ही दुनिया में पहुंचा दिया था। अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, मुझे उस दिन का इंतज़ार रहने लगा कि कब वो दिन आएगा और मम्मी जाएंगी उस दुनिया में, जहाँ बहुत खूबसूरत पार्क होंगे, तितलियाँ होंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, पेड़ होंगे और हमारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भेजा करेंगी। आखिर वो दिन भी आ ही गया। मम्मी ने एक दिन अचानक ही आँखें बंद कर ली। उनके हाथ की लगी हुई सुई निकाल दी गई और एक सफ़ेद चादर उन्हें उड़ा दी गई। मैंने चुपके से अपनी बहन के कान में कहा, क्या मम्मी आज दूसरी दुनिया में जा रही हैं? उसने मुझे देखा और कहा, लग तो रहा है, लेकिन किसी को बताना मत, ये टॉप सीक्रेट है, मम्मी ने मना किया था। तो फिर सब रो क्यों रहे हैं? और क्या आज हमारे घर मम्मी के जाने की दावत है? पता नहीं, उसने कंधे उचकाए। दादी ने मुझे बुलाकर सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनाया और बड़े प्यार से समझाया कि अशु बेटा, मम्मी अल्लाह मियाँ के पास जा रही हैं, अब नहीं आएंगी, उन्हें प्यार कर लो और देख लो। पता है, मुझे सब पता है, मम्मी ने मुझे सब बता दिया था। मैं उनका हाथ छुड़ाकर भाग गया क्योंकि मुझे लोगों के हुजूम से घबराहट होने लगी थी। फिर वो सब होने लगा जो मम्मी ने कहानी में सुनाया था। कई घंटों की तैयारी के बाद उन्हें सफ़ेद लिबास, जिसे वो दूसरी दुनिया में जाने का पैराशूट कहा करती थी, पहनाया गया और लोग इकट्ठा होकर उन्हें उस मैदान में ले आए। मैं भी पप्पा की उंगली पकड़े साथ साथ था। अब मुझे तजस्सुस था उस जगह को देखने का जहाँ से फरिश्ते उन्हें लेकर दूसरी दुनिया में जाते। ये तजस्सुस बिल्कुल उसी तरह का था जैसे कोई बच्चा जहाज़ देखने की तमन्ना करता है कि वो कैसे उड़ जाया करता है। वहाँ की भीड़ में मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। मैं इधर उधर से घुसने की कोशिश कर रहा था और फिर कामयाब भी हो गया। सबकी टांगों के बीच से घुसकर मैं बिल्कुल उनके करीब हो गया। पप्पा बराबर हिचकियों से रो रहे थे और मैं हैरानी से उनका मुँह तके जा रहा था कि मम्मा को तो कहानी सुना कर गई थी और फिर ये सब। कुछ ऐसे बाद जैसा कि मम्मी ने कहा था मैं वापस आऊँगी, वो आ भी गई लेकिन उनकी शक्ल भी बदल गई थी और वो खुद भी। फिर भी मैं बहुत खुश था, लेकिन मेरी बहन जो अब 9 साल की होने को आई थी चुप चुप सी थी। मैं सुर्ख जोड़े में लिपटी अपनी मम्मी के पास घुसा चला जा रहा था और चाहता था कि वो पहले की तरह भींच कर मुझे सीने से चिमटा लें। ऐसा हुआ भी, लेकिन मेरी रूह को वो सुकून न मिला जिसकी उसे तलाश थी। मम्मी की शक्ल भी बदल गई थी, साथ में काफ़ी बातें भी, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी थी। गुजरते वक्त के साथ मुझ पर मेरी माँ की बनाई हुई कहानी खुलती गई और उसके सुनाने का मकसद भी समझ में आता गया। वक्त गुजरता गया और हम जवान हो गए, मेरी बहन की शादी हो गई और मेरी भी, लेकिन मेरी ज़िंदगी से सफ़ेद रंग ना निकल सका। मेरी दुल्हन नीलों भी सिल्वर कलर के जोड़े में मेरे सफ़ेद पेंट वाले कमरे में मुझसे मिली थी और मेरी शादी का सूट भी सफ़ेद शेरवानी का ही था। मम्मी की सुनाई कहानी का मकसद पूरा हो चुका था और मैं एक कामयाब खुशबाश इंसान और एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा था। नीलो बहुत अच्छी हमसफ़र साबित हुई, उसके साथ से ज़िंदगी ने कई रंग धनक देखे जिनकी रोशनी ने मुझे अंदर तक नूर से भर दिया। नीलों के साथ ज़िंदगी का सफ़र कहीं हसीन तो कहीं खारदार तो कहीं नरम मिट्टी पर चलते गुजरता चला गया। सब कुछ बहुत अच्छा था, मेरी ज़िंदगी की शाहराह उसे हम सफ़र के साथ रंगीन थी, लेकिन फिर भी इस सफ़ेद रंग को अपनी ज़िंदगी से ना निकाल सका। सफ़र की मुसाफत के भी 40 पड़ाव गुजर चुके थे, अब ना जवानी रही थी और न पूरा बुढ़ापा, लेकिन सफ़र अभी बाकी था कि एक दिन अचानक ही नीलो मेरा साथ छोड़ गई। मम्मी की सुनाई कहानी मेरे घर में फिर शुरू हो गई और मेरी आंखों के सामने 65 साल पुरानी कहानी रील की तरह चल पड़ी और मैं अपनी नीलो का पैराशूट निकाल कर उसे बाहर दे आया।
1: सफ़ेद पैराशूट, अभी आप समाप्त फरमा रहे थे नुसरत शमसी से उनका अफसाना। समीन, यह हकीकत है कि सरजमीन रुहेलखंड में शायरों और अफसाना निगारों की कमी नहीं। दौरे कदीम से लेकर दौरे जदीद तक कई ऐसे शायर और अफसाना निगार हुए हैं जिनकी तख्लीकात पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखती है। तो समीन, आइए आज अदब की इस खास सिंफ शेर व शायरी को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। शायरी का ताल्लुक हमारे जज्बात से है, फिक्र से है और ख्याल से है। मेरे शेर तर्जुमान हैं मेरे कल्ब की सदा के, मेरे शेर तर्जुमान हैं मेरे कल्ब की सदा के, पुरसोज गीत हैं ये किसी दर्द ला दवा के। तो आइए समात करते हैं सिलसिला कलाम शायर के तहत ये खूबसूरत कलाम। आज के हमारे मेहमान शायर हैं डॉक्टर अशफाक हुसैन।
2: आइए हजरत, गजल का मतलब आपकी समात होकर नजर कर रहा हूँ। समात करें हजरत,

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत में वनिता सिंह को। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। सवेरे के 10 बजने को हैं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ देर बाद कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
2: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दासगुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। IUML ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में बृहस्पतिवार तक लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana.
1: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। इस समय सवेरे के 10:05 हो चुके हैं। आइए आनंद लेते हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम गाने सुहाने का।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।

अभी आपने सुना केके की आवाज़ में दिल मांगे मोर फिल्म से गीत। आइए अब सुनते हैं अगला गीत। जीते ही लेंगे बाजी फिल्म से।

अभी आपने सुना, कभी कभी फिल्म से गीत जीत ही लेंगे बाजी, और आखिरी खत थोड़ी सी बेवफाई। आइए अब सुनते हैं नूरी फिल्म से गीत।

0: ये अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी अब से कुछ देर में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हो रहा है। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में पहुंच गए हैं। इससे पहले वो एक भव्य रोड शो में शामिल हुए। गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में शामिल हैं। इससे पहले कल श्री अधिकारी को पार्टी विधायक दल का नेता निर्विरोध चुना गया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त होगा। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा का केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों को सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। हिंद महासागर संवाद कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रम और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय ने भारतीय विश्व मामलों के परिषद और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन सचिवालय के सहयोग से इस संवाद का आयोजन किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालयी, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। गुजरात और पश्चिम राजस्थान में बृहस्पतिवार तक लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11:05 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग का। आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग अब से कुछ ही पलों में।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
4: सो इजी।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन। 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल। वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
8: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
9: हर लेन देन अब है आसान।
10: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
11: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
12: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
11: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
12: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
11: डायल कीजिए 8700014242।
12: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
10: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
13: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
14: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
13: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
14: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
13: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
14: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
13: For details, log on to www.ddindia.com।
15: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
16: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
15: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
16: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज की कलाकार थी इंदु गुप्ता। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि, अब से कुछ ही पलों में।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
5: बेटा,
6: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
5: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
7: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
5: चलो,
4: कहाँ
5: एडमिशन कराने?
7: आता हुआ एक्टिव।
8: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: गीतांजलि सुनने वाले मेरे सभी प्यारे श्रोताओं को अमृता का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसे ही अप्रैल का महीना खत्म होता है और मई की शुरुआत होती है, तो हमें गर्मी की छुट्टियों की याद आने लगती है, वो रोमांच याद आने लगता है, और बच्चों की अब तो छुट्टियां भी होने वाली हैं। तो ऐसे में आप सभी ने कई जगह की प्लानिंग कर रखी होगी, कहीं ना कहीं घूमने की प्लानिंग कर रखी होगी, और जब घूमने जा ही रहे हैं और आप ड्राइव कर रहे हैं, आपकी कार में एक बढ़िया सा सॉन्ग प्ले हो रहा है, एक बहुत अच्छी सी संगीत चल रही है, तो ऐसे में क्या होता है ना, घूमने का मज़ा जो होता है वो दुगना हो जाता है। इसी बात पर आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। फिल्म है स्ट्रीट डांसर, सुर हैं यश नार्वेकर और परंपरा ठाकुर के, गीत के बोल लिखे हैं शब्बीर अहमद और तनिष बागची ने, संगीत से सजाया है तनिष बागची ने।
9: We are the sounds of the streets.

हम बात कर रहे हैं घूमने की। कहते हैं मन, शरीर और आत्मा को खुश करने के लिए ट्रैवलिंग यानी घूमना सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। और हम जब घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं ना और स्ट्रेस सा फील होने लगता है, तो लगता है ना कि कहीं घूम आएँ या फिर 5 मिनट के लिए बाहर ही टहल लें, कुछ भी कर लें, कुछ गार्डनिंग कर लें और अपने गार्डन में घूम लें, कुछ प्लांट्स लगा लें, कुछ भी, थोड़ा चेंज तो हो जाएगा हमारा। और टहलना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे डिप्रेशन को वो दूर करता है। एक अनुमान ये भी है कि ट्रैवलिंग हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है, एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस भी आता है इससे, और लोगों को जानने का भी मौका मिलता है और वहाँ की संस्कृति के बारे में भी पता चलता है, वहाँ के खाने पीने के बारे में और क्या अच्छी डिशेज़ होती हैं वहाँ पर वो भी पता चल जाता है। ये हमारे स्वास्थ्य को भी यानी हमारी हेल्थ पर भी अच्छा असर डालता है। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। फिल्म है लव यात्री, आवाज़ें दी हैं दर्शन रावेल, आशीष कौर ने, गीतकार हैं दर्शन रावेल और संगीत है शब्बीर अहमद के।

0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं घूमने फिरने की, और जब मौसम, पर्यावरण, जो हमारी डेली रूटीन में बदलाव हो तो हमारे मन पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और सकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है हमारे घूमने फिरने से। मौसम भी अच्छा है, पर्यावरण भी अच्छा है, तो घूमना फिरना एक पॉजिटिव इफेक्ट तो डाल ही देता है। और मुझे लगता है कि घूमने फिरने में हम काफ़ी रिलैक्स भी हो जाते हैं, अच्छा सा फील भी आता है, न सिर्फ हमारा मूड अच्छा होता है बल्कि ये हमारी हेल्थ पर भी अच्छा असर डालता है। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। फिल्म है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, आवाज़ दी है फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन और अभय देओल ने, संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने और धुन है जावेद अली के।

श्रोताओं, हम डेली रूटीन में इतने बिजी होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता है। हमारे रोज़मर्रा के काम इतने ज़्यादा होते हैं कि हम उन कामों में ही बिजी रहते हैं। वैसे आज के समय में डिप्रेशन इन दोनों एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका सामना अधिकतर लोग कर भी रहे हैं। अवसाद यानी डिप्रेशन की समस्या कई वजहों के कारण बनती है, जिसकी वजह हमारा दिमाग हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ऐसे में अगर जगह और डेली जो रूटीन है हमारी वो चेंज हो जाती है, या हम घूमने चले जाते हैं अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो ये हमारे ऊपर एक जो है सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो डालता ही है, जिसे कुछ हद तक से अवसाद को भी दूर होता है और एक अवसर भी आता है जहाँ हम पूरी फैमिली या हमारे फ्रेंड्स साथ में होते हैं तो एक अच्छा सा समय बीतता है और हम वो पल जिंदगी भर याद रखते हैं। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। फिल्म है छिछोरे, आवाज़ दी है तुषार जोशी ने, गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत है प्रीतम का।

एक शोध से तो ये भी पता चला है कि ट्रैवलिंग से हम अधिक खुश और संतुष्ट रहते हैं, और जो एक्साइटमेंट घूमने की रहती है ना, वो शॉपिंग में भी नहीं आती है। जो मज़ा घूमने में आता है, नई जगह, नए लोग एक्सप्लोर और नए वहाँ के खाने पीने और वहाँ की संस्कृति देखने में जो मज़ा आता है, वो शॉपिंग में भी नहीं आता है। और ये जोश और एक्साइटमेंट तब तक बना रहता है जब तक हम कहीं घूमने ना चले जाएँ या फिर घूम कर वापस ना आ जाएँ। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। फिल्म है ये जवानी है दीवानी, आवाज़ दी है मोहित चौहान और अरिजीत सिंह ने, गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, जब हम उन ट्रिप्स के बारे में बातें करते हैं या सोचते हैं या जो घूम के आ चुके होते हैं, तो हमारा दिमाग अपने आप में फ्रेश हो जाता है क्योंकि हम घूम के आ चुके हैं और एक बार हम बैठे बैठे फिर से घूम आते हैं सोच सोच में। ये एक हमारे चेहरे पे ना एक मीठी सी मुस्कान भी आ जाती है क्योंकि हम इस ट्रिप के बारे में जब सोचते हैं। और यही सोचकर हम में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फिर दोबारा घूमने की प्लानिंग करने लगते हैं, घूमने के बारे में बातें करने लगते हैं। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। फिल्म है जब वी मेट, आवाज़ दी है श्रेया घोंसाल ने और गीतकार हैं इरशाद कामिल, संगीत दिया है प्रीतम ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं नाटक एक लोरी वयस्कों के लिए।

0: नागाहारू, दुनिया में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं?
1: शायद मर्यादाएं टूट जाती हैं, तब लड़ाइयाँ होती हैं।
0: लेकिन लोग आखिर लड़ते ही क्यों हैं?
1: कुमी, शायद मर्यादाएं टूटने के बाद लड़ाई का शौक पैदा हो जाता है।
0: क्या लड़कर उन्हें शांति मिलती है?
1: मेरे ख्याल से जरूर मिलती होगी। और कुमी, मैं ये भी बता दूं, शायद चोट खाकर उन्हें खुशी ही होती हो।
0: फिर तो वो खुशी से मरते होंगे।
1: हाँ, शायद।
0: सुनो नागाहारू, क्या हम भी लड़ाई नहीं छेड़ सकते?
1: लड़ाई?
0: हाँ, अपनी लड़ाई।
1: अपनी लड़ाई? लेकिन किससे?
0: किससे? हाँ, किससे? अच्छा मान लो, अगर हम लोग किसी को तहखाने में बुलाएं।
1: तहखाने में?
0: हाँ, हम पूछें, क्या आप आज शाम खाली हैं? अगर वो कहें हाँ, तो उन्हें तहखाने में बुला लें।
1: हाँ, हो तो सकता है, लेकिन हम बुलाएंगे किन्हें?
0: किन्हें? जिन्होंने हम लोगों की हत्या की थी, हम उन्हें बुलाएं तो कैसा रहे?
1: हाँ, अच्छा रहेगा, अपने माँ बाप को ही बुलाते हैं, क्यों?
0: ठीक, बिल्कुल ठीक।

0: बड़ी लंबी सीढ़ियां हैं, नहीं
1: जैसे भूतों की कहानियों वाली सीढ़ियां उतर रहे हैं हम लोग।
0: कौन सी सीढ़ियां?
1: मैं तो वापस लौटना चाहता हूँ। लगता है अभी किसी कोने से कोई प्रेत निकल कर आ खड़ा होगा।
0: नहीं, लेकिन नीचे उतरना आसान है। दोबारा इतनी सीढ़ियां चढ़कर वापस लौटना ज्यादा मुश्किल है। मुझे हर कदम पर लग रहा है जैसे भूतों की मान नजदीक आती जा रही है।
1: मेरी तो सांस ही फूल गई है। कलेजे में अजीब ऐठन सी हो रही है। लगता है जैसे जैसे सीढ़ियां उतरेंगे सांस लेना मुश्किल होता जाएगा।
0: नहीं, ला, मैं तुम्हारा हाथ पकड़े लेती।
1: मैं कोई बच्चा हूँ?
0: बच्चे? ओह, मैं तो उन्हें भूल ही गई थी।
1: इतनी जोर से मत बोलो, मेरा तो दिल ही रुक जाएगा। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कि
0: हमारे अलावा और है ही कौन जो देखेगा?
1: पता नहीं, मुझे लगता है कोई हमें घूर रहा है। शायद वही बच्चे हो।
0: बच्चे?
1: हाँ, वही बच्चे जिन्होंने कहा था कि हम सीढ़ियों से नीचे उतर जाए। अगर वो जिंदा होंगे तो खासे बड़े हो गए होंगे।
0: तुम तो भूतों की कहानियां ज्यादा ही पसंद है। सपना तो नहीं देख रहे?
1: सपना? सही। लो, खिड़की से कुछ दिखाई देता है क्या?
0: मुझे तो लगता है हमारा किसी ने अपहरण किया है, हमें यहाँ बंद कर लिया है।
1: अपहरण?
0: अजीब बात है, ये वे बच्चे?
1: क्या वो बच्चे?
0: मेरा मतलब है उन्होंने कितनी मुलायमियत और इसरार भरी आवाज में हमें बुलाया था और फिर कितनी शिष्टता से बातें की थी।
1: हाँ, यहाँ आने पर उन्होंने बड़ी शालीनता से कहा था, माफ कीजिएगा हमारी वजह से आपको कुछ देर रुकना पड़ा, हम मेहरबानी करके सीढ़ियों से होकर नीचे उतरे।
0: हाँ, बिल्कुल इसी तरह कहा था, लेकिन तुम्हारी ही गलती है। तुम ही उनसे मिलने को इतने उतावले हो गए थे, तुम्ही ने फटाफट सीढ़ियां उतरना भी शुरू कर दिया था।
1: बात यह है, मुझे लगा कि वो लोग शायद किसी और के धोखे में हमें बुला बैठे हैं। मुझे थोड़ी उत्सुकता हो गई, और इसमें क्या है, कहा ही कुछ ऐसे किया था कि मैं मजबूर हो गया।
0: ओ, लेकिन अब होगा क्या? क्या खिड़की तोड़ोगे?
1: खिड़की? अच्छा, खिड़की खिड़की खिड़की खिड़की। कांच बेहद मजबूत है।
0: चल, दोनों जोर लगाकर देखें, शायद दरवाजा ही खुल जाए।
1: दरवाजा? चलो आओ आओ।

0: बेकार है, सुना बेकार है, नहीं खुलेगा।
1: हाँ, नहीं खुलेगा,
0: नहीं खुलेगा। सुनो, कितने दिनों बाद मैंने तुम्हें इस तरह बाहों में लिया है। युग बीत गए, तुम्हारे शरीर की कंध।
1: छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो मुझे। इस बंद कमरे से नफरत हो रही है।
0: याद है, याद है तुम्हें, कभी मैं तुम्हारी बाहों को सूंघा करता था। फिर यकायक जाने क्या हुआ, बरसों का जुड़ा हुआ रिश्ता यकायक दिए की तरह बुझ गया।
1: छोड़ो मुझे, छोड़ो ना, मुझे इस कमरे से डर लग रहा है।
0: तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी कर दी थी और मैं बहुत दूर जाकर बच्चों को पढ़ाने लगा था, लेकिन वो दिन,
1: पता नहीं ये कमरा इतना अंधेरा और गोल क्यों है।
0: दीवारें चौकोर भी तो हो सकती थी।
1: बस करो, बस करो, चौकोर दीवारों वाला होता तो और भी डरावना हो जाता। नहीं, मुझे चौकोर मकानों से और ज्यादा डर लगता है।
0: शायद चौकोर मुर्दाकर,
1: चौकोर संदूक,
0: चौकोर। रोने की क्या जरूरत है, मैं माफी चाहता हूं कि मैं
1: शायद कोई आ रहा है। पता नहीं किसी ने हमारी बातें सुन न ली हो। अभी तक तो ये रहस्य सिर्फ हम दोनों के बीच ही है।

0: बसंत का मौसम था। हमने उसके मुंह पर कपड़ा लपेटकर उसे दराज में बंद कर दिया था। उसके छटपटाते हुए हाथ पीछे की तरफ मोड़ दिए थे।
1: मेरा दम घुट रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। कमरा, ये कमरा घूम क्यों रहा है?
2: कीजिएगा, हमने आपको काफी इंतजार कराया। हमारी वजह से आपको असुविधा हुई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं।
1: लेकिन इस तरह हमें यहाँ बंद करने का मतलब क्या था?
2: हमने सिर्फ सीढ़ियां उतरने को कहा था, लेकिन आप खुद यहाँ इस कमरे में आ गए।
1: ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ से बाहर निकालो।
2: ये दरवाजा सिर्फ बाहर से खुलता है।
0: लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं है, इनका दिल कमजोर है। ये कह रहे थे कि कमरा घूम रहा है।
2: आपको घूमता हुआ महसूस नहीं हुआ? कमरा तो सचमुच घूम रहा था, ये बना ही ऐसा है।
1: तुम हो कौन? क्या चाहते हो?
2: आपने मुझे पहचाना नहीं? मम्मी, मैं नागाहारू हूँ।
0: नागाहारू? कौन नागाहारू?
2: मैं। ये देखिए कागज का टुकड़ा जो आपने लिख कर लगाया था। ये बच्चा 23 अप्रैल को पैदा हुआ था और इसका नाम था नागाहारू। नागाहारू मतलब लंबा वसंत।
0: इसी दिन वो पैदा हुआ।
1: सोच समझ कर बोलो, और किसी के सामने इस तरह मत उगलने लग जाओ।
2: डैडी, क्या आप इससे इनकार करते हैं?
1: इनकार करने न करने का क्या सवाल है? इस कागज पर न तो तारीख लिखी है, ना नाम, कुछ नहीं लिखा, मुझे मालूम है।
2: ओ ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हैं आप जैसा मैंने सोचा था। डैडी, सच ये है कि वो इबारत मिटा ही दी गई थी, जैसे मैं इस दुनिया से जन्मते ही मिटा दिया गया था। क्यों मम्मी? मुझे याद है, मेरा मुंह बांधने के बाद मेरा दम घोट दिया गया था और मेरे ऊपर प्लास्टर चढ़ाकर 1.5 बरस मुझे एक दराज में बंद रखा गया था।
0: लेकिन हम क्या करते? हम तो तुम्हें अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियाँ। हाँ, परिस्थितियाँ। दुनिया में बिना शादी किए पैदा हुए बच्चे का कलंक।
2: लेकिन क्या मुझे प्लास्टर में बंद करना जरूरी था?
0: कब्र तो प्लास्टर की ही होती है ना।
2: कब्र? ठीक है, देख रहे हैं आप, मेरी माँ ने स्वीकार किया कि उसने मेरी हत्या की थी।
0: नहीं, नहीं, नहीं।
2: हालांकि अब इससे क्या फर्क पड़ना कि मुझे मारा गया या नहीं।
0: तुम थोड़े से बड़े होते तो खेलने का मकान बनाने वाले लकड़ी के गुटकों से खूब खेलते।
1: देखो जी, तुम किसी ऐसे सवाल का जवाब मत दे बैठना जिस राज खुल जाने का डर हो।
2: तुम ठीक कहती हो मम्मी, मुझे बीते वक्त की याद आ रही है। वो देखो, छोटी छोटी खिड़कियां, लकड़ी के गुटकों की दीवारें और छत।
3: ये गुटके ठीक से नहीं सजाए थे नागारो।
4: देखी ना डैडी, सारा मकान गिर पड़ा।
0: कॉफी ले लो जी।
3: वाह, इसी की जरूरत महसूस हो रही थी, लाओ।
0: नागाहारू, अच्छे बच्चे, आओ तुम्हें एक संतरा छील दूं।
4: छील दो, मुझे बहुत काम है, पूरा मकान बनाना है।
3: सुनो, तुम थोड़ी दुबली नहीं हो गई हो?
0: चलो, तुम्हारा ध्यान तो गया।
4: एक के ऊपर ये दूसरा, देखता हूँ।

0: कैसे नहीं बनता? गिरेगा? अच्छा गिर जा, मैं फिर बनाऊंगा।
1: सुनो जी,
2: क्या है?
1: इधर आओ ना। लगता तुम फिर माँ बन गए।
2: तुम्हें मालूम हो गया?
1: कॉफी में चीनी कम है।
2: गाली तो
1: चलो रहने दो, तुम्हें नागाहरू के लिए संतरे छीलने का वक्त मिल जाता है। मेरी कॉफी ठीक से बनाना मुश्किल लगता है।
2: फिर वही, पता है तुम्हें बच्चे अच्छे नहीं लगते।
1: हाँ ये सही है, हमारी शादी नहीं हुई है, हम बच्चे कैसे पैदा कर सकते हैं? दुनिया क्या कहेगी, ये नाजायज बच्चे। नागाहरू, सुना तुमने, मुझे तुमसे नफरत है। मुझे भी और तुम्हारी माँ को।
0: मैंने घर तोड़ दिया, मैंने घर तोड़ दिया, हाँ मैंने घर तोड़ दिया, मैंने घर तोड़ दिया, मैंने घर तोड़ दिया।
2: नागाहरू, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो नागाहरू, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
3: थैंक यू मम्मी। कुछ लोग कहते हैं इस तरह जन्म देने के बाद बच्चे की हत्या कर देना एक सामाजिक पागलपन है। बहुत विकसित देश इसे शायद किसी और रूप में देखें। हो सकता है इसका संबंध युद्ध से हो, यानी युद्ध लोगों को नई जिंदगी का दुश्मन बना देता है। जो भी हो, चलिए मेरे मुंह पर भी लपेट दीजिए प्लीज मम्मी। अलविदा, अलविदा डैडी।
2: वो कितनी अच्छी बातें बोल रहा था, नहीं?
1: हाँ खासी,
2: लेकिन यहाँ से निकलने का कोई उपाय हुआ ही नहीं।
1: इंतजार करो, हो सकता है रास्ता निकले। कमरा घूमना शायद बंद हो गया।
2: वैसे सच कहूँ, अब इस अकेले कमरे में उतना बुरा नहीं लग रहा। कितने लंबे अरसे बाद हम लोग इस तरह अकेले मिले हैं।
1: हाँ, बच्चों की हत्या करने के बाद तो जैसे तूफान ही आ गया था। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी उस धूर्त से कर दी थी और मैं निराश होकर शहर छोड़कर चला गया था।
3: अजीब लग रहा है
1: इतने दिनों के बाद मिलकर।
2: थोड़े दिनों में फिर सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। पराया पराया।
1: फोन, तुम सुनो।
2: ये चिकने अकेले कमरे में टेलीफोन कहाँ होगा?
1: ऐसी घंटी टेलीफोन ही की होती है, देख लो ना, शायद गिटार के अंदर है। कितनी जबरदस्त आवाज गूंज रही है।
2: हेलो, हेलो,
4: हेलो, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, मैं कौन हूँ, आपने पहचाना? अच्छा बताइए, मैं कौन बोल रही हूँ? आप जानती हैं, आपके कुछ शब्द पंख फड़फड़ाते हुए मेरे पास आए थे। मम्मी, आपके शब्द मैं सहेज कर रखना चाहती थी।
2: मम्मी, तुम हो कौन? तुम मुझे मम्मी कह रही हो, कहीं तुम?
4: आपने ठीक समझा मम्मी, मेरा तो कोई नाम ही नहीं था, मैंने खुद अपना नाम रख लिया, कुमी, यानी चिर सुंदर। अच्छा है।
2: हेलो, हेलो, एक मिनट ठहरो। सुनो जी,
1: क्या है, कौन है फोन पर?
2: वही लड़की है, मैं पहचान गई, उसने अपना नाम कुमी रखा है।
1: लाओ फोन मुझे दो। हेलो, हेलो, हाँ, क्या तुम्हारा मतलब है तुम मेरी बेटी हो? वैसे मैं बता दूं, मेरी कानूनी संतान कोई नहीं है।
4: माफ करिए डैडी, कानूनी संतान क्या होती है? मुझे मेरे भाई के साथ जन्म लेते ही मार दिया गया था ना? मुझे याद है, आपने मुझे एक प्लास्टिक की थैली में बंद करके रेफ्रिजरेटर में रख दिया था। पता नहीं मुझे यहाँ कब तक रहना होगा।
2: यहाँ? यहाँ? कहाँ यहाँ?
4: मम्मी, मैं सर्द हो गई हूँ, मुझे नींद आ रही है।
3: सुनो कुमी, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। अब तो तुम बड़ी हो गई होगी।
4: बहुत दुबली हूँ डैडी, पिरामिड में बंद लाश की तरह मैंने एक मोमजामा पहन रखा है।
3: कुमी, तुम्हारा एक भाई है, तुम्हें पता है, क्या तुम उससे मिलोगी?
4: काश मैं हिल भी पाती, मैं बाहर नहीं आ सकती ना। अब तो यही एक रास्ता है कि आप लोग यहाँ आ जाएं।
2: क्या?
3: लेकिन कुमी, इस कमरे का दरवाजा सिर्फ बाहर से खुलता है।
4: वहाँ कमरे में एक गिटार है ना?
3: हाँ है, तो फर्श पर रखा है। इसी के अंदर तो टेलीफोन है।
4: उसी टेलीफोन के तार को खूब जोर से खींचिए, ठीक गिटार के आकार का ही एक रास्ता फर्श में खुल जाएगा। उस रास्ते से नीचे अंधेरी सीढ़ियां चली गई हैं। एक बार में सिर्फ एक ही सीढ़ी उतरे और टेलीफोन के तार के सहारे चलते जाएं। आखिर में अंधेरे में आपको एक सफेद दरवाजा मिलेगा। वही कुमी के कमरे का दरवाजा है। ये दरवाजा भी सिर्फ बाहर से खुलता है।
1: ठीक है, मैं समझ गया। लो, इस तार को खींचने में मदद तो करो जरा। ओह, इन सीढ़ियों पर इतना अंधेरा है कि कुछ दिखाई नहीं देता। लगता है मैं नींद में चल रहा हूं।
4: आओ मम्मी।
2: तुम कुमी हो?
4: हाँ, मैं कुमी हूँ। हूँ ना डैडी?
1: तुम ही हमारा बच्चों में से एक लगती हो जिन्होंने हमें यहाँ फंसाया है।
2: देखो जी, अब तुम चुप रहो, चुप रहो तुम। ये गोल वाला कमरा नहीं, रेफ्रिजरेटर है। कुमी, कुमी बेटे, मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है बेटे, हमें माफ कर सकोगी?
1: ओ, मेरा दिल फिर धड़कने लगा है, लग रहा है कि मैं घूम रहा है।
4: आप लोग ठीक से सोए नहीं है शायद।
2: नींद आती कहाँ है, अक्सर तुम दोनों की तस्वीर आंखों के सामने घूमती रहती है, घूमती रहती है।
4: अब तो सब कुछ समझ में आ गया होगा, नहीं? सोच कर देखिए।
2: क्या सोचूं, क्या सोचूं?
1: कुमी, हमें यहाँ से बाहर निकाल लो ना। देखो कुमी, देखो तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है। हम तो यही सोच कर आए थे, हमारी प्यारी कुमी हमारी मदद जरूर करेगी।
4: मम्मी से पूछिए, अभी और कितने बच्चों की हत्या करनी है?
1: तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो कुमी? हमने जो कुछ किया था मजबूरी में किया था। कुमी, कुमी मेरी बात तो सुनो।
5: हेलो कुमी, कुमी, सब ठीक चल रहा है वहाँ?
6: बेहद घिसे-पिटे जवाब है इनके पास।
5: अरे तो गोली मारो, तुम बाहर आ जाओ।
6: ये मम्मी डैडी का क्या करें?
5: उन्हें छोड़ दो, अभी ये कमरा इतनी तेजी से घूमेगा कि उनके लिए खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा।
6: ठीक है, अलविदा मम्मी, अलविदा डैडी।

0: पता नहीं वो मर गए या जिंदा है।
1: कौन?
0: मम्मी और डैडी।
1: इतनी आसानी से तो नहीं ही मरे होंगे।
0: हाँ, हमें उन्होंने कितनी आसानी से मार दिया था। हमारे पास अब इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था।
1: हम अब कहाँ जाएंगे?
0: किसी और मम्मी डैडी की तलाश में।
1: किसी और की?
0: हाँ, उनकी तलाश में जिनके डर से मम्मी और डैडी ने हमें जान से मार दिया था।
1: वो कहाँ मिलेंगे?
0: वो हर कहीं हर जगह। उनकी पहली उंगली बड़ी फुर्तीली होती है, बड़ी जल्दी उठती है। वो पापी है, वो कलंकिनी है, वो अवैध है। कितनी फुर्ती से उनकी तर्जनी उठती है।
1: ठीक है, हम ऐसी ही फुर्तीली तर्जनी वाले लोगों को खोजेंगे।
0: आओ चलें।
1: चलो।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नाटक एक लोरी वयस्कों के लिए। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आप सभी श्रोताओं को हार्दिक बधाई। सुरों की इस दुनिया में आपका स्वागत है, जिसने पीढ़ियों को जोड़ा, भावनाओं को आवाज दी है और हर दिल में संगीत की लौ जलाए रखी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष को वो गौरवशाली सफर, जहाँ रेडियो सिर्फ एक माध्यम ना बनकर हर घर का सदस्य बन गया है। कभी खेतों में काम करते किसानों के साथ, तो कभी जवानों के हौसलों के साथ, तो कभी माँ की लोरी में, तो कभी प्रेम के मधुर गीतों में आकाशवाणी ने फिल्म संगीत को सुनाया ही नहीं, बल्कि उसे जन जन तक पहुँचाकर भारतीय संस्कृति की धड़कन बना दिया है। तो आइए, आज हम बहुत खूबसूरत से गीत सुनेंगे और याद करेंगे वो गीत, वो दौर, वो एहसास जिसने आकाशवाणी की मधुर गूंज आज भी सुनाई देती है। आकाशवाणी ने हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया है। भाषाएं अलग रहें, लेकिन सुर एक रहे। रेडियो की यही खूबसूरती है कि जो दिलों को जोड़ देती है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। फिल्म है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, संगीतकार हैं जतिन ललित, गीतकार हैं आनंद बख्शी और आवाज़ दी है कुमार शानू, लता मंगेशकर ने।

रेडियो जनसंचार की एक सशक्त माध्यम के रूप में रेडियो का महत्व सर्वविदित है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी रेडियो को एक शक्तिशाली जन माध्यम मानते थे। रेडियो स्टेशन पे जब गांधी जी ने सन 1947 में पहली बार गए थे तो उन्होंने अनायास ही कह दिया था कि मैं रेडियो को शक्ति के रूप में देखता हूँ। देश की लगभग 90% से भी अधिक जनसंख्या आज रेडियो की प्रसारणों में रुचि लेती है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। फिल्म है अजब प्रेम की गजब कहानी। संगीतकार हैं प्रीतम चक्रवर्ती, गीतकार हैं इरशाद कामिल और आवाज़ दी है आतिफ असलम ने।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: रेडियो हमारा एक बहुत पुराना मित्र है भारतीय परिप्रेक्ष्य में के विकास में। विकास की दृष्टि से अगर देखें तो रेडियो की काफ़ी अहम भूमिका रही है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने ध्येय के साथ रेडियो का विस्तार हुआ है। सूचना क्रांति के इस दौर में जब अनेक सूचना माध्यम मौजूद हैं, रेडियो अपनी श्रोताओं की रुचि को ध्यान में रखते हुए उन्हें सूचित, शिक्षित करने के साथ स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने के उद्देश्य से अपने विविध कार्यक्रमों को प्रसारण जारी रखे हुए है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। फिल्म है गैंगस्टर, संगीतकार हैं प्रीतम चक्रवर्ती और गीतकार हैं निलेश मिश्रा। आवाज़ दी है सुनिधि चौहान ने और अभिजीत ने।

रेडियो हमारी श्रुति और स्मृति तथा ग्रामीण चौपालों में बैठकर कहने सुनने की परंपरा का नवीन इलेक्ट्रॉनिक विकसित रूप है, इसलिए यह सहज ही सबको आकर्षित करता है। 20वीं शताब्दी इलेक्ट्रॉनिक सूचना माध्यमों के विस्तार के लिए जानी जाती थी। इस कड़ी में सबसे पहले पहल रेडियो ही आया था, जिसने आते ही प्रसारक क्षेत्र में अपने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए तथा प्रभावशाली जन माध्यम बना रहा। आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत, फिल्म है क्लिक, गीतकार हैं मयूर पुरी, संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने और आवाज़ें दी हैं मोहम्मद इरफान, सलमान खान और नितिन मोहन ने।

0: 90 वर्ष की इस खूबसूरत से सफ़र में आकाशवाणी ने हर पीढ़ी को, भावनाओं को आवाज़ दी है। 90 वर्षों से यह रिश्ता यूं ही दिलों में गूंज रहा है और आने वाले वर्षों में भी यूं ही गुनगुनाता रहेगा, मीठी धुन और खूबसूरत यादों के साथ। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत अब से कुछ ही पलों में।
1: बदलो आदत, बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत, बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
4: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ?
3: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
4: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
3: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
4: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वनिता सिंह को।

0: दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में कल कोलकाता में हुई बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में चुनाव अधिकारी को बिला मुकाबला लीडर मुंतखब किया गया था। हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकजी वजीर जेपी नड्डा, बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वजराय आला केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा मुतअद्दिद रियासतों के वजराय आला और सीनियर लीडरान मौजूद थे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस के जेर एहतमाम दूसरी ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 चैंपियनशिप का इफ्तिताह करेंगे। जनाब योगी इस मौके पर एक सोवेनियर भी जारी करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आला ने कहा कि ये मुकाबला मुल्क भर से पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाड़ियों के दरमियान हम आहंगी, दोस्ती और सेहतमंद मुकाबले के जज्बे को मजीद तकवीत देगा। रियासत में 7 मई से डिजिटल मरदमशुमारी के तहत पहले मरहले की खुद गिनती शुरू हो चुकी है। इस सिलसिले में नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कल मरदमशुमारी के पहले मरहले को ऑनलाइन कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरदमशुमारी मुल्क की तरक्की के लिए एक बुनियादी अमल है और इसमें हर शहरी की शिरकत इंतहाई ज़रूरी है। इस दौरान नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने भी कल अपना मरदमशुमारी फॉर्म ऑनलाइन भरा। उन्होंने आवाम से अपील करते हुए कहा कि
1: जनगणना का प्रथम चरण चल रहा है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या फिजिकल भर करके जनगणना की प्रक्रिया को शीघ्र शीघ्र पूरा करें। इससे जनगणना पूरी होकर के और आगे जो संवैधानिक कार्य हो पूरे हो सके, जनगणना प्रपत्र हमने ऑनलाइन भर दिया।
0: डुमरियागंज से मेंबर पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल, पंचायती राज के वजीर ओम प्रकाश राजभर, काबीनी वजीर कपिल देव अग्रवाल और विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने भी कल खुद गिनती का अमल मुकम्मल किया। उत्तर प्रदेश के इलाकाई डायरेक्टरेट ऑफ सेंसेस ऑपरेशंस ने कल यूनिसेफ के तावन से लखनऊ में यूनिसेफ के दफ्तर में सेंसस मैटर्स फॉर चिल्ड्रन पर बेदारी और सलाहियत साजी के सेशन का इनेकाद किया। तकरीब में रियासत के चीफ प्रिंसिपल मरदमशुमारी अफसर शीतल वर्मा ने वजाहत की कि खुद शुमारी मरदमशुमारी 2027 की एक बड़ी इख्तरा है। ये मुल्क की पहली मुकम्मल डिजिटल मरदमशुमारी होगी। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन प्रयागराज आज और कल 18 मजामीन में लेक्चरर ग्रेड के 624 ओहदों के लिए तहरीरी इम्तहान करा रहा है। दो शिफ्टों में होने वाले इस इम्तहान में तकरीबन 4,64,605 उम्मीदवार शामिल होंगे। कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि तमाम इम्तहान मराकज के कमरों और अहम मकामात को AI पर मबनी CCTV कैमरों से लैस किया गया है और उन्हें जिला कंट्रोल रूम और कमीशन के मरबूत कंट्रोल कमांड रूम से मुंसलिक किया गया है। इम्तहान के तकद्दस से समझौता करने वालों और नकल माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासत भर में आज कौमी लोक अदालत का इनेकाद जिला अदालतों, कलेक्ट्रेट अहातों और सभी तहसीलों में किया जा रहा है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी लखनऊ की हिदायत के मुताबिक लोक अदालत में खानदानी और उज़्दवाजी तनाज़ात, मोटर एक्सीडेंट, मुआवजे के मामलात, सार्फीन के मामलात और बैंक की वसूली समेत मुख्तलिफ किस्म के मामलात का तस्फिया किया जाएगा। रियासत के स्मार्ट प्री पेड मीटर सिस्टम को ख़त्म करने और तमाम स्मार्ट मीटरों को पोस्ट पेड मोड में चलाने का बाज़ाब्ता हुक्म जारी कर दिया गया है। रियासत के तवानाई के वजीर AK शर्मा ने बताया कि RDSS स्कीम के तहत नसब तमाम मीटरों को फौरी असर से पोस्ट पेड मोड में तब्दील किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब मई 2026 की विद्युत खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाएगा और उपभोक्ताओं को बिल SMS और WhatsApp के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क अथवा संचार संबंधी समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमेटिक रीडिंग प्राप्त नहीं होगी, वहाँ एजेंसियों के माध्यम से मैनुअल रीडिंग लेकर समय से बिल उपलब्ध कराया जाएगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: महकमा मौसमियात ने आज मशरकी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमे ने कई जगहों पर तेज़ हवा और आसमानी बिजली गिरने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं मौसम मरकज लखनऊ के साइंसदान मोहम्मद दानिश ने बताया कि कल के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फ़ाल हो जाएगा और 12 मई से वस्ती और मगरबी उत्तर प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुई।
3: मीडियम

0: 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है महिलाओं के कार्यक्रम नारी जगत का।
1: नारी जगत की सभी प्यारी सखियों को रागिनी श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, वैसे तो इन दिनों मौसम बड़ा सुहाना है, रिमझिम फुहारें भी पड़ रही हैं, लेकिन भाई गर्मी का मौसम तो गर्मी का ही होगा। तो चलिए बात करते हैं गर्मी से ज़रूरी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का। तो सबसे पहले बहनों, चिलचिलाती गर्मी शहर में लगे बड़े बड़े हवादार पेड़ों और ठंडे पार्कों में सुकून ढूंढते हैं लोग, पर इसके लिए हरियाली और बनाए रखने के लिए प्राकृतिक और आधुनिक उपाय अपनाए जा सकते हैं। पेड़ पौधे और हरियाली न केवल छाया देते हैं बल्कि वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन के जरिए आसपास के तापमान को 4 से 5 डिग्री कम कर सकते हैं। शहर और पार्कों को ठंडा और आरामदायक बनाने के कुछ तरीके हम आपको बताते हैं। जैसे घने छायादार पेड़ लगाइए, तो जगह जगह आम, नीम, अमरूद, बरगद और पीपल जैसे घने पेड़ लगाइए जो अधिक छायादार हों, और केवल घास के बजाय छोटे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ और ऊंचे पेड़ एक साथ लगाएं। इससे ठंडी हवा का प्रवाह बेहतर होता है। वर्टिकल गार्डन मतलब पार्क की चारदीवारी पर बेलें और पौधे लगाकर दीवारों को ठंडा रखें, और घास का सही चुनाव करें जो कम पानी में हरे रहें और ज़मीन को गर्मी सोखने से रोकें। इसके अलावा बहनों, वाटर फाउंटेन और फव्वारे, तो जहाँ भी हमारे पेड़ लगे हों वहाँ पार्क में या रोड के किनारे फव्वारे या छोटे झरने लगाने से हवा में नमी आती है और तापमान घटता है। पार्कों में बैठने के जगह पर ऊपर फॉग नोजल यानी महीन पानी की फुहार लगाएं जो गर्मियों में ठंडक प्रदान करते हैं। इसके अलावा कंक्रीट और मिट्टी ज़्यादा में पार्क में कंक्रीट या टाइल्स के बजाय पेवर्स ब्लॉक का उपयोग करना चाहिए जिससे ज़मीन पानी सोख सके। अब छतों पर भी हरियाली हम लगा सकते हैं, जैसे इमारतों की छतों पर पौधे लगाकर शहर के पूरे तापमान को कम किया जा सकता है। सड़क के किनारे पेड़, सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ लगाने से छाया बनी रहती है, और इसके साथ ही साथ भाई गीला और सूखा कचरा अलग रखें क्योंकि कूड़े के ढेर में कभी आग ना लगाएं, इससे शहर का तापमान और प्रदूषण बढ़ता है। इन सब उपायों से हम गर्मी को कम करके और ठंडी का मज़ा ले सकते हैं कुछ इन लोगों की तरह।
2: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Let's start the fun.

बहनों, ये तो बात थी गर्मी के मौसम की। और अब गर्मी के ही दिनों में बहनों अक्सर देखा जाता है कि तेज़ धूप, धूल और सूखी हवाओं के कारण आँखों में जलन, सूखापन मतलब ड्राइनेस और एलर्जी जैसी समस्याएं हो जाती हैं। तो भाई, इन समस्याओं से बचने के लिए, आँखों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ उपाय हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले धूप के चश्मे का प्रयोग करें। बाहर निकलते समय यूवी किरणों से बचने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाला सनग्लास पहनें, जो 100% आपको सुरक्षा प्रदान करते हों। और हाइड्रेटेड रहें, यानी खूब पानी पिएं, तो शरीर में पानी की कमी से आँखों में सूखापन आ सकता है। और दिन भर पर्याप्त पानी पिएं ताकि आँखें आपकी हमेशा नम रहें। और बाहर से आने के बाद आँखों को ठंडे पानी से और साफ़ पानी से धोएं। ये जलन और धूल को हटाने में मदद करता है। और साफ़ सूखे कपड़े से उसको साफ़ करें। दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं, तभी आंखें हाइड्रेट रहेंगी। अगर आंखें बहुत सूखी लगें तो भाई डॉक्टर की सलाह पर लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का उपयोग करें और आंखों को रगड़ने से बचें। गर्मी में आंखों में खुजली होना तो आम बात है, लेकिन उन्हें रगड़ने से एलर्जी या इन्फेक्शन जैसे कंजंक्टिवाइटिस का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा 20-20-20 नियम का पालन करें, मतलब कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करते

होने वाली थकान भी कम होती है। और अपने डेली डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर और खट्टे फलों जैसे विटामिन ए और विटामिन सी को शामिल करें। और अगर आपके आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो दिन के अंत में आंखों की ठंडी सिकाई करें, इससे जलन कम होता है। और तरीका है कि साफ़ कपड़ों को ठंडे पानी में भी भिगो कर आँखों पर 5-10 मिनट के लिए रखें। लेकिन इसके बाद भी अगर आँखों में बहुत ज़्यादा लालिमा, दर्द या दृष्टि में धुंधलापन महसूस हो, या बहुत ज़्यादा आपके आँखों में कीचड़ बनते हो, तो भाई अपने किसी नेत्र चिकित्सक से संपर्क ज़रूर करें। ये तो थी आँखों की देखभाल। अब आँखें खूबसूरत बना के रखिए, सनग्लास पहन के निकलिए और फिर कुछ इस तरह यूं मस्त होकर के गुनगुनाइए।

और बहनों, अब तो हम किचन की बात करने वाले हैं कि सबसे पहले तो हमारा ज़्यादातर समय किचन में ही बीतता है, और ऐसे में किचन की बनावट, गर्मी, वेंटिलेशन, सफाई और सुरक्षा, सब कुछ पर ध्यान हमें देना होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किचन में अनावश्यक सामान भरे रहते हैं जो कि सही नहीं है। तो चलिए कुछ ऐसी बातें की जाएँ जो किचन को व्यवस्थित बनाने के लिए ज़रूरी है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है अपने प्लेटफॉर्म को साफ़ रखें। स्लैब पर सिर्फ वही चीज़ें रखें जो रोज़ काम आती हैं, जैसे नाइफ स्टैंड, चॉपिंग बोर्ड और मसाले के डिब्बे। और दाल, अनाज और मसालों को पारदर्शी जार में रखें ताकि आसानी से दिखें। अलमारियों और दीवारों पर हैंगर, हुक या चुंबकीय पट्टी, मतलब मैग्नेटिक स्ट्रिप लगाकर कैंची, चम्मच और चाकू लगाएं। चम्मच, कांटे और पिलर को व्यवस्थित रखने के लिए दराजों में डिवाइडर का इस्तेमाल कर सकती हैं। पैंट्री या अलमारी में बिन्स का उपयोग करना चाहिए, इससे छोटी चीज़ें जैसे पैकेट हैं इधर उधर नहीं बिखरती। और अगर किचन में टी शेप कॉर्नर है तो वहाँ घूमने वाली ट्रे का उपयोग करके जगह बचाएं। और साफ़ सफाई और रख रखाव तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है भाई। बेकिंग सोडा और पानी के पेस्ट से जिद्दी दागों को साफ़ करें। फ्रिज को व्यवस्थित रखने के लिए खाने पीने की चीज़ों को बास्केट में रखें। रसोई में हल्के रंग, सफ़ेद, बेज, क्रीम रंगों का उपयोग करें ताकि जगह बड़ी और सकारात्मक लगे। महीने में एक बार अनावश्यक या ख़राब हो चुके मसालों और डिब्बों को ज़रूर हटा दें। इसके अलावा प्याज, आलू और अन्य सब्जियों को रखने के लिए मल्टी लेयर्स रैक्स का उपयोग करें। तो बहनों, सिंक को भी साफ़ रखने के लिए उपयोग किए गए बर्तनों को तुरंत धोएं और रखें, और हफ्ते में एक बार आप अपने सिंक की सफाई ज़रूर करें। उसमें कपड़े धुलने वाला डिटर्जेंट के साथ नींबू और बेकिंग सोडा मिला करके उसको अच्छे से आधे घंटे के लिए छोड़ दें लगा के, और फिर साफ़ करें। तो बहनों, हम लोग किचन से दिन भर वास्ता रखते हैं तो हमारे किचन में तो काम ख़त्म ही नहीं होता, लेकिन हाल फिलहाल अब थोड़ा सा किचन का काम ख़त्म करके, और अब हम आते हैं इस गीत पे।

बहनों, अब बात करते हैं कि भारत में महिलाओं के सुरक्षा के लिए कई विशेष कानून और कानूनी अधिकार उपलब्ध हैं जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और मौन हिंसा से रक्षा करते हैं। प्रमुख कानूनों में घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम डीवी एक्ट, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 और भारतीय दंड संहिता की 1 PC की धारा 354 और 498A शामिल हैं, जो शारीरिक उत्पीड़न, दहेज, अश्लील चित्रण और निजता के हनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्राविधान करते हैं। और भारत में महिला सुरक्षा कानून के अधिकार तो इस प्रकार हैं। घरेलू हिंसा की सुरक्षा अधिनियम 2005 PWDVA, यह कानून पत्नी या लिव इन पार्टनर को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक या यौन हिंसा के खिलाफ सुरक्षा देता है। और बहनों, अगर इसकी अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसके पोर्टल पर जाकर के देख सकती हैं। और इसी के साथ एक प्यारा सा गीत।

बहनों, घड़ी की सुइयां अब ये इशारा कर रही हैं कि हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। समय कितनी जल्दी बीत जाता है। तो अपने अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
1: नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
4: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 870-001-4242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242।

0: allindiaradio.gov.in.
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details log on to www.ddindia.com।

0: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती किसानी। आज का विषय है मिट्टी का नमूना कैसे लें। इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर हनुमंत सिंह से विनय कुमार।
1: किसान भाई आज हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ल हैं डॉक्टर हनुमंत सिंह, और आप बताइए कि माटी का नमूना कैसे लेवे के चाही, का सावधानी बरते के चाही। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, हम आपका परिचय जानना चाहें।
2: इस कार्यक्रम को सुनने वाले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर हनुमंत सिंह, सहायक प्रक्षेत्र अधिकारी भारतीय मृदा एवं भू उपयोग सर्वेक्षण विभाग अहमदाबाद में कार्यरत हूँ। मृदा परीक्षण अर्थात मिट्टी की जांच की विशेष जानकारी के विषय पे चर्चा करूंगा। मृदा परीक्षण की जरूरत क्यों है, मृदा परीक्षण से लाभ क्या है। जब भी मृदा परीक्षण की बात होती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में ऐसे ही प्रश्न उठते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान लगभग 18% है, और हमारी जनसंख्या का बड़ा भाग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। ऐसे में मृदा का स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता में गिरावट कृषि और खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से चिंता का विषय है। आजकल कृषि में अर्थात मिट्टी में रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग, जैविक तत्वों के इस्तेमाल में कमी के परिणाम स्वरूप मृदा का उर्वरता शक्ति का क्षरण अथवा ह्रास हो रहा है, जिसके कारण किसान भाई अपने खेत से वांछित फसल की पैदावार नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। भविष्य में मृदा स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, मिट्टी में उचित उर्वरकों का प्रयोग करने के लिए, फसलों से अधिक उपज लेने के लिए मिट्टी की जांच अर्थात मृदा परीक्षण बहुत जरूरी है। मृदा के भौतिक एवं रासायनिक गुणों और मृदा में मौजूद पोषक तत्वों की स्थिति को जानने के लिए मृदा नमूना लेकर उसकी जांच कराना ही मृदा परीक्षण कहलाता है। मृदा परीक्षण से कई तरह की जानकारियां एवं तथ्य सामने आते हैं। मृदा परीक्षण के आधार पर विश्लेषण कर यह तय किया जाता है कि किन फसलों की खेती की जा सकती है, किस प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग किया जाए, उन उर्वरकों की कितनी मात्रा प्रयोग की जाए एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था रखनी चाहिए, इत्यादि प्रकार की जानकारियां मृदा परीक्षण से मिल सकती है, जिसको अपनाकर किसान भाई आप अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं।
1: माटी के जांच करे खातिर, नमूना लेवे खातिर कौन कौन उपकरण का जरूरत पड़ेले और नमूना कैसे ले खेते में से?
2: सबसे पहले किसान भाई ध्यान दें कि मिट्टी का नमूना लेने के लिए कुछ यंत्र और सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जैसे वर्मा जिसको आप अगर कहते हैं, फावड़ा, खुरपी, प्लास्टिक का साफ बाल्टी अथवा तसला, 1 किलोग्राम की 2 पॉलीथीन, सादा कागज, साफ पुराना अखबार, पेंसिल अथवा परमानेंट मार्कर, 2 जीपर बैग और धागा, इन सब की सहायता से आप मृदा नमूना तैयार कर लेते हैं। और साथ ही साथ किसान भाई ध्यान दें कि मृदा नमूना लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है, आप क्यों मृदा नमूना लेते हैं। सबसे पहले खेत का सर्वेक्षण करके खेत को उचित भागों में बांट दें, प्रत्येक भाग को खेत माने, प्रत्येक खेत का आकार 1 एकड़ से ज्यादा न रखें। यदि पूरा खेत समानता वाला हो तो 1 एकड़ से एक नमूना भी बनाया जा सकता है। नमूना एकत्र करने के लिए सबसे पहले ऊपर के घास फूस को साफ कर लेते हैं। भूमि की सतह से अर्थात 0 से 15 सेंटीमीटर या 0 से 30 सेंटीमीटर वी आकार का गड्ढा बनाते हैं। उथली जड़ वाली फसल लेने के लिए 0 से 15 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदते हैं, और गहरी जड़ वाली फसल जैसे गन्ना, कपास, अरहर आदि लेने के लिए 0 से 30 सेंटीमीटर का गड्ढा बनाते हैं। जब वी आकार

0: का गड्ढा तैयार हो जाए, एक किनारे से ऊपर से नीचे तक 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी की मोटी परत खुरपी की सहायता से निकालकर एक साफ प्लास्टिक की टोकरी में या तसले में रख लेते हैं। इस प्रकार से एक एकड़ खेत से 10 से 12 जगहों से मिट्टी का नमूना एकत्र कर लेते हैं। अब लिए गए नमूने को प्रयोगशाला में भेजने के लिए कैसे तैयार करते हैं, तो एकत्र किए गए नमूने को साफ जगह पर छाया में साफ पेपर पर रख कर सुखा लेते हैं। जब नमूना की मिट्टी हाथ से भुरभुरा होने लगे तो इसे पूरे नमूने को मिट्टी को भुरभुरा बनाकर एक समान मोटाई में गोल अर्थात रोटी के जैसा गोल बना लेंगे और इसे हाथ से 4 भागों में बराबर बांट लेंगे। आमने सामने वाले भाग को हटा देते हैं और फिर इस बचे हुए नमूने को पिछली क्रिया की तरह से फैला लें और इसे फिर 4 भागों में बराबर बांटें और फिर आमने सामने के भाग को हटा दें। यह प्रक्रिया तब तक दोहरानी चाहिए जब तक कि आपकी मिट्टी 0.5 किलोग्राम यानी 500 ग्राम तक न हो जाए। अब इस तैयार 500 ग्राम नमूने को एक साफ पॉलिथीन की थैली में रख लेते हैं। फिर इस थैली वाले नमूने को दूसरे पॉलिथीन की थैली में रख करके दोनों थैलियों के बीच में नमूने की जानकारी देने वाली सूचना पत्र को रखना न भूलें। और हाँ, सूचना पत्र पहले से ही तैयार कर लेते हैं जिसमें बहुत सारी जानकारियां लिखी होती हैं। सूचना पत्र कैसे तैयार करेंगे आप? जो सूचना पत्र होता है आपके खेत से लिए गए मृदा नमूना की जानकारी से तैयार किया जाता है। इसे तैयार करना बहुत ही आसान है। एक सादे पेपर पर पेंसिल अथवा परमानेंट मार्कर से निम्न जानकारियां लिखकर तैयार कर लेते हैं। जैसे पहले किसान का नाम और पता, दूसरा खेत का प्लाट नंबर, तीसरा मिट्टी की किस्म, चौथा सिंचाई की सुविधा, पांचवा जल निकास की सुविधा एवं भूमि के नीचे पानी की गहराई, खेत की स्थिति जैसे ऊपरी है, मध्यम है, निचली जमीन है, इस हिसाब से। अगला मिट्टी का नमूना लेने की गहराई। अगला नंबर होता है उपजाई गई फसल का नाम, खाद और उर्वरक का ब्यौरा भी देते हैं इसमें। आगे उपजाने वाली फसल का नाम, कौन सी फसल आपको लेनी है, भूमि से संबंधित कोई समस्या हो तो उसका भी उसमें जिक्र करते हैं, नमूना इकट्ठा करने की तिथि और लास्ट में किसान का हस्ताक्षर। इस पर्चे की 3 प्रति बनाते हैं, एक थैली के अंदर, दूसरी थैली के ऊपर बांध दें तथा तीसरी अपने पास रखें और इस तरह से तैयार नमूना 3 दिन के अंदर ही मृदा प्रयोगशाला में भेज देना चाहिए। अब किसान भाई ध्यान दें कि मृदा नमूना लेने के लिए कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है। जैसे खेत के कोने एवं मेड़ से 2 मीटर अंदर की तरफ का मिट्टी का नमूना लें। अधिकतर समय पानी भरे रहने वाले एवं नाली के पास के स्थान से मिट्टी का नमूना न लें। उर्वरक, खाद, नमक की बोरी के ऊपर मृदा नमूना न सुखाएं। यदि खेत ऊपर नीचे है और फसल अलग अलग होते हैं तो मिट्टी का नमूना अलग अलग लें। खेत में हरी खाद, कंपोस्ट की खाद, रासायनिक उर्वरक डालने के तुरंत बाद मृदा नमूना न लें। वृक्ष के नीचे एवं देसी खाद के पास से मृदा नमूना न लें। मिट्टी का नमूना रखने के लिए नई एवं साफ पॉलिथीन का प्रयोग करें। नमूना रखते वक्त सूचना पर्चा रखना न भूलें।
1: जब माटी जांच का रिपोर्ट चली आई तो वो हमें अगली फसल खातिर का कार्य योजना बनावे की पड़ी।
0: जैसे आप मृदा नमूना कब लेते हैं? फसल बोने या रोपाई करने के 1 या 2 माह पूर्व ही मृदा परीक्षण आपको करवा लेना चाहिए, या खाद अथवा उर्वरक के प्रयोग करने के पहले करवा लें। ऐसा करने से जैसे आप मान लीजिए खरीफ की फसल में करवाना चाहते हैं, खरीफ की फसल के लिए अप्रैल से लेकर मई के महीने तक मृदा परीक्षण करवाते हैं। रबी की फसल लगाने के लिए अगस्त से सितंबर के महीने जैसे करवा लेनी चाहिए। ऐसा करने से प्रयोगशाला से खाद एवं उर्वरकों के प्रयोग की जानकारी बुआई या रोपाई के समय प्राप्त हो जाती है। अगर आवश्यकता होती है तो खड़ी फसल से भी आप मृदा नमूना लेकर के भेज करके आप पोषक सुधार कर सकते हैं, इसमें कैसे दे सकते हैं, उस हिसाब से आप जो उर्वरक की संस्तुति आती है उसको प्रयोग करते हैं फील्ड में।
1: डॉक्टर हनुमान सिंह, आप इतना अच्छा जानकारी दे ली कि माटी जांच करावे खातिर खेते से नमूना कैसे लेवे के चाही, का सावधानी बरते के चाही, एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती किसानी। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अंग्रेजी तथा हिंदी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
1: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 वैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर

0: एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
1: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से

0: श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
2: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: गर्नुहुनेछ। पछि प्रधानमन्त्री मोदी हैदराबाद प्रस्थान गर्नुहुनेछ। उहाँले लगभग 9,400 करोड रुपियाँको लागत भएको धेरै विकास परियोजनाहरूको शिलान्यास अनि उद्घाटन गर्नुहुनेछ। उहाँले हैदराबाद पणजी आर्थिक करिडोर गुडे बेलोरदेखि महबुबनगरसम्म राष्ट्रिय राजमार्ग 167 को 4 लेनको निर्माणको आधारशिला राख्नुहुनेछ। यसको कुल लागत 3,175 करोड रुपियाँ भन्दा अधिक छ। प्रधानमन्त्रीले वारङ्गल पीएम मित्रा पार्कको पनि उद्घाटन गर्नुहुनेछ, जसलाई काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्कको नामले पनि चिनिन्छ अनि यो पनि पीएम मित्रा योजना अन्तर्गत विकसित गरिएको छ। भारतको स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढाँचाका लागि एक महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा श्री मोदीले हैदराबाद स्थित अत्याधुनिक क्यान्सर अस्पतालको पनि उद्घाटन गर्नुहुनेछ। समाचार आकाशवाणीबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। ताजा समाचार जान्नको लागि सोसियल मिडिया ह्यान्डल एक्समा @AIR न्युज कर्सियङ अनि फेसबुकमा आकाशवाणी समाचार नेपालीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ।
1: समय पर बुवाई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: मास्टर जी, ये किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं एनपीएस पेंशन की बात कर रहा हूँ।
2: एनपीएस पेंशन?
1: हाँ, आज ही एनपीएस में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना बुढ़ापा सुरक्षित करो।
2: बुढ़ापा सुरक्षित?
1: हाँ भाई, एनपीएस भारत सरकार के पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें आज से पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से। बुढ़ापे में पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है।
0: अब रहल समाचार। आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुरको 165 औं जयन्ती पालन गरिँदैछ। यस अवसरमा विश्व स्तरमा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित गरिँदैछ, जसमा शान्तिनिकेतन, विश्वभारती विद्यालय अनि पश्चिम बङ्गाल तथा बङ्गलादेशमा प्रमुख आयोजनाहरू सामेल छन्। यस अवसरमा उपराष्ट्रपति सिपी राधाकृष्णन, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह अनि गृहमन्त्री अमित शाहले 25 वैशाखको अवसरमा गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुरलाई श्रद्धाञ्जली अर्पित गर्नुभयो। सुन्नुहोस् एक रिपोर्ट।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य

0: वाह वाह क्या बात है। बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि संगीत नाटक जो हुआ करता था मराठी में महाराष्ट्र के मंचों पर, उसका एक स्वर्णिम युग था। और तब स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है, भूमिका नहीं करती थी,
1: नहीं करती, पुरुष लोग
0: तो पुरुष किया करते थे, जिसके लिए नारायण राजहंस यानी बाल गंधर्व जाने जाते हैं।
1: राइट, राइट।
0: और बहुत से केशवराव भोसले हुए, बहुत से ऐसे कलाकार प्रसिद्ध हुए अपनी उन स्त्री भूमिकाओं के लिए।
1: यहाँ उल्टे मामला हुआ,
0: और मामला उल्टा हुआ, आपने पुरुष की भूमिका इस नाटक में निभाई थी। जीवन में वो कौन सा अवसर था, वो कौन सा समय था जब पहली बार संगीत उद्योग से या फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ एक अवसर आपकी झोली में ऊपर वाले ने डाल दिया?
1: एक तो एक यूथ फेस्टिवल का ये था, हमारे जब मैंने जो पेश किया उसको बख्शीश भी मिला, प्राइज भी मिला। और बाद में मैं एक फिल्म डिवीजन की छोटी सी वुमेन्स एजुकेशन करके फिल्म बनाई थी उन्होंने, तो उसमें भी मैंने रोल किया था।
0: अच्छा।
1: क्योंकि एक वहाँ के लोग, दो तीन लोग हमारे स्कूल में आए थे शाला में कि किसको मतलब चुना जाए इस रोल के लिए, तो हम 10-12 लड़कियाँ खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे चुना और वुमेन्स एजुकेशन करके एक शॉर्ट फिल्म थी। पहले ज़माने में पिक्चर से पहले ये सब फिल्म डिवीजन वाली छोटी छोटी फिल्में दिखाते थे, अभी तो वो मामला बंद हो गया, शायद फिल्म डिवीजन भी चालू है, कहीं पता नहीं। तो वो पहला मौका मिलना चाहिए ऐसा कहना चाहिए। फिर बाद में कॉलेज में गई मैं, तो कॉलेज में बीए किया मैंने म्यूजिक लेके, तो म्यूजिक एक सब्जेक्ट था, बाकी और भी सब्जेक्ट थे उसमें बीए तक। और बीए का वो एग्जाम हुआ और इंटर में जब थी मैंने 16 साल की, तब शादी हो गए।
0: अच्छा।
1: 42 साल का मेरा जन्म है और 58 को शादी हो गई, 16 साल की। तो 58 को शादी हो गई, फिर मैं ऐसे घर में, तो बीए हो गया, मैं बैठ गई घर में, मतलब अभी 20 साल की मैं हो गई, तो पहली बेटी हो गई, तो 1962 में
0: जी
1: उसका बेटी का जन्म हुआ। फिर बाद में इन्होंने ही मुझे कहा, मेरे हस्बैंड ने, कि अभी तुम्हारा गाना इतना अच्छा है, तुम कर रही हो तो क्यों रोकती हो, एमए करो। एमए में इंटायर म्यूजिक था एसएनडीटी में, तो उनकी बदौलत मैं एमए करने के लिए गई। वो घर में भी ऐसा सुविधा थी कि मेरी सासू जी थी और बहुत अच्छी तरह से वो, मतलब बेटी घर में हो तो थोड़ा सा मतलब झिझक होती है कि जाओ कि नहीं, तो वो तरफ से कोई मुझे चिंता नहीं थी, कि वो बहुत अच्छी तरह मुझसे भी ज्यादा अच्छा संभालती थी बच्चों को। तो 62 में मैंने एमए किया फिर।
0: वाह।
1: और फिर एमए किया और फिर 68 में पहला मौका आया तलत साहब के साथ।
0: अच्छा।
1: तलत साहब के साथ एक नंदी दुगल करके प्रमोटर थे, तो मेरे हस्बैंड लायंस क्लब के मेंबर थे, तो वहाँ पे मैं इधर उधर एक दो गाने चली, प्रमिला जी आप गाने गाइए, कुछ फंक्शन हुआ लायंस क्लब का, तो नंदी दुगल जी ने सुना मुझे और मुझे आए, उन्होंने पूछे कि आप चलेगी, कि हमने चलेगी
0: दौड़ते
1: जाऊंगी कूदते जाऊंगी। तो तलत साहब के साथ ये ऐसा अच्छा मौका मिला, 3 महीने का वो टूर था हमारा।
0: क्या बात।
1: और दो बेटियां, एक 4 साल की एक 6 साल की, लेकिन सासू जी थी तो वो कोई चिंता नहीं थी घर की, मैं बिंदास चली गई और बहुत कुछ सीखने को मिला तलत साहब से। और वेस्ट इंडीज में हम लोग यहाँ कहते हैं कि हमारे जो प्लेबैक बड़े बड़े लीजेंड्स है
0: जी जी,
1: उनका यहाँ वहाँ इतना नाम था वेस्ट इंडीज में, हमको मतलब देखा हुआ जाके कि कोई गाने ऐसे थे तो तलत साहब हमको ये गाना मेरा है ऐसा पूछते, इतना उनको भी याद नहीं थे उनके गाने, ऐसे ऐसे गाने को लोग फरमाइश देते थे। बहुत मजा आया टूर में, उनसे वो सीखने को मिला।
0: तलत साहब को आपने याद किया तो कोई गाना उनका इस वक्त हम सुनाए अपने श्रोताओं को। तलत साहब ने मराठी में भी गाने गाए हैं।
1: मराठी में गाने थे
0: जी। हाँ। जी

0: बहुत ही सुंदर सा ये गीत सुजाता फिल्म से अपने श्रोताओं को हमने सुनाया। प्रमिला जी, फिर एक बार सुनहरी यादें के बारे में हम बात करते हैं कि इस शो को लेकर के आप अलग अलग देशों में घूमी हैं।
1: घूमी
0: जी, तो पहला टूर जो था वो किस देश का था?
1: नहीं, सबसे
0: पहले वेस्ट इंडीज के बारे में बताया।
1: ज्यादा तो जी
0: वेस्ट इंडीज आप तलत साहब के साथ,
1: तलत साहब के साथ गए। फिर उसी को नंदी दुगल जी ही थे
0: जी
1: प्रमोटर अगली बार, तो उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ जाने के लिए, मैंने कहा बाबा भाई मेरे जीवन में इतना अच्छा मौका और किसको नहीं मिलेगा।
0: जी, जी।
1: तो किशोर दादा के साथ ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया हमने, टूर किया।
0: अच्छा,
1: ईस्ट अफ्रीके का।
0: हाँ,
1: उनके तो क्या एक किस्से में, सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी थी, नाम भी नहीं था, ना तो प्लेबैक गाया हुआ था फिल्मों के लिए, तो उन्होंने पहले ही शर्त डाले कि मैं दो गाना डुएट नहीं गाऊंगा।
0: हाँ,
1: मैंने कहा बाबा दादा आप बड़े हैं।
0: हाँ,
1: और आपको कोई बोलेगा नहीं मेरे साथ डुएट गाए। तो मैं अपने गाने गा के, मतलब शो की शुरुआत में पहली एंट्री मेरी होती थी।
0: जी,
1: तो उस वक्त ये गाना बहुत मशहूर था, दम मारो दम। तो दम मारो दम गाना उषा उत्तम जी की रेंज और आशा भाई की रेंज, तो दोनों में मैं संभालती थी कैसे भी करके।
0: अच्छा।
1: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो गाना, तो इनवेरिएबली हर प्रोग्राम में वो गाना वंस मोर होता था।
0: अच्छा।
1: दम मारो दम।
0: हाँ, हाँ।
1: तो किशोर कुमार जी मेरे बाद उनकी एंट्री थी
0: जी, जी।
1: तो स्टेज पे आए थे, दम मारो दम ऐसा करते थे।
0: अच्छा।
1: तो वो कहा मैं कहा, फिर भी मुझे मतलब, और बहुत बहुत अस्वस्थ रहते थे उनको, जो मैंने नोटिस हाँ, किया हाँ, उनको
0: जी, जी।
1: इतने बड़े बहुत बहुत ही बड़े सर, सब गायक कलाकार लेजेंड्स हैं, लेकिन शो शुरू होने से पहले जो स्टेज के बाजू में जगह रहती वहाँ शेर कैसा है, इधर उधर इधर ऐसा घूमते, बहुत अस्वस्थ रहते थे।
0: जी, जी।
1: और उनका अब्दुल था मैन फ्राइडे, वो अब्दुल मेरा टॉवल का है, अब्दुल मेरा ये का है, अब्दुल मेरा, और एक बार स्टेज पे गए छूट गए फिर। मेरी ये नसीब में इतना अच्छा है थे का कि आपने तीन चार गाने गा के ये लोगों सामने से सुनते बैठूं, बहुत ही भाग्य था मेरा इस बारे में। रफी साहब को
0: किशोरदा ने फिर मंच पर कोई ड्यूएट आपके साथ?
1: ड्यूएट नहीं गाया,
0: नहीं गाया। अगर किशोरदा को याद करने के लिए कोई गीत हम सुने तो कौन सा होगा वो?

0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और लोगों ने क्या कहा जब आपने मंच पे
1: लोगों
0: प्रस्तुत
1: ने
0: किया?
1: बहुत नाम भी रखे,
0: हाँ,
1: क्योंकि ये क्या है, बोले दूसरों
0: मतलब
1: के
0: टीका टिप्पणी की, आप जो आपका
1: टीका
0: कहना है।
1: टिप्पणी
0: जी
1: की,
0: जी जी
1: वो
0: जी
1: मेरे लिए अच्छी थी, साबित हुई।
0: हाँ
1: हाँ, उसकी वजह यह है कि लोगों टीका टिप्पणी मतलब ये, अब 3 घंटे
0: जी
1: स्टेज पे खड़ा होना, कंपेयरिंग मैं ही करती थी उसमें।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: ओ हो
1: खड़ा होना, गाने गाना, फिर बाकी सब म्यूजिशियन को संभालना, ये भी बातें आती थी उसमें।
0: जी जी
1: तो ये जिनको मालूम नहीं है कि
0: हाँ
1: इसमें कितने कष्ट है या इसमें कितनी कठिनाइयाँ हैं,
0: जी,
1: तो लोग क्या, हाँ, वो दूसरे के गाए हुए वो जो पॉपुलर गीत है वही गाती है।
0: अच्छा।
1: हाँ, मतलब अपना कुछ नहीं, ये उनका शायद रोक होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन फिर उसमें मैं किसी की नकल नहीं कभी करती थी, लता
0: हाँ
1: जी, आशा जी, गीता दत्त, मैं अपने ढंग में। फिर अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं एक पिछले 4 साल से
0: जी।
1: लोगों ने कहा कि अब तुम खाली बैठे बैठे क्या कर रही हो, इतने सालों से शोध बन के इतने साल हुए, कि कुछ करो, कुछ लिखो, तुम्हारे
0: अच्छा
1: अनुभव एक्सपीरियंसेस कितने होंगे जो 25 साल के टूर किए या
0: जी
1: प्रोग्राम
0: जी
1: किए। तो मुझे उससे ये मिल गया कि सूचना कि कुछ तो करना चाहिए अभी बैठ के नहीं काम। तो मैंने अपना ये लिखना शुरू, एक छोटा छोटा
0: अच्छा
1: एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत सारे दरमियान आए थे,
0: हाँ हाँ
1: तो वो शुरू किए। बाद में वो किसी ने बोला कि वो लिख रही हो तो एक गाना भी गाओ ना साथ में। मेरी
0: अच्छा
1: सब सहेलियाँ, मेरे सब, तो सिर्फ हारमोनियम के साथ
0: ओहो,
1: मैं गाने गा के भेजती हूँ। रोज सुबह मेरा ये काम होता
0: क्या
1: है,
0: बात है,
1: कुछ लिखा हुआ। कभी कभी नए लोग भी जुड़ जाते हैं
0: सोशल मीडिया
1: तो
0: पर,
1: सोशल मीडिया पे,
0: ओहो हो,
1: व्हाट्सएप पे मैं सबको शेयर करती
0: क्या
1: हूँ।
0: बात है।
1: हाँ, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है इसके जरिए कि कोई भी गाना हो
0: हाँ
1: वो तुम्हारा करके गाती हो। वो
0: हाँ
1: प्रमिला दादा का गाना लगता है,
0: अच्छा,
1: क्योंकि लता बाई जो रेंज में गाती है मेरी आवाज़ नहीं जाती, आशा बाई जो रेंज में, उन मतलब उनके सबके रेंज में, अभी उम्र के हिसाब से भी पहले मैं उनके रिकॉर्ड के स्केल में गाती थी
0: जी
1: पहले
0: जी
1: गाने,
0: जी
1: अभी नई आवाज़ जाती है, काली एक, काली पाँच, काली एक तक
0: हाँ हाँ
1: जाती है।
0: हाँ
1: तो मैं अपने हिसाब से वो गाना गाती हूँ ना, थोड़ा
0: बराबर
1: सा मैं अपनी वैरायटी करती हूँ जो मुझे ज्ञान मिला है
0: जी
1: क्लासिकल
0: जी
1: म्यूजिक का।
0: हाँ
1: तो इसलिए लोगों ने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि तुम जो गाना गाती हो वो तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि मेरे स्टाइल में वो मैं गाती हूँ। ये
0: जी
1: मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है, और वो उसका मेरा उत्साह और बड़ा करीब करीब, अभी मैंने 700 गाने रिकॉर्ड करके
0: ओहो,
1: हारमोनियम पे सिर्फ
0: क्या बात है।
1: भेजे।
0: अच्छा
1: कभी
0: अच्छा
1: कभी अगर फास्ट गाना हो तो तबला मशीन साथ में लेके उसके
0: जी
1: साथ
0: जी
1: गाए,
0: जी
1: लेकिन बहुत सारे गाने मैंने ऐसे ही गाए, मजा आता है,
0: जी
1: मुझे भी
0: जी
1: अच्छा लगता
0: हाँ, तो
1: है।
0: इसमें आपने किसी नए सिंगर का गाना गाया हो, ऐसा भी हुआ?
1: नए में मुझे नहीं याद आता है, अलका
0: अच्छा अच्छा
1: याग्निक का एक गाना गाया शायद, अलका
0: हाँ
1: याग्निक
0: हाँ
1: का,
0: अच्छा,
1: मोह मोह के धागे,
0: मोमो के धागे, दम लगा कर है इस फिल्म का
1: दम लगा
0: गाना
1: के
0: है।
1: हैशा
0: जी
1: उसका
0: जी गीत
1: पे।
0: लेकिन आपने ट्राई किया है, आप पे गाया है
1: हाँ,
0: हारमोनियम पे,
1: मोह
0: तो
1: मोह के है। और
0: इसकी एक झलक हमारे श्रोताओं को।

0: आप जा... अलग गायिकाओं के गीत
1: जी
0: उस हर गीत को अपने ढंग से अपनी तरह से गाना
1: से
0: है। ये आपका हमेशा से रवैया रहा है
1: क्या? नकल नहीं किसी
0: नकल किसी नहीं, की नहीं, यानी मिमिक्री नहीं
1: की मिमिक्री नहीं।
0: अच्छा
1: अपनी हाँ, गीता दत्त के गाने बहुत मुझे पसंद।
0: लेकिन आशा जी का गाना है तो उसको आशा जी के अंदाज आपको अपने अंदाज में भी गाना
1: है। अंदाज लहजा थोड़ा आता ही था,
0: आता ही था
1: क्योंकि ओरिजिनल उन्होंने गाया हुआ है। मतलब शब्दोच्चार या कोई हरकत या कोई मुर्की या उनकी उनकी तरह से तो वो आता ही था अपने आप से,
0: अपने आप
1: नॉट नकल करने का हिसाब से नहीं आता था वो।
0: जी जी,
1: क्योंकि इसीलिए मैंने बोला कि अपनी आवाज नहीं जा रही है तो क्यों ये हट क्यों कि लता जी के रेंज में ही मैं
0: गाऊं,
1: ऊपर जाके फिर वो आवाज डबल हो जाएगी। उसके बदले अपने जिसमें तुम कंफर्टेबल हो उसी रेंज में गाओ ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, ये नए गाने सीखने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है।
1: ऐसा लगता है कि मैं अनुभव से ये कह रही
0: हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अनुभव।
1: क्योंकि आजकल वो जो कैरियो के जो प्रकार आया है ना,
0: जी जी,
1: आई हेट दैट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी गाता हूँ, मैं भी गाता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ सीखो, अच्छी तरह से तालीम पाओ, और इतना आसान नहीं है। नहीं तो एक ही लता मंगेशकर, एक ही आशा भोसले नहीं होती थी, बहुत सारे निकलते थे गली चौड़े में।
0: क्या बात है, तालीम बहुत जरूरी है। क्लासिकल बहुत ही सीखना कितना जरूरी है आपको लगता है?
1: बहुत, पहले 3-4-5 साल तो, फिर साइड बाय साइड तुम गाते रहो लाइट म्यूजिक, लेकिन आवाज की तैयारी, जो हरकतें मुरकतें, फिर अपने गले से नहीं है तो कोई अपने हिसाब से लेता है। दैट इज नॉट, मैं अलग गाती हूँ वो बात अलग है, लेकिन ओरिजिनल उनका गा के फिर मैं जो मेरा मेरे हिसाब से करना होता है कुछ जो वैरायटीज वो करती हूँ। बहुत सारे गाने ऐसे उसमें मैं करती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले उनके जैसा गाओ, मतलब वो जो हरकत है वो ऐसी ही आनी चाहिए,
0: जो ओरिजिनल है पहले वो तो गाओ।
1: हाँ। नकल नहीं आती उसमें, लेकिन उसमें आवाज की तैयारी भी हो जाती है।
0: हाँ।
1: और वो हिसाब से बहुत जरूरी है। आवाज अच्छी है मैं भी गाती हूँ वो गाना नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं अभी।
0: बिल्कुल सही।
1: ये तो ये जो बड़ों बड़े जो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी गवाई तपस्या में,
0: जी जी,
1: वो क्यों करते थे इतना?
0: बिल्कुल
1: ऐसे ही गाते थे ना।
0: सही बात, बिल्कुल सही। मन्नदा की बात करते हैं, आपने पहला गाना मराठी में उनके साथ रिकॉर्ड किया, संगीतकार थे श्री रामचंद्र, तो मन्नदा को किस तरह से आप याद करना चाहेंगी? आपने उनके साथ शो भी किया?
1: एक शो किया बड़ौदा में।
0: अच्छा,
1: बड़ौदा में मन्नदा ने मुझे एक, मतलब एक उनको मैंने पूछा था कि मेरी प्रॉब्लम थी कि हम लोग बड़ौदा में बाय ट्रेन जा रहे थे, तो मेरी आवाज़ में वो जो मॉड्यूलेशन होता है जो लाइट म्यूजिक के लिए बहुत ही ज़रूरी है।
0: जी, जी।
1: क्लासिकल में आप प्लेन सुर लगाओ और वही सुर अगर आप लाइट में गाते हो तो उसमें मॉड्यूलेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फ्लैट लगेगा और उस भाव नहीं आएंगे उसमें। तो मेरी आवाज़ में नहीं था, किसी की आवाज़ में जाता होता है, किसी की आवाज़ में, तो मैंने मन्नदा को पूछा कि मन्नदा ये कैसा लाने का अपने आवाज़ में। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे बताया कि एक सुर लगाओ और उसमें ऐसे आघात करते जाओ। अच्छा। और मेरे आवाज में अपने आप आ गया वो सब रियाज करके।
0: क्या बात,
1: बहुत ही अच्छा। फिर भी उन्होंने ये भी बोला कि ज्यादा नहीं करना, लेकिन कंप होगा तेरे आवाज में। बहुत ही अच्छा। उनका और मेरा जो डुएट है हाउस ऑफ बैम्बू,
0: जी जी,
1: तो ये नॉन मराठी लोग जो उनके च छ झ मराठी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक लाइन थी ऐसी वो गाने में,
0: जी जी,
1: बाम्बू चा वना च झ।

0: होच आहे. बांबूच्या वनात झऱ्याच्या काठी, येशील सजणे सजणे माझ्याच पाठी.
1: बिल्कुल, उनके लिए टंग ट्विस्टिंग
0: बहुत बहुत. तीन बार हुआ ठीक, चार बार हुआ इतने बार. या अन्ना तेरी मराठी भाषा मेरे को नहीं होगा. अन्ना बोले डरो डरो डरो, मैं कुछ करता हूँ. तो उन्होंने वो नीचे डांट वगैरह देते हैं उनको बराबर करके लाइन में.
1: क्यों ना इस गीत की एक झलक आप सुनवा दे हमें.
0: हाउस ऑफ बैम्बू.
1: जी जी.
0: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर. Number 54 the जिसे मॉड्यूलेशन फोर की उसके कम करना, उसके ज्यादा फोर्स में गाना, वो भी डिपेंड करता है.
1: जी जी जी.
0: Number 54 the house of the bamboo door. हो बांबूचे घर बांबूचे दार, बांबूची जमीन पिवळी शार. बांबूचे घर बांबूचे दार, बांबूची जमीन पिवळी शार. बांबूच्या घरात आहा आहा स्वप्नाचा झुला लला लला. झुलवित राहील पापा पापा तुला आणि मला. नंबर 54 है द हाउस ऑफ द बॅम्बू डोर. नंबर 54 द हाउस ऑफ द बॅम्बू डोर.
1: क्या बात है, बहुत सुंदर.
0: उनका तो क्या.
1: वाह वाह. मन्ना दा अपने क्लासिकल सिंगिंग के लिए ज्यादा जाने जाते हैं.
0: जी जी जी.
1: हालांकि हर गाना क्लासिकल बेस ही होता है.
0: हाँ.
1: मगर प्योर क्लासिकल गाने प्योर जिनको कहा जाए, जो लाइट कमर क्लासिकल ज्यादा लगते हैं, ऐसे उनके कई गाने.
0: लेकिन दूसरे सिंगरों में भी लक्ष्मी साहब थे, क्लासिकल गाने हैं, ऐसी बात नहीं.
1: बहुत सी.
0: लेकिन उनका जो आवाज में जो ये था दर्द या भारीपन था आवाज में, वो उस पर बहुत असर करता था गाने पे, ऐसा मुझे लगता है. मुझे उनका एक गाना बहुत पसंद है, मेरे प्यारे वतन.
1: वाह,
0: बहुत अच्छे. थोड़ा सुना था.

0: क्या बात है,
1: बहुत अच्छा। ये गाना गाते वक्त रोना आता है, जो एक अंतरा है, माँ का दिल बन के कभी तू सीने से लग जाएगा, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता।
0: वाह वाह,
1: बहुत अच्छी लिखावट। गाने लिखे जाते थे, गाए जाते, संगीतकार।
0: जी जी जी, प्रमिला जी, इतने शोज आपने किए हैं और बहुत नामचीन कलाकारों के साथ भी आपको मंच पर गाने का मौका मिला है। हम रफी साहब को अभी याद करते हैं, रफी साहब के साथ।
1: रफी साहब तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट कॉर्नर है। उनके उनके साथ बहुत सारे टूर किए, साउथ अफ्रीका, फिजी, मिडल ईस्ट, फिर जाम्बिया, मलावी, बहुत टूर किए रफी साहब के साथ। और जो उनसे सीखा है ना, मतलब सिर्फ गाना नहीं, स्वभाव के हिसाब से भी। इतने नम्र, और जितना ऊंचा आदमी उतना नम्र स्वभाव। और उनको किसी ने सवाल पूछा, एक पत्रकार परिषद थी, कि आप गायक तो मतलब चोटी के है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप साथ साथ थोड़ा कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन में क्यों नहीं आप हाथ अपना आजमा दे? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो कर रहा हूँ, मतलब मेरा गाना, उसमें ही मुझे नहीं लगता कि मैं परिपूर्ण हूँ, तो मैं और क्या करूँ, और किसमें हाथ क्यों डालूँ?
0: विनम्रता की हद है,
1: हद है, हद है। और इतने नम्र दूसरे अपने साथ में कलाकार, मैं तो उनके सामने बहुत ही छोटी थी, लेकिन जो तारीफ करनी होती है, तो एक दिन मैंने नए नए गाने हम लोग चुनते थे, वो मैंने वो कव्वाली गाई, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, तो उसमें एक तो बड़ी लंबी चौड़ी, उसमें सरगम भी थी, उसमें तान भी थे, तो वो गाया तो लोगों को भी बहुत, साउथ अफ्रीका की याद है,
0: जी जी,
1: बहुत पसंद आया लोगों को, वो गाना ही ऐसा है। तो रफी साहब, सब लोग बैठे थे, हम प्रोग्राम ख़त्म हुआ, तो प्रमिला जी आजकल बहुत कठिन कठिन गाने चुन रही है। अपनी तरफ से उन्होंने जो दाद दी है।
0: जी जी, क्या बात, वाह वाह,
1: बहुत अच्छा लगा।
0: रफ़ी साहब के इतने सारे गाने हैं
1: जी,
0: मगर उनका कौन सा गाना आपको ज्यादा पसंद है?
1: ज्यादा पसंद नहीं बोलूंगी, सबसे सब पसंद, कि ये जो गाना है उनका, तुम जो मिल गए हो,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: जो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, वो गाने के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी है, और तुम जो मिल गए हो,
0: जी जी,
1: हाँ,
0: हंसते
1: जख्म,
0: जी जी,
1: तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है,
0: हंसते जख्म फिल्म का। जी बिल्कुल, वही सुनते हैं।

0: के जहां मिल गया।
1: तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है, ऐसा कब किसी ने आपके लिए कहा?
2: जो मैंने कहा 16 साल की जी, थी जब ही उनके मिलने के बाद जहाँ ही मिल गया।
1: क्या बात है,
2: क्योंकि माय हस्बैंड उनके लिए बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं जो कर रही थी उनमें मैं 5% कर रही थी, 95% उनका सहयोग था।
1: क्या बात,
2: बहुत। एक छोटा इंसिडेंट बताती हूँ, उनके पूरे आयुष्य में उन्होंने बहुत बहुत सर्जरीज हुए, उनके 5 मेजर सर्जरीज, उसमें 2 हार्ट बाईपास, 2 एक मैन्यूरिज्म करके है और 2 किडनी स्टोन की। उस वक्त के रेजर वेजर कुछ नहीं था, स्ट्रेट फाड़ो जाओ किडनी तक और करो जो
1: जी, जी,
2: तो
1: जी।
2: ऐसा होके भी एक दिन उनकी अचानक से अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ी किडनी स्टोन की। डॉक्टर एस डी बापट करके दादर में है, उन्होंने किया। और दूसरे दिन मुझे टूर पे जाना था, 8 दिन का टूर था।
1: अच्छा।
2: घर में सासू जी थी। लेकिन मैंने बोला नहीं अम्मी मैं टूर कैंसिल, क्योंकि ये सब अचानक आया। प्रीप्लान तो हमारा टूर था, तो बोला नहीं मैं कैंसिल करती हूँ, कोई बात नहीं, जो नुकसान होगा तो भर देंगे उनका।
1: अच्छा।
2: और बहुत जल्दी इतला कर रहे हैं तो उनको भी सुविधा हो जाएगी कैंसिल करने की। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: अच्छा।
2: तुम कैंसिल नहीं करोगी, तुम जाओ वही नहीं, मतलब हम सासू जी को वही नहीं बोलते थे।
1: अच्छा।
2: वही नहीं मेरे पास है, वो देखेगी, तुम बिंदास जाओ। उस वक्त फोन भी ये भी कुछ नहीं था, तो बीच में प्रोग्राम के बाद ट्रंक कॉल बुक करो, फिर वो आधे पौने घंटे के बाद लगे, तो ऐसे सब होके भी उन्होंने ऐसे एक इंसिडेंस है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए जिसमें उन्होंने जो मेरा साथ दिया है।
1: वो
2: दुनिया में किसी हस्बैंड अपनी वाइफ को देगा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल। कितनी भाग्यशाली आप हैं।
2: बहुत बहुत, मैं तो बोलूं आपको हर स्तर में मैं भाग्यशाली हूँ।
1: जी, जी, जी।
2: बचपन से गाना सीखने को उत्तेजन मिला, फिर मौके मिलते गए, कंपटीशन में भाग लिए, फिर प्रोग्राम शुरू किए, फिर रसिकों के आग्रह से और रसिकों के मिला मुझे कब साथ मिला, उससे वो चले, बहुत चले, 25 साल तक किए। बीच में ये सब रफी साहब जैसे उनके साथ ये टूर हुए
1: जी।
2: तो मेरा जो एक आयुष्य का आलेख बोलते हैं जिंदगी का
1: जी।
2: वो चढ़ उतार रहता है, ऐसा बोलते हैं कभी कभी चढ़कर, तो मेरा शुरू से लेके चढ़ता ही जा रहा है।
1: वाह वाह।
2: इसलिए मैं ईश्वर के भी आभार और बाकी मेरे आसपास जो लोग हैं बाकी के उनके भी आभार मानने चाहिए कि उनकी सबकी बदौलत ये सब हुआ।
1: क्या बात, परिवार की बात चली है
2: जी।
1: तो आपकी अगली पीढ़ी में
2: मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ गाती थी।
1: अच्छा।
2: शो में शुरू से मतलब उन्होंने तब कुछ कि मेरा ही वक्तव्य में कंट्रोल्स कर रही हूँ।
1: अच्छा।
2: क्योंकि उन्होंने तब कोई सिखा नहीं था गाना। अच्छा। वो छोटी थी दोनों।
1: हाँ, हाँ।
2: तो उनका जाते हैं उनके पास मतलब वो हुनर था, तो दोनों मेरे शो में गाती थी।
1: अच्छा।
2: हाँ, मतलब बाद में बड़ी बेटी की शादी हो गई तो छोटी पे बाहर आ गए।
1: बचपन से ही उन्होंने आपको उन्होंने गाते
2: देखा,
1: देखा
2: तो उन्होंने
1: तो वो भी गाती वो
2: और लोग पसंद भी करते थे, ऐसे नहीं कि क्यों आए ऐसे ऐसे नहीं। और हम तब तो जब वो बड़ी हो गई तो मैं थोड़ी सी मतलब उनकी जैसी, हम तीनों जैसे, तो किसी ने एक बार स्टेज पे बोला, किसी ने आदमी ने आके बाद में, तुम तीनों बहनें कितनी अच्छी दिखती हो स्टेज पे।
1: क्या बात,
2: बड़ी बेटी एकदम हमारी माँ है, वो हमारी बेटी नहीं, हमारी बहन नहीं, बहन नहीं है।
1: क्या बात है, क्या बात, कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट।
2: बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट।
1: जी जी जी। अगर आपसे कहा जाए कि अपने परिवार के लिए एक गाना चुनिए तो कौन सा गीत होगा, आप तीनों ने मिलके जो स्टेज पर गाना गाया होगा?
2: हाँ, हम लोग डुएट भी गाते थे
1: जी,
2: वो
1: जी।
2: मन क्यों बहका रे बहका वो है, फिर कजरा मोहब्बत वाला वो है, फिर अन्ना जी का अपलम चपलम उस पे

0: भी
1: क्या
0: बताता
1: बात
0: है
1: है,
0: मेरे
1: क्या
0: शो
1: बात
0: में,
1: है।
0: ऐसे सब डुएट डोगा ने हम लोग ने, तो उसका पैटर्न गाना मेरी बड़ी बेटी का, पंख होती तो उड़ाती रे।
1: वाह,
0: हाँ, फिर उसकी शादी हो गई तो दूसरी ने लिया वो,
1: अच्छा
0: पंख होती तो, लेकिन वो गाना जरूरी था हमारे शो
1: अच्छा
0: में,
1: अच्छा अच्छा
0: बहुत लोगों को पसंद
1: तो क्यों
0: आता
1: नहीं
0: था।
1: यही गीत सुनवा दिया जाए श्रोताओं
0: अरे
1: को।
0: बाप रे
1: हाँ, रामलाल जी का कंपोजिशन है।

ये थी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। आज इस बातचीत का पहला भाग आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग अगले हफ्ते।

0: जादू पर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: ये है विविध भारती।
2: विविध भारती देश का रेडियो।
3: ओ मेरे पिया दे रंगून किया है वहां से टेलीफोन।
4: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर ओ सर।
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
6: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
4: विविध भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
7: आज के फनकार।
4: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
7: विविध भारती के

श्रोताओं नमस्कार। मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने को है आरंभ होती है आज की सायंकालीन सभा। पहले लीजिए सुनिए दिल्ली से रिले हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया। कांग्रेस के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किर्तियानिया, खुदीराम टुड्डू और निशित प्रमाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया है।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोईचीशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष महासचिव एमए बेबी ने कहा कि राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने चेन्नई में आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 करोड़ रुपए के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धनशोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धनशोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को 147 के बजाय 144 अंकों से हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से
5: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
6: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
6: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
7: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
5: अरे
3: काट दिया।
7: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
7: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे,
8: RBI कहता है।
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: अपने रेडियो सेट के वॉल्यूम को थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, क्योंकि मैं आ गया हूँ आपका दोस्त शिवांश लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और हाँ दोस्तों, आए दिन जो मौसम बदल रहा है उसमें अपना ख्याल ज़रूर रखिए। कभी धूप हो जा रही है तो फिर अचानक से

बारिश का मौसम, तो इसमें मौसम के बदलाव से बहुत सारी बीमारियां आएंगी, और उन बीमारियों के चपेट में अगर हम आ गए तो फिर हम कई दिनों तक बिस्तर पे पड़ जाएंगे, और जब आप बिस्तर पे पड़ जाएंगे तो फिर हमारी बातें किससे होंगी। इसीलिए अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फुल कपड़े पहन के निकलिए, भले ही थोड़ा गर्मी लगे उसको बर्दाश्त करिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए और अपना ख्याल रखिए। और चलिए हमेशा की तरह अपने कार्यक्रम की शुरुआत एक सुविचार के साथ करते हैं। दोस्तों, सफलता उसी को मिलती है जो कठिनाइयों के सामने हार नहीं मानते हैं। अर्थात जीवन में परेशानियां और चुनौतियां सभी के सामने आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य से, मेहनत से और आत्मविश्वास के साथ लगातार प्रयास करता रहता है, वही अंत में सफलता को प्राप्त होता है, वो सफलता प्राप्त कर लेता है। हार मान लेना, असफलता को स्वीकार करना, ये कोई भी सही निर्णय नहीं है। हमको जबकि करना क्या चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए और सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों, ये तो थी सुविचार की बातें। चलिए चलते हैं अपने विषय की ओर। और आज के इस आधुनिक युग में ना दोस्तों, विज्ञान और तकनीक तेज़ी से आगे बढ़ रही है। नई नई खोजों और आविष्कारों के पीछे जिस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो है मटेरियल साइंस, अर्थात दोस्तों पदार्थ विज्ञान। दोस्तों, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न पदार्थों जैसे धातु हुआ, प्लास्टिक और सेरेमिक हुए, सेमीकंडक्टर्स हो गए, और नैनो मटेरियल के जो गुण हैं, उसकी संरचना है और उसके उपयोगों का, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। आज मोबाइल फ़ोन हुआ, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पैनल, हवाई जहाज़ और आधुनिक मशीनों के निर्माण में मटेरियल साइंस का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए वर्तमान समय में यह क्षेत्र युवाओं के लिए एक उभरता हुआ और आकर्षित करने वाला करियर विकल्प उभर के आया है। दोस्तों, यदि किसी भी छात्र की रुचि इस विज्ञान, तकनीक और रिसर्च में है तो वह इस क्षेत्र में शानदार भविष्य बना सकता है। हमें करना क्या है, 12वीं कक्षा के बाद या 12वीं कक्षा में जब 11 में हम लोग जाते हैं तो उसमें विज्ञान विषय, विशेषकर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ बच्चों को पढ़ना है। फिर 12वीं के बाद आपको बीटेक या बीएससी या अन्य तकनीकी कोर्स के माध्यम से मटेरियल साइंस में प्रवेश कर जाना है। भारत में कई प्रतिष्ठित संस्थान भी हैं जैसे IIT और NIT, इन क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्रदान करती हैं। इसके बाद छात्र रिसर्च, इंजीनियर, इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल्स के साथ साथ अंतरिक्ष विज्ञान जैसे क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया नई तकनीक की ओर बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक वाहन के लिए बेहतर बैटरी, हल्के और मजबूत धातु तथा पर्यावरण के अनुकूल पदार्थों की मांग तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में मटेरियल साइंस विज्ञान जो विशेषज्ञ हैं उनकी आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। इसलिए इस क्षेत्र में रोजगार के अच्छे अवसर हैं, उसके साथ साथ रिसर्च और नवाचार के भी अपार संभावनाएं आपके सामने हैं। साथ ही साथ दोस्तों, देश विदेश की बड़ी कंपनियां और अनुसंधान संस्था योग्य युवाओं को आकर्षक वेतन भी दे रहे हैं और सम्मानजनक पद भी प्रदान कर रहे हैं, तो हम पीछे क्यों रहें। अगर आपको इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना है तो अभी से लग जाइए। दोस्तों, मटेरियल साइंस केवल एक विषय नहीं बल्कि भविष्य की तकनीकों की आधारशिला है। यह क्षेत्र उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो विज्ञान के माध्यम से समाज और देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं। आप सभी के लिए, अगर आपको इस फील्ड में काम करना है तो अभी से लग जाइए। आप सभी के उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं बातों के साथ चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गीत, आइए बने चलते हैं बातचीत की दुनिया में। और दोस्तों आज हम सभी महान साहित्यकार, दार्शनिक, शिक्षाविद एवं नोबल पुरस्कार विजेता, नोबल पुरस्कार से सम्मानित रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। दोस्तों गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय साहित्य और संस्कृति के ऐसे उज्ज्वल नक्षत्र हैं जिनकी रचनाएँ आज भी मानवता को नई दिशा प्रदान करती है। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म आज ही के दिन 9 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। बचपन से ही उन्हें साहित्य और संगीत में गहरी रुचि थी। उन्होंने बहुत ही कम आयु में कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। उनकी लेखनी में प्रकृति का सौंदर्य, मानवता का प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना स्पष्ट दिखाई देती थी। दोस्तों गुरुदेव ने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, गीत और निबंध जैसे अनेक विधाओं में अमूल्य योगदान दिया। उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना गीतांजलि ने उन्हें विश्वभर में पहचान दिलाई थी। इसी कृति के लिए वर्ष 1913 में उन्हें साहित्य का नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वे नोबल पुरस्कार पाने वाले एशिया के प्रथम साहित्यकार बने। यह उपलब्धि केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गौरव का विषय था। रविन्द्रनाथ टैगोर केवल महान साहित्यकार ही नहीं बल्कि दूरदर्शी शिक्षाविद भी थे। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं बल्कि व्यक्ति के भीतर मानवीय मूल्यों और रचनात्मकता है उसका विकास करना है। इसी सोच के साथ उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की जो आगे चलकर विश्व भारतीय विश्वविद्यालय के रूप में विश्वविख्यात हुआ। दोस्तों गुरुदेव टैगोर ने देशभक्ति की भावना को भी अपनी रचना के माध्यम से नई ऊंचाई दी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला उनकी ही अमर रचनाएं हैं। यह उनके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का अद्भुत उदाहरण है। दोस्तों उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितना उस समय हुआ करते थे। वे मानवता, शांति और भाईचारे के समर्थक थे और उनका मानना था कि दुनिया को प्रेम और संवेदना से ही बेहतर बनाया जा सकता है। आज का समाज अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब गुरुदेव के आदर्श हमें सही मार्ग दिखाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि ज्ञान, कला और संस्कार के माध्यम से हम समाज को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आज उनके जयंती के अवसर पर उन्हें शत शत नमन करते हैं और इन्हीं बातों के साथ चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गीत, आइए पुनः चलते हैं बातचीत की दुनिया में। और दोस्तों आज हम भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और प्रख्यात विचारक गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती पर उन्हें नमन करते हैं। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले उन महान नेताओं में से थे जिन्होंने अपने विचारों, त्याग और सेवा भावना से राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव रखी थी। दोस्तों गोखले जी का जन्म आज ही के दिन यानी 9 मई को 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्मे गोखले ने अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। वे बचपन से ही देश और समाज की समस्याओं को लेकर बड़े ही गंभीर थे। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने देश की सेवा को अपना जीवन उद्देश्य बना लिया। गोखले जी का मानना था कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सबसे बड़ा आधार शिक्षा और सामाजिक जागरूकता है। उन्होंने लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का भी प्रयास किया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे और देश की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक तथा शांतिपूर्वक तरीके से संघर्ष करने में विश्वास रखते थे। गोपाल कृष्ण गोखले एक महान वक्ता और कुशल राजनीतिज्ञ थे। उनके विचारों में संयम, धैर्य और दूरदर्शिता साफ दिखाई देती थी। वे मानते थे कि देश की उन्नति केवल राजनीति स्वतंत्रता से नहीं मिल सकती है, बल्कि सामाजिक सुधार और नैतिक मूल्यों से ही संभव हो सकती है। आज उनकी जयंती पर हम सभी मिल करके उन्हें शशत नमन करते हैं। आइनी बातों के साथ चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर।

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गीत। बातें तो बहुत होती हैं आपको पता ही है मेरे पास, लेकिन क्या करें, समय की पाबंदी है। समय हो चुका है जाने का, लेकिन जाने से पहले आइए नज़र डाल लेते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। दोस्तों कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं। हमेशा की तरह इसका उत्तर आपको अगले दिन मिलता है, तो मैं आपको बता दूँ कि कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को रोम कहते हैं, ROM, रोम। दोस्तों आज का प्रश्न है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ एक भी नदी नहीं है। मैं अपना प्रश्न एक बार पुनः दोहरा देता हूँ कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ एक भी नदी नहीं है। हमेशा की तरह इसका उत्तर आपको कल मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बालवाणी।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: शास्त्रीय संगीत नृत्य साहित्य नाट्य विधाएं धारावाहिक वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.com।

0: www.cbc.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: लैका लोगन जय हिंद। भैया देखा यही नारा के साथे अपने लैका लोगन के बैठकी शुरू भइल।
4: बिल्कुल।
3: और लैका लोगन के हमन के सामयिक जानकारी दियावल जाला ताकि उनके जो सामान्य ज्ञान बा ओमे बढ़ोतरी होखे।
4: बिल्कुल।
3: अब भैया देखे इतना बड़ा देश है।
4: हाँ।
3: और ए देश दुनिया में बहुत सारा काम होत रहला और बहुत सारा दिवस सप्ताह और महीना मनावल जाला, एक जानकारी हमन के लैका लोगन के दियावल
4: जाला। बिल्कुल।
3: अब भैया देखा जैसे आदमी बाटे उनके अइले गइले पर कुछ रोक टोक जरूर रहला।
4: बिल्कुल।
3: भैया केहू कहला कि हम गाँव से बाहर जल्दी नहीं जाली, केहू कहला भैया हम जिला के बाहर नहीं जाली, केहू कहला भैया हम प्रदेश के बाहर गैले नहीं बैठी। कई जनी परेशान रहें भैया हम देश के बाहर कहीं चल जाती घूमी होती बड़ा ठीक रहल है। लेकिन भैया देखा ये बंदिश आदमी खातिर है, अगर देखल जाए तो जो पक्षी बाटे इनके खातिर कोनो बंदिश नहीं बा, और देश के सीमा कोनो सरहद इनके रोक नहीं पाए। भाई मौसम के हिसाब से यावत जात रहले और अपन वंश वृद्धि खातिर कहीं आवेले जाले, मौसम अनुकूल रहला वहाँ चले जाले, प्रतिकूल मौसम जहाँ रहला वहाँ से विस्थापित हो जाले और हजारों हजार किलोमीटर के यात्रा करके एक देश से दूसरे देश में, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की यात्रा निरंतर करत रहले, और यही तरह से इनके जीवन चक्र भैया चलत रहला। ये कुल बात हम भैया एलिए अपने लैका लोगन के कहता थी कि आज भैया एक खास दिवस है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। अब भैया देखा जब प्रवासी के बात ये आई तो हम कहली है ना भैया कि ये बहुत दूर दूर से यात्रा करके अपने अनुकूल जगह जो है खोजल है भाई, जहाँ चारा मिल जाए इनके, खाए की मिल जाए, मौसम बढ़िया हो खे, इनके ज़्यादा परेशानी न हो खे, अपने सुविधा के ध्यान में रख के भैया हजारों किलोमीटर की यात्रा करे लें।
4: बिल्कुल।
3: हाँ, और ई भैया जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है इस साल में 2 बेर मनावल जाला। एक तो पहला जो है मनावल जाला मई के दूसरा शनिवार, जैसे कि आज मनावल जात बा।
4: हाँ।
3: और यही तरह से अक्टूबर के दूसरा शनिवार के भी ई प्रवासी पक्षी दिवस मनावल जाला।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
3: कुल मिला के भैया ई प्रवासी पक्षी दिवस मनौले के उद्देश्य यही है बा कि अगर कोनो प्रवासी पक्षी अकेले या झुंड में कहीं से आवताटने कहीं जाताटने तो इनके मार्ग में कोनो अवरोध न पैदा कर जा, आदमी इनके काम में हस्तक्षेप न करे।
4: बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज बतौनी आप इतना बढ़िया कि मनुष्य के जो बाटे बंदिश बा, लेकिन पंछी के कोनो बंदिश नहीं।
3: बिल्कुल भैया,
4: अपने हिसाब से कहीं भी जा सके न आ सके न, लेकिन ये दिन के ये दिवस के मनौले के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यही बा कि जौन भी प्रवासी पक्षी बा ने अगर कहीं भी केहू बाहर जाता है, चाहे वो कोनो जीव हो, कहीं ना कहीं जीवन पे संकट बा।
3: बिल्कुल।
4: तो संकट के संरक्षण कैसे हो, जीवन के रक्षा कैसे हो।
3: बिल्कुल भैया, देखा एक बात ही कहल है ना कि अगर हम बचा नहीं पावता ठीक हो गए तो ओकरे मार्ग में बाधा भी हम न बने।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
3: भाई जौन उनका सतत प्रवाह चलत चली आवता, जौन उनके जीवन का क्रम चलत चली आवता, ऐसा न हो कि आदमी अपने गतिविधि से उनके यह चक्र के रोके या एमे कोनो बाधा पैदा करे।
4: हजार किलोमीटर से कोनो पक्षी आवता तो जरूर कोनो कोनो मौसम
3: भैया परेशानी हो सकला। एक तरह से भैया देखल जाते हैं मेहमान पक्षी हैं।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
3: समय के साथ आई हैं और समय के साथ चल रही
4: हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो भैया जैसे घर में मेहमान आवला तो खूब उनके खातिरदारी होले, खाना पीना की व्यवस्था हो जाले, भैया ना कुछ कर पावता तो कम से कम जहाँ भी आवत आटे वहाँ उनके जाके देखे, उनके सहूलियत खातिर कुछ ना कुछ ऐसा जगह बना दे जहाँ वो आराम से रह सके कुछ समय। तो भैया उसे उनके सहूलियत हुई और उनके वंश वृद्धि भी हुई, और यही तरह से साल दर साल जो है आवत रही हैं, जात रही हैं, और पूरा जो प्रकृति का ही चक्र बा भैया वो संतुलित रही।
4: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पंच भाई बत कही जारी रही, लेकिन बच्चा लो
3: हम चाहते हैं कि लेकर
4: लोग बाल गीत सुन लिया जाए पहले, उसके बाद तब कार्यक्रम आगे बढ़ी।

0: हाँ लइका लोग सुनत रहला जोन बाटे, इतना अच्छा गीत
1: बिल्कुल भैया। हाँ,
0: लगल है थे लइका लोग आई सुनल जा वार्ता।
1: हाँ, हमारे राष्ट्रीय
0: प्रतीक चिन्ह ए विषय पे जानकारी देतना डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह जी।
2: प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अलग पहचान होती है जिसे सर्वसम्मत से सबके द्वारा स्वीकार किया जाता है। राष्ट्र की पहचान राष्ट्र के प्रतीक एवं वहाँ के नागरिकों से होती है। देश के राष्ट्रीय प्रतीक का अपना अलग इतिहास व्यक्तित्व एवं विशिष्टता होती है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक देश के प्रतिबिंब हैं जिन्हें बहुत सोच समझकर चुना गया है। राष्ट्रीय ध्वज, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। इसमें अनुपात पट्टी वाली 3 पट्टियां हैं। सबसे ऊपर गहरा केसरिया जागृति शौर्य तथा त्याग का प्रतीक है। बीच में सफ़ेद सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है तथा सबसे नीचे हरा रंग समृद्धि एवं जीवन का प्रतीक है। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का प्रतीक 3:2 है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का 24 तीलियों वाला चक्र है जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इस चक्र का व्यास 3/4 सफ़ेद पट्टी के चौथाई जितना है। चक्र धर्म तथा ईमानदारी के मार्ग पर चलकर राष्ट्र की उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। ध्वज का उचित प्रयोग एवं प्रदर्शन एक संहिता द्वारा होता है। 26 जनवरी 2002 से ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय झंडा संहिता 2002 ने लिया है। इसमें व्यवस्था है कि आम नागरिकों, निजी संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं द्वारा ससम्मान राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा सकता है। राष्ट्रीय गान भी प्रमुख प्रतीक चिन्हों में है। राष्ट्रीय गान की रचना रवींद्रनाथ टैगोर ने की थी। सर्वप्रथम इसे 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। इस गीत का प्रकाशन सर्वप्रथम सन 1912 में तत्वबोधनी पत्रिका में भारत विधाता शीर्षक से हुआ जिसे वर्ष 1919 में अंग्रेजी अनुवाद मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित किया गया। पूरे गीत में 5 पद हैं। राष्ट्रगान में गीत के पहले 5 छंदों को अपनाया गया है। संविधान सभा ने इस गीत के हिंदी संस्करण को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। इसे गाने का समय 52 सेकंड है। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप से गाया जाता है जिसमें इसकी प्रथम एवं अंतिम पंक्तियां 20 सेकंड में गाई जाती हैं। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय शपथ एवं राष्ट्रीय प्रतीक भी प्रमुख प्रतीकों में गिने जाते हैं। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में प्रकाशित अपने उपन्यास आनंद मठ में संस्कृत में रचित इस गीत को लिखा। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के साथ साथ इसे भी राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया। इसका अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया। पूरे गीत का छोटा सा पद ही राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृत है। इसे 65 सेकंड में गाया जाना चाहिए। यदुनाथ भट्टाचार्य ने सर्वप्रथम इस गीत को संगीत धुन किया। फिलहाल इसे पन्नालाल घोष द्वारा बनाई गई धुन पर गाया जाता है। कैलेंडर, साका कैलेंडर को राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा प्राप्त है। इसे कैलेंडर कमेटी द्वारा 1957 में बनाया गया जिसे भारतीय पंचांग की मदद से तैयार किया गया। इसमें हिंदू धार्मिक कैलेंडर के अलावा खगोल, डेटा, समय भी लिखित है। राष्ट्रीय शपथ को तेलुगु में वेदिमर्सी वेंकट सुब्बाराव द्वारा 1962 में लिखा गया। इसे 26 जनवरी 1965 से सभी विद्यालयों में निर्धारित रूप में गाए जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय प्रतीक को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक सिंह स्तंभ की अनुकृति है जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में शीर्ष स्तर पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र बल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा, एक सार तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इसके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर धर्मचक्र रखा हुआ है। फलक के नीचे मुंडको उपनिषद

0: का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की विजय होती है। राष्ट्रीय फूल हमारे यहाँ का कमल है। इसका प्राचीन भारत के इतिहास में विशेष स्थान है। ये संदेश देता है कि जिस तरह यह कीचड़ में खिलकर तैरता रहता है और कभी नहीं सूखता, वैसे ही इंसान को लगातार श्रम करते रहना चाहिए। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार धन की देवी लक्ष्मी का सिंहासन है, जो धन एवं समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रीय फलों के रूप में देखा जाए तो आम को मान्यता मिली हुई है। यहाँ पर इसकी 100 से अधिक प्रजातियाँ विद्यमान हैं। राष्ट्रीय नदी के रूप में गंगा नदी को सम्मानित किया गया है, क्योंकि देश के सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य इन्हीं के जनसंख्या इलाके में बसे हुए हैं। राष्ट्रीय वृक्ष, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। यह बहुत विशाल रूप में बड़ा होता है। इस वृक्ष की उम्र बहुत अधिक होती है, इसलिए इसे अमर पेड़ भी कहा जाता है। भारत में हिंदू इस वृक्ष की पूजा करते हैं। भारत में अब राष्ट्रीय धरोहर पशु के रूप में हाथी को भी मान्यता मिल चुकी है। 31 अगस्त 2010 को हाथियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए महेश रंगराजन की सिफारिशों को मान्यता मिल चुकी है, जिसमें हाथी बहुल राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के लिए हाथी परियोजना आरंभ की गई है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर उज्ज्वल रंग की एकता का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। इसे 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। यह देश की विभिन्नता को दर्शाता है, जो कि विभिन्नता में एकता का संदेश देता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्रिकेट की अत्यधिक लोकप्रियता के बावजूद हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। 1928 से 1956 के बीच भारत को 6 बार लगातार गोल्ड पदक मिला था। उस समय भारत ने ओलंपिक में 24 मैच खेले थे और सब में विजय प्राप्त की थी। इस समय भारत में हॉकी के खेल को बहुत पसंद किया जाता था, जिस वजह से राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था। भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। यह स्तनधारी जंतु पवित्र गंगा की शुद्धता को प्रकट करता है, क्योंकि यह मात्र शुद्ध एवं मीठे जल में ही रह सकता है। प्लेटिनिस्टा गंगोटिका नामक यह मछली लंबे नोकदार मुख वाली होती है और इसकी आँखें लेंस रहित होती हैं, इसलिए ये मात्र प्रकाश की दिशा का पता लगाने के साधन के रूप में कार्य करती हैं। डॉल्फिन की घ्राण शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। शक्तिशाली घ्राण शक्ति तथा प्रतिध्वनि निर्धारण की क्षमताओं से यह अपने शिकार का पता लगाती है। यह भारत की एक महत्वपूर्ण संकटापन्न प्रजाति है और इसलिए इसे वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया है। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान तथा आर्थिक सफलता को परिलक्षित कर रहा है। रुपये का यह नया प्रतीक देवनागरी लिपि के रा और रोमन लिपि के अक्षर आर को मिलाकर बना है, जिसमें एक क्षैतिज रेखा भी बनी हुई है। यह रेखा हमारे राष्ट्रीय ध्वज तथा बराबर के चिन्ह को प्रतिबिंबित करती है। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को स्वीकार कर लिया है। यह चिन्ह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइनर डी उदय कुमार ने बनाया है। इस चिन्ह को वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित एक खुली प्रतियोगिता में प्राप्त हजारों डिजाइनरों में से चुना गया। अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज से लेकर राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह तक सभी प्रतीक हमारी राष्ट्रीय पहचान को इंगित करते हैं।
1: भैया देखा ही तो रहा जानकारी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह का
2: जी
1: दिहल जैन के धन्यवाद। और भैया देखा जब राष्ट्रीय प्रतीक और सम्मान के बात आई है तो भैया पूरा देश जौन है आज महाराणा प्रताप के जयंती मनावता,
2: बिल्कुल मना रहा।
1: आज के ही दिन जौन है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से इनके जन्म 1540 ईस्वी में भइल रहल चित्तौड़गढ़ में। और भैया देश के स्वाभिमान खातिर, अपने जन्मभूमि खातिर, अपने क्षेत्र खातिर ये लड़त लड़त अपन जान दे दी है। इनके घोड़ा जौन रहल चेतक ओकर भी बड़ा कहानी बा, इनके भी बड़ी कहानी बा। कुल मिला के कहल जा तो भैया अपने देश के रक्षा खातिर ई कहल जाला कि घास के रोटी खैले लेकिन सिर नहीं झुकले और अधीनता के हुक स्वीकार नहीं कैले। और हल्दी घाटी के जौन युद्ध भइल रहल ओ युद्ध में भी केहू के पक्ष में निर्णय नहीं भइल, लेकिन अपन मातृभूमि, अपन जन्मस्थान, अपन राज्य क्षेत्र छोड़ले नहीं। या देखा है कुल जानकारी के साथ अपने लड़का लोगों से समय भी लिहले का आ गई बा और समय पूरा होत बा धीरे धीरे। लेकिन एक बात ये अपने लड़का लोगों से कहे बा कि भाई जब भी अपने स्वाभिमान के बात आवे, अपने देश के बात आवे और अपने समाज के रक्षा के बात आवे तो एहमे लड़का लोगन के आगे रहे के चाहिए और जे भी इनका अभिभावक बा उनके भी इनके बतावे के चाहिए कि भाई ऐसा लोग रहना है अपने देश में, उनके रास्ता पर चल के ही हमन के आपन विकास कर जा सकला और पूरे देश के ऐसे विकास हो सकला।
2: यही के साथ घड़ी के सुई कह रहा भाई सारा लड़का लोग लिखल जाए आपसे विदा।
1: लड़का लोगन जय हिंद।

बच्चों का कार्यक्रम बालवाड़ी अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे भोजपुरी और हिंदी में क्षेत्रीय समाचार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ है हम शिवानी अरोरा। पश्चिम बंगाल में पहला बेरी भाजपा का सरकार बनल हो। काली भाजपा विधायक दल का नेता चुनल गैले के बाद शुभेंदु अधिकारी आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पद का शपथ ले ले। उसके बाद पांच को मंत्रियों शपथ ग्रहण कैले। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही देश का कई गो मुख्यमंत्री शामिल भैले। शपथ ग्रहण समारोह से पहले प्रधानमंत्री ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचे बदे एको रोडो शो कैले। प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजो पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भैले। वहां के पश्चिम बंगाल में नया मुख्यमंत्री औरियो मंत्री लोगन के बधाई दिले। श्री योगी एगो सोशल मीडिया पोस्ट में लिखने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में अब सोनार बंगला का संकल्प सिद्ध हुई। प्रदेश भर में आजो राष्ट्रीय लोक अदालती का आयोजन जिला न्यायालय कलेक्ट्रेट परिसर आसज्जो तहसीलनी में कैल गईल। यह आयोजन के जरिए ढेरी संख्या में लंबित वादन का निस्तारण कैले में सफलता मिलल। एको रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर आज प्रदेश भर में आयोजित लोक अदालत ने यह स्पष्ट किया कि आपसी सहमति और सुलभ के माध्यम से न्याय की प्रक्रिया तेज हो सकती है। लोक अदालत में आपसी सहमति से जहां बड़ी संख्या में पारिवारिक और वैवाहिक विवादों का निस्तारण हुआ, तो वहीं मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक ऋण रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों में भी लोगों को काफी राहत मिली। समाचार कक्ष से रितेश।
0: प्रदेश का होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति आजू कौशाम्बी में करीब 2,85,00,000 रुपया का लागत से बनने वाला जिला कमांडेंट होमगार्ड्स के कार्यालय भवन का शिलान्यास कैले। यह मौके पर वहां के कहले की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगुवाई वाली सरकार होमगार्ड जवानन के हित में भत्ता बढ़ावले का ऐतिहासिक फैसला के साथ ही कई को महत्वपूर्ण कदम उठावले हो। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा और पावर कारपोरेशन का अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल भीषण गर्मी में प्रदेशवासियों के तय शेड्यूल के हिसाब से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कैले का निर्देश दिले हवे। काली विभागीय समीक्षा में वहां के अधिकारियों अभियंता लोगन के चेतावनी देत कहले की ऐसा व्यवस्था बनावे जैसे गर्मी में ट्रांसफार्मर खराब न होके।

0: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के ओरी से प्रवक्ता संवर्ग का 18 विषयन का कुली 624 पदन वदे लिखित परीक्षा आज से शुरू भेल। राज्य के 17 जिलन का 329 केंद्रन पर परीक्षा वदे कुली 4,64,605 अभ्यर्थी पंजीकृत हवे। पहला दिन ने दुई पाली में भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास, शिक्षा शास्त्र, अंग्रेजी, कृषि, वाणिज्य और समाज शास्त्र विषय के प्रवक्ता पद खातिर परीक्षा पूरा भेल। नागरिक शास्त्र, गणित, हिंदी आ ऑडियो विषयन खातिर परीक्षा बिहनहु दुई पाली में आयोजित कई जाई। आयोग की ओर से सज्जो परीक्षा केंद्रन पर शुचिता आ पारदर्शिता पदीपुरहर इंतजाम कैल गेल रहे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आधिकारिक रूप से काली से शुभारंभ हो गई हो। ई पर्व मंदिर के पुनर्निर्माण का 75वां वर्षगांठ का प्रतीक हो। 5 दिन के ई उत्सव मंदिर परिसर के वैदिक मंत्रण आ दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदली दिले हो। एको रिपोर्ट।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार।
0: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आ अटल पेंशन योजना 11 बरिस पूरा कई ले लहो। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 27 करोड़ से बेसी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुकल बा। जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 21,500 करोड़ रुपया, पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत करीब 3,660 करोड़ रुपए का दावा का निपटारा कैल गेल बा। समाचार पूरा भेल, नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कल भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके बाद 5 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्री शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह से पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने के लिए एक रोड शो भी किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को बधाई दी। श्री योगी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में अब सुनार बांग्ला का संकल्प सिद्ध होगा। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालयों, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया गया। इस आयोजन के जरिए बड़ी संख्या में लंबित वादों का निस्तारण करने में सफलता मिली। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर आज प्रदेश भर में आयोजित लोक अदालत ने यह स्पष्ट किया कि आपसी सहमति और सुलभ के माध्यम से न्याय की प्रक्रिया तेज हो सकती है। लोक अदालत में आपसी सहमति से जहां बड़ी संख्या में पारिवारिक और वैवाहिक विवादों का निस्तारण हुआ, तो वहीं मोटर दुर्घटना प्रतिकरवाद, उपभोक्ता मामले, बैंक ऋण रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों में भी लोगों को काफी मिली। समाचार कक्ष से रितेश।
0: प्रदेश के होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आज कौशाम्बी में करीब 2,85,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली जिला कमांडेंट होमगार्ड्स के कार्यालय भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने होमगार्ड्स जवानों के हित में भत्ता वृद्धि के ऐतिहासिक निर्णय सहित कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा और पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ आशीष कुमार गोयल ने भीषण गर्मी में प्रदेशवासियों को तय शेड्यूल के अनुसार बिजली

0: आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कल विभागीय समीक्षा में उन्होंने अधिकारियों और अभियंताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे गर्मी में ट्रांसफार्मर खराब न हो। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा आज से शुरू हुई। राज्य के 17 जनपदों के 319 केंद्रों पर परीक्षा के लिए कुल 4,64,605 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। पहले दिन दो पालियों में भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास, शिक्षा शास्त्र, अंग्रेजी, कृषि, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के प्रवक्ता पदों के लिए परीक्षा संपन्न हुई। नागरिक शास्त्र, गणित, हिंदी और अन्य विषयों के लिए परीक्षा कल भी दो पालियों में आयोजित की जाएगी। आयोग की तरफ से सभी परीक्षा केंद्रों पर स्वच्छता और पारदर्शिता के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। यह पर्व मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया। एक रिपोर्ट।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार।
0: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपये और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपये के दावों का निपटारा किया गया है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।

मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र इस समय आपकी सेवा में है। थोड़ी देर में किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती बारी।

0: बंधु नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुड्ढू।
2: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: पंचों जय जवान जय किसान। भैया देखा यही नारा के साथ अपने किसान भाई लोगों के बैठकी शुरू हो गई। किसान भाई लोग इस समय कुछ खाली भइल बाटे खेती के काम से।
2: बिल्कुल
1: भैया, एलिए कि वो अपन अनाज भंडारण कर लिहले बाटे और एकरे साथे साथे अब आगे का करेगा बा एकर भी लोग योजना बनावत अटे। भैया मौसम भी कुछ ठंडा हो गई रहा है, ऐसे गर्मी के इतना एहसास नहीं भइले, लेकिन भैया जब गर्मी पड़ी तो फिर धीरे धीरे जौन है आगे एक योजना बनावे पड़ी कि हमें हम का करें। कुछ लोग योजना बनौले रहना है कि भाई हमन के हरी खाद के बुआई के दिहल जा, फसल ले लिहल जा, ताकि खेत के जौन है अच्छा पोषण मिले। और जब ही हरी खाद के रूप में खेत के मिली तो खेत के जौन भी मिट्टी बा ओकर संरचना में सुधार हुई और जल धारण क्षमता भी बढ़ी।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बहुत सारा लोग भैया पशुपालन भी कैले बाने और पशु का ध्यान रखले के बहुत जरूरत भी हमेशा रहेले।
2: बिल्कुल,
1: और हरदम एकर जरूरत महसूस कर रहे हैं लोग। लेकिन इस समय चलत भैया पशु के टीकाकरण के,
2: बिल्कुल
1: अगर समय से टीकाकरण करा ली हैं बरसात के पहले तो उनके पशु जौन है खुरपका भैल, मुँहपका भैल या तरह का और भी जौन बीमारी बाड़ी
2: उसे,
1: हाँ गला घोटू भैल, वो बीमारी से पशु उनके बचाव हो जाए।
2: बिल्कुल प्रभावशाली बचाव हो जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, यही लिए कहा जाला भैया कि समय से टीकाकरण जरूर करावे, ताकि आगे आवे वाली कोनो भी समस्या उनके बहुत ज्यादा परेशान न करे।
2: बिल्कुल,
1: तो समय से टीकाकरण करा लें, यह कुलिया दिया वाले अपने किसान भाई लोगों के। और जे भी किसान भाई सूरन के खेती कहल जाता है, जिमीकंद भी एक कहल जाला, वो कैसे करें जानकारी लिया जाए एक ठो वार्ता के माध्यम से। डॉक्टर एस पी सिंह ये जानकारी देते हैं, अपने किसान भाई लोग ये जानकारी लें कि सूरन के या जिमीकंद के खेती कैसे कही जाए।
3: जैसा कि आप जानते हैं, जिमीकंद एक सब्जी है जिसको हम सूरन या ओल के नाम से भी जानते हैं। बहुत से किसान भाई हमारे इसके सब्जी की खेती करते हैं। इसको आप देखें कि हम इसका जो प्रयोग किया जाता है सब्जी के रूप में तो करते ही हैं, इसके साथ साथ अचार और चोखा बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके साथ साथ इसके औषधीय गुणों में आप देखें तो जैसे आपके खुजली है, बवासीर है, आपके बात रोगों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, काफी लाभप्रद होता है। इसकी खेती अगर किसान भाई आपको करनी है तो इसके लिए विशेष सावधानी आपको रखनी होगी। जिन खेतों में आपको इसकी खेती करनी है उसमें देखें कि जहाँ अच्छे जल निकास की व्यवस्था हो उन खेतों को ही चुने। जहाँ तक मिट्टी की बात है तो उसके देखें बलुई दोमट भूमि सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो आपका जिमीकंद है ये आपके जमीन के अंदर इसकी उत्पादन होता है, तो इसमें जब आपकी बलुई दोमट भूमि रहेगी तो इसका उत्पादन आपको अच्छा मिलेगा। जहां आपकी बहुत भारी मिट्टी है या चिकनी मिट्टी है ऐसी भूमियों में इसकी खेती ना करें। तो इसके सबसे आपको यही रहेगा कि सबसे पहले आप इसका अच्छी जल निकास वाली और बलुई दोमट भूमि का चुनाव करें। जिन किसान भाइयों के पास अगर बगीचे हैं, पुराने आम के पौधे हैं या लीची के बाग हैं, उनके नीचे हम देखते हैं अक्सर जमीन हमारी खाली पड़ी रहती है, ऐसे जगहों पर भी आप जो छायेदार स्थान है उसमें भी हम जिमीकंद की खेती बड़े आराम से कर सकते हैं, बहुत अच्छा उत्पादन आपको आसानी से मिल सकता है। जहाँ तक हम प्रजाति की बात करें, देखें जो आपके सूरन की जो प्रजाति है, देसी में आपकी कई प्रजातियाँ लोकल मार्केट में मिल जाती हैं, लेकिन आप अच्छी अगर खेती करना चाहते हैं तो एक प्रजाति है गजेंद्र सूरन एक। ये प्रजाति की पहचान आप ऐसे कर सकते हैं कि इसका जो आपका गूदा होता है वो हल्के गुलाबी कलर का होता है, और इसकी खास बात यह है कि जब इसको हम सब्जी बनाते हैं इसके सूरन के, तो इसका खाने में गला नहीं काटता है। अक्सर आप जो किसान भाई देखते होंगे जो आप देसी सूरन की खेती करते हैं उसको जब खाते हैं तो उस गले में जलन होती है खाने के बाद, तो ये समस्या हमारे जो गजेंद्र सूरन वन जो प्रजाति है इसके साथ ये समस्या नहीं होती है। तो जब भी आप सूरन की खेती करने का विचार बनाते हैं तो इस प्रजाति का चयन करें। इसके बाद देखते हैं जो प्रजाति आप चयन करते हैं, इसका बहुत अच्छा समय हमारा जो रहता है बुआई का वो अप्रैल और मई का महीना होता है, और ज्यादा अगर लेट करते हैं तो जून तक आप इसकी बुआई यानी बरसात शुरू होने से पहले तक इसकी अगर बुआई कर लेते हैं तो मध्य जून तक भी इसकी बुआई हम आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार देखें जब आपने समय इसके जब बुआई करना है तो खेत की तैयारी जब भी आप करें तो अच्छे से उसके खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से और आपका कल्टीवेटर

0: उसकी जुताई करके उसको मिट्टी को अभुरा बना लें, और उसके बाद देखें कि उसमें जो आपकी सड़ी गोबर की खाद है, अगर मान लीजिए एक एकड़ खेत में आप इसकी सुरन की खेती करते हैं तो करीब आपको 100 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद की आवश्यकता होगी। इसको आप बुवाई से करीब 15 दिन पहले ही खेत में अच्छी प्रकार से उसको मिला दिया जाए, और उसके बाद आप देखें जो हमारे उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है वो 40 किलोग्राम नत्रजन, 30 किलोग्राम फॉस्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास, ये प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी आवश्यकता होती है। जब हम बुवाई इसकी करते हैं तो केवल हमको सड़ी गोबर की खाद जो आप बुवाई से पहले मिला देते हैं, उसके बाद जो हमारी नाइट्रोजन की मात्रा है उसकी एक तिहाई मात्रा लेंगे, और फॉस्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा लेकर के जब हम अंतिम जुताई करते हैं उसी समय इसको खेत में मिला देते हैं, और जो हमारी बाकी जो आपकी मात्रा दो भाग जो नत्रजन के बचे रहते हैं इसको हम बुवाई के 60 दिन बाद और दूसरी मात्रा जो आप देंगे वो आपके 90 दिन के बाद, तो इस तरह से हम नत्रजन की मात्रा को 3 भागों में बांट करके देते हैं। इससे आप देखेंगे जब भी आप इसके बीज का जब आपने चुनाव जब आपको करना है तो बहुत बड़े कंद आपको बुवाई के लिए नहीं लेने हैं, क्योंकि आप देखें अगर बहुत अच्छा रहे कि अगर आपको लगभग आधा किलो का 500 ग्राम का अगर कंद आपको मिल जाता है सुरन का तो बुवाई के लिए सबसे उपयुक्त होता है। उससे आप देखेंगे कि आपको काट करके नहीं बुना पड़ेगा, उसको खड़ा ही आप बुवाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको अगर बड़ा कंद का सुरन मिलता है, कभी देखते हैं कि 4 किलो या 5 किलो तक का सुरन आपको मिलता है या 2 किलो का सुरन आपको पूरा खड़ा मिल रहा है, तो उसको आप पूरा का पूरा उसको नहीं बोना है, उसको काट करके उसको टुकड़े में बांट सकते हैं। जब ध्यान ये रखें जब भी उसको काटा जाए तो उसमें जो एक आंख होती है, आप देखते होंगे ऊपर की साइड में जो आंख होती है, उस जो भी आप टुकड़े उसके काटते हैं तो उसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो उसका वजन आपका आधा किलो के आसपास हो, और उसके साथ साथ जब वजन जो आपका काट टुकड़ा काटा है उसमें आंख का भाग उसमें अवश्य जाना चाहिए, यानी हर टुकड़े में आपकी आंख आनी चाहिए, क्योंकि जब उसका जमाव होता है तो उसी आंख से ही होता है। जैसे आप आलू में देखते होंगे, आलू की जब बुवाई करते हैं तो उसमें ये निश्चित किया जाता है कि उसमें आंख रहती है तभी उसकी बुवाई करते हैं, सेम तरीका आपका इसी जिमीकंद में या सुरन में भी यही होता है कि उसकी आंख हर टुकड़े में होना आवश्यक। तो इस तरह से आपका बीज तैयार हो जाएगा बुवाई के लिए। ध्यान ये रखें जब भी आप इसकी बुवाई करेंगे, बुवाई करने से पहले इसका बीज शोधन अवश्य कर लें। बीज शोधन के लिए आप इसमें एक कार्बंडाजिम दवा आती है जिसको आप बावस्टीन के नाम से जानते हैं, तो इसको ले सकते हैं। इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका घोल बना लें, या दूसरी दवा आप बोरेक्स ले सकते हैं, इसको भी आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर, और इसको आप इसमें जब किसी बड़े बर्तन में ड्रम में आप घोल बना करके इसको आप 5 मिनट के लिए इस कंद को जो आपने काट करके तैयार किया हुआ है इसको आप बीज शोधन कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप फर्श पर फैला करके और ऊपर से इस दवा का छिड़काव कर सकते हैं, चाहे आप कार्बंडाजिम लेते हैं या आप जो आपका बोरेक्स है इसको लेते हैं। तो इससे आप देखेंगे जब आपका बीज शोधन हो जाता है उसके बाद इसको छाया में फैला कर उस दवा को सूख जाए, पानी उसका सूख जाए, तभी उसकी बुवाई करनी है। बुवाई करने के लिए आप एक चीज और ध्यान रखें, जब भी आपका खेत मान लीजिए तैयार है उसमें जब उसकी दूरी रखेंगे तो कोशिश करें कि जैसे आपका 1 मीटर लाइन से लाइन और 1 मीटर पौधे से पौधे की दूरी पर अगर आप गड्ढे अगर वहां पे तैयार कर लेते हैं, लगभग 1 से 1.5 घन फीट का गड्ढा तैयार करके, और उसमें अच्छे से अगर मान लीजिए सड़ी गोबर की खाद आपने पहले से नहीं मिलाई है तो उस समय भी आप उसको मिला सकते हैं, अगर आपने पहले से मिला रखी है तो उसमें अलग से खाद मिलाने की आवश्यकता नहीं है, तो उसमें गड्ढे में कर सकते हैं, नहीं तो आप बिना गड्ढे के अगर बुवाई करते हैं तो उसके बाद आपको जब जमाव हो जाता है तो उसके बाद हम मिट्टी चढ़ा देते हैं उसके ऊपर, तो देखेंगे उससे आपका जमाव अच्छा होगा। ध्यान ये रखें जब भी आप उसकी बुवाई करते हैं तो खेत आपका एकदम सूखा नहीं हो, हल्की सी नमी मिट्टी में अवश्य होनी चाहिए, तो इससे क्या होगा जमाव आपका अच्छा होगा। और उसके साथ साथ ये ध्यान रखना है कि जब आपने बुवाई कर दिया है तो उसके लगभग 7 से 8 दिन के बाद एक हल्की सी सिंचाई बहुत आवश्यक है, तो इससे आपके देखेंगे सभी कंदों का जो जमाव होगा उसमें सब में आपका फुटान अच्छा हो जाएगा और पौधों का विकास अच्छा होने लगेगा। इसके साथ साथ समय अनुसार आप देखें जैसा मौसम है उसी अनुसार हम 10 से 15 दिन या 7 दिन के अंतर पर जैसा मौसम रहता है उसी अनुसार उसकी सिंचाई हम बराबर करते रहते हैं। ध्यान ये रखेंगे बहुत ज्यादा पानी नहीं खेत में भरना है, हल्की सिंचाई करनी है। अगर मान लीजिए आप लाइन से उसको जब लगाए हैं तो कोशिश करें जैसे ही उसका अंकुर हो जाता है तो उसके बाद उसकी थोड़ा सा ऊंचा करके मेड़ बना करके अगर नाली बना करके नाली विधि से अगर सिंचाई करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। पानी हल्का ही देना है, नहीं तो ज्यादा पानी पानी आप देंगे तो इसमें सड़न की समस्या हो जाती है। क्योंकि आप देखें ये लंबी अवधि की फसल है, जब आप बुआई अगर मान लीजिए अप्रैल मई में बुआई करते हैं तो लगभग नवंबर दिसंबर तक आपकी इसकी खुदाई होती है, लगभग 7 से 9 महीने तक, 8 महीने इसमें लग जाते हैं तैयार होने में। तो आप देखें जैसे ही आपका नवंबर दिसंबर का महीना जब उधर होता है दीपावली के आसपास इसकी बहुत मांग बढ़ जाती है, तो उस समय आप देखें जैसे ही पत्तियां इसकी मुरझा कर सूखने लगे उसी समय इसकी खुदाई की जाती है। तो उस समय आप इसको खुदाई करके और उसके बाद बाजार में ले जा करके अच्छा इसकी मांग बढ़ जाती है और दाम भी अच्छा मिल जाता है, तो इस समय इसकी बुआई करके अच्छा सा पैसा कमा सकते हैं सूरन की खेती से।
1: मैं देखा उतरा बद कही जिमीकंद के खेती विषय पर जानकारी देते रहने डॉक्टर एस पी सिंह दियल जाए, इनके धन्यवाद। और किसान भाई लोगों के सुनवा दियल जाए एक ठो लोग गीत सुना होता है जगदीश त्रिपाठी।

0: किसान भाई जगदीश त्रिपाठी के स्वर में ई लोकगीत सुनल। भैया देखा शुरू में यमन के पशुअन के चर्चा कैले रही है, कुछ ऐसा बीमारी होले जोने से पशु का अंग सड़े लगाला और घाव हो जाला, जल्दी ठीक नहीं होला।
1: बिल्कुल,
0: एक अंग्रेजी में गैंग्रीन कहल जाला। ई बीमारी का है और कैसे होले, कैसे ठीक होले, ए पर जानकारी देते हैं डॉक्टर गिरीश चंद्र द्विवेदी और इनसे बतियावत हैं भैया वेद प्रकाश श्रीवास्तव। अपने किसान भाई लोग जानकारी लें पशुओं में गैंग्रीन की बीमारी विषय पर।
2: पंच भाई हम मन के अपने बैठकी में समय समय पर अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ लोगन के बुलावल जाला, आमंत्रित कई जाला, ताकि आप तक अलग अलग विषयों से संबंधित जानकारी पहुंचावल जा सके। यही क्रम में आज अपने बीच में डॉक्टर गिरीश चंद्र द्विवेदी जी आये हैं। आप अवकाश प्राप्त अपर निदेशक पशुपालन बस्ती मंडल और आजमगढ़ मंडल में रहनी। आपके अनुभव आज के बैठकी में हम मन के काम आई और किसान भाई और पंच भाई या जो डेयरी उद्योग कैले बा, पशुपालन कैले बा, उनके आपके एक अनुभव लंबा अनुभव के वो फायदा और लाभ पाई है। आज हम मन के अपने बातचीत के विषय रखल बा पशुओं में गैंग्रीन की बीमारी। परंपरा के अनुरूप आपके सबसे पहले अपने बैठकी में स्वागत बा। आई बातचीत के सिलसिला शुरू कर जा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानल चाहम कि पशुओं में होए वाली गैंग्रीन के बीमारी का हवे।
3: देखिए पंचों को राम राम।
2: जी जी,
3: आज का जो ये विषय हमको दिया गया है जिसमें गैंग्रीन बीमारी के बारे में जानकारी देनी है।
2: जी जी,
3: सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे अपने किसान भाइयों के लिए कि गैंग्रीन होती क्या है।
2: जी हाँ, क्या है मतलब?
3: सभी हमारे किसान भाई पशुपालक ये ध्यान रखें
2: जी, जी।
3: कि शरीर के अंदर जो भी गतिविधियां चल रही हैं
2: जी,
3: सबकी गतिविधियों का जो मूल मंत्र है वो खून की सप्लाई से जुड़ा हुआ है
2: जी।
3: शरीर के सभी अंगों में अगर खून प्रॉपरली पहुंच रहा है तो ये समझ लें कि वो अंग जो है स्वस्थ होकर के कार्य करें
2: जी जी।
3: किसी कारण से किसी भी अंग में
2: जी
3: अगर खून की सप्लाई बाधित हो गई, वहां खून नहीं पहुंच रहा है, जिसके कमी के कारण ऑक्सीजन की मात्रा वहां पे कम हो रही है
2: जी,
3: तो उस अंग में कुछ समय के बाद सड़न शुरू होने लगती
2: जी जी।
3: और यह सड़न जो है अंत में जाकर के गैंग्रीन का रूप ले लेती है और वह अंग काट के निकालना पड़ जाता है।
2: स्थिति इतना खराब हो जाले जी,
3: जी।
2: तो अगर जे पशुपालन कैले बा या घरों में मान लिये बड़े पैमाना अपनाई कैले बा, जेकर जैसन मतलब आर्थिक स्थिति बा, कई लोग बड़े पैमाना पर करेलन, कई लोग जैसे एक दो गाय गोरु भैंस रखले हमें, तो अगर इनमें सबसे पहले तो उनके लक्षण बताओ जरूरी बा कि वो लक्षण कैसे पहुंचाओ, इनमें विलंब हो जाला लोगन से पशुपालन भाई लोग।
3: देखिए किसान भाइयों को हम ये जरूर बताना चाहेंगे
2: जी जी
3: कि जो गांव में मुख्य रूप से पशुओं में बीमारी गैंग्रीन की मिलती है
2: जी,
3: वो शरीर के दो अंगों में बहुत ज्यादा कॉमन है
2: जी।
3: अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि पशु की जो पूंछ है
2: हाँ,
3: वो सूखने लगती है या सड़ने लगती है, एक अवस्था में जाकर के वो कट के गिर जाती है। कान के जो ऊपरी हिस्से हैं, टिप्स ऑफ ईयर जिन्हें कहते हैं
2: जी, जी।
3: उनके अंदर भी ये सूखने की बीमारी शुरू हो जाती है। इसको टेल गैंग्रीन और ईयर टिप गैंग्रीन कहते हैं। ये मुख्य रूप से डेगनाला नाम की एक बीमारी होती है
2: जी, जी।
3: उसके अंतर्गत होती है।
2: मतलब सबसे पहले पूंछ और आप बतानी कान के आसपास सड़न पहले शुरू हो जाती
3: है, इसको टेल गैंग्रीन कहते हैं
2: जी जी।
3: दूसरी जो गैंग्रीन का लक्षण मिलता है वो थनैला बीमारी के समय
2: जी जी,
3: कुछ प्रकार के जो थनैला होते हैं गाय भैंसों में जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो जो थनैला करता है
2: जी जी,
3: उसमें भी ये गैंग्रीन दिखाई पड़ती है और उसमें थन सड़ने लगता है।
2: जैसे आम बोलचाल के भाषा में लोग कहलन कि थनैला की बीमारी हो गई है,
3: थनैला तो
2: नुकसान हो गए।
3: थनैला तो एक बड़ी ब्रॉड टर्म है
2: जी जी,
3: लेकिन उसका एक पार्ट
2: जी
3: वो गैंग्रीनस मैस्टाइटिस कहलाता है, जिसमें थन सड़ जाता है और थन को काट के निकालना पड़ जाता
2: जी
3: है
2: जी।
3: तो ये दो चीजें जो है पशुओं में बहुत कॉमन होती हैं
2: जी जी,
3: गैंग्रीन से संबंधित।
2: हाँ हाँ, तो अगर एक लक्षण शुरू में ही लोगों के मालूम होके तो पशु चिकित्सालय जगह जगह बा, वहां पहुंच के योग्य पशु चिकित्सक के दिखा के पशुओं के इलाज कर लेलन। कहे से अगर इनमें समय अगर बिता देलन लोग तो आपके अनुसार पशु नुकसान भी हो जाने, खत्म भी हो जाने
3: जी। बिल्कुल, एक नुकसान खराब ही हो जाते हैं
2: जी,
3: पशु
2: जी, जी।
3: देखें जैसे अभी हमने डेगनाला बीमारी बताया
2: हाँ।
3: जिसमें पूंछ और कान प्रभावित होता है
2: जी।
3: इस बीमारी का जो कारण है
2: जी,
3: आप देखे होंगे कि ये तराई बेल्ट में जो धान की खेती करते
2: हाँ,
3: हैं
2: हाँ, जी।
3: धान की ऐसी खेती जिसके खेत में पानी बहुत ज्यादा लगता है
2: जी।
3: तो वह जो धान का पौधा है उसके ऊपर एक फंगस
2: जी
3: उत्पन्न होता
2: हाँ,
3: है
2: हाँ।
3: और जब उस पुआल को काट करके जानवर को खिलाया जाता है
2: जी, जी।
3: तो उस फंगस की वजह से ये डेगनाला बीमारी शुरू होती है और जानवर की पूंछ और कान सूखने लगती है।
1: तो ये बात के मतलब बड़ा ध्यान दो, जिनका खेत गहराई में रहला पानी ज्यादा लगेला अगर उसे आप बताने कि ओकर पुआल जानवरन के लोग खिया देला
3: जी
1: तो इससे संभावना अधिक बा कि बीमारी
3: पनप सकती है।
1: एक डॉक्टर साहब उपचार कैसे आरंभ के रूप में ही करें ताकि बीमारी रुक जाए जहां तक
3: जी
1: और पूरी तरह ठीक।
3: बिल्कुल बहुत अच्छा आपका प्रश्न है
2: जी।
3: कि देखिए हम प्रयास करें कि ऐसे क्षेत्र का पुआल
2: जी
3: जो धान की डंठल
2: हाँ,
3: है
2: हाँ,
3: जहां पे पानी लगातार लगती
2: हाँ,
3: है
2: हाँ,
3: अगर उसको न खिलाएं तो अच्छा है
1: हाँ। तेकर निगरानी तो पशुपालक के देखनी पड़ी यही गाय गुरु के बिजनेस कहले बा या अपने निजी उपयोग खातिर भी रख ले दूध दही घी मक्खन खातिर उनके ही चाहे कि अगर उनकर धान के खेत मतलब गढ़ा में बा पानी ज्यादा तो परहेज करें एक तरह से संदेश एक सुझाव
3: है। और अगर बहुत आवश्यक है कि नहीं और दूसरा कुछ खिलाने लिए है नहीं
1: उनका मजबूरी मान ली
3: मजबूरी है
1: जी, हाँ।
3: तो उस कंडीशन में उस पुआल का ट्रीटमेंट उपचार कर देना चाहिए
2: जी, जी।
3: जो पुआल कुट्टी काटी जाती
2: हाँ,
3: है
2: हाँ, हाँ।
3: उसका उपचार यूरिया से कर दिया जाए
2: अच्छा जी।
3: तो ये फंगस कुछ हद तक डाइल्यूट हो जाता है और अच्छा। बीमारी नहीं कर पाता है।
1: तो एक उपचार मतलब कैसे कह सके अपने से कह सके कि केहू के सलाह जानकार लोगों से
3: यूरिया का उपचार जो है 2% यूरिया का घोल पहले पुआल की कुट्टी काट लिया जाए
2: जी, जी।
3: उसके बाद जो है उस पे 2% यूरिया का घोल बना करके और छिड़काव किया जाए
2: हाँ।
3: और ऐसे पुआल की कुट्टी को
2: हाँ।
3: हम कंप्रेस दबा करके रख देते हैं और अगर 21 दिन तक उसको रख दिया तो उसके ऊपर जो फंगस है लिग्निन की लेयर है वो गल जाती है खत्म हो जाती है और वो नुकसान नहीं कर पाता है
2: जी, जी, जी।
3: दूसरा जो गैंग्रीन की बात आई जो थनैला के बीमारी में होता
2: जी,
3: है
2: जी, जी।
3: तो थनैला की बीमारी जब कभी हो तो हम किसान भाइयों को यही राय देंगे कि उसमें विलंब न करें
2: जी।
3: तुरंत योग्य पशु चिकित्सक से मिले
2: हाँ, हाँ, हाँ।
3: और उसका उपचार कराएं क्योंकि अगर गैंग्रीन उत्पन्न हो गया
2: जी, जी।
3: तब फिर इसका कोई निदान है ही
2: हाँ,
3: नहीं
2: हाँ।
3: और फिर थन को काट के निकालना पड़ेगा तो तुरंत डॉक्टर के सलाह ले
1: मतलब इसमें देर ना करें
3: देर नहीं
1: देर
3: करना
1: ना
3: चाहिए।
1: अच्छा डॉक्टर साहब कई बार ऐसा होला कि जो ने गैंग्रीन चाहे थनैलक बीमारी बा कई गांव में ऐसा भी देखल गेल बा कई जानकारी भी बढ़ल प्रचार प्रसार होते बा कि लेकिन ओकरे बावजूद भी घर में रखल इनाइल फिनाइल तरह के चीज से लोग इलाज कर शुरू कर देने कि तनी कोनो चीज से लगा देलन कि कीड़ा मकोड़ा जो लगल बा हट जाए ऐसे भी आप सलाह ये जरूर अपने मतलब बैठकी के माध्यम से बताएं कि घरेलू उपचार कभी ना करें हर जगह पशु चिकित्सालय मौजूद बा वहां जाके दिखावे जरूर
3: जी। आपको मैं बताऊंगा और किसान भाइयों को मुख्य रूप से मैं इस चीज को बताऊंगा कि थनैला एक ऐसी बीमारी है जो हो गई तो आपके पशु का कुछ न कुछ तो नुकसान करके ही जाएगी
2: जी।
3: थनैला के बारे में एक जो वैज्ञानिक हम लोगों का सलाह रहता है कि अगर एक बार किसी थन में थनैला हुआ तो उसका 30% दूध कम हो जाएगा। अगर उसी थन में दोबारा हो गया
2: हाँ हाँ।
3: तो अगली बार 60% दूध कम हो जाएगा और अगर उसी थन में तिबारा हो गया
2: हाँ हाँ।
3: तो 90% दूध खत्म हो जाएगा। अब आप ऐसी गाय या भैंस को रख के क्या करें?

0: करेंगे जिसमें दूध ही नहीं देगा।
1: हाँ, जो इससे तो, लाभ कमाए के सोचे लन जो बताओ तो एक से दो बार में लगभग तिगुना नुकसान
0: होने हो जाएगा। तो हाँ। किसान भाइयों को सबसे पहला हम राय देंगे
1: जी, जी।
0: कि अगर थनैला की बीमारी हो रही है जिसमें थन में सूजन आ रही है या दूध में कुछ खराबी आ रही है, फटा हुआ दूध आ रहा है, पानी जैसा दूध आ रहा है,
1: लक्षण
0: ये लक्षण है उसके, तो तुरंत बिना विलंब किए हुए। अक्सर गांव में मैं देखता हूँ कि गांव में लोग कुछ उल्टा सीधा उपचार
1: के भी लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे चार आदमी बैठल सबकर सलाह आदि भेल कि भाई तनी रुक के कुछ अपने उपचार हो जाए तब लेके चल जाए, आज समय नहीं बा, काल समय नहीं बा, कल ही खलिहान दे तनी देखे के बा, खेत काटे जाएगा, बगीचा में छिड़काव करेगा, यही करते करते जो अपने घर के गाय गोरु हमें वो मतलब एक तरह से उनका जो मिले वाला फायदा वा लाभ बा वो
0: देखिए, जितना विलम्ब आप करेंगे
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: उतना ही नुकसान होगा
1: जी, जी, जी।
0: इसलिए अच्छा दूसरी चीज और मैं बताऊं कि गांव में अक्सर मैं देखता हूं कि गांव में सलाह देने वाले बहुत आ जाते
1: हैं जी, जी।
0: जिनको कोई जानकारी नहीं है वो ऐसी सलाह देंगे कि वो लगता है कि तुरंत ठीक हो जाए, लेकिन वो केस जो है ठीक होने के बजाय खराब हो जाता है।
2: हाँ पंच भाई सुनत रहना हाँ, हाँ, बातचीत पशुओं हाँ, में गैंग्रीन बीमारी डॉक्टर हाँ, गिरीश चंद द्विवेदी से
3: हाँ,
2: इतना अच्छा जानकारी खातिर डॉक्टर साहब को दिया जा बधाई
3: हाँ,
2: आ यही के साथ घड़ी को सुई कर रहा भाई सारा कि पंच भाई आप लोगों से लिया जा विदा। पंचो
3: जय जवान जय किसान।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बारी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। ग्राम पोस्ट मनियर, थाना मनियर, जनपद बलिया से शिव नारायण अपनी पत्नी मुन्नी देवी के लापता होने की सूचना दे रहे हैं। 26 मार्च 2026 से लापता मुन्नी देवी की उम्र 40 वर्ष है और कद 5 फीट है। मुन्नी देवी के बारे में किसी भी तरह की सूचना मिलने पर कृपया मोबाइल नंबर 9076767773 पर सूचित करें। मोबाइल नंबर एक बार फिर नोट करें 9076767773। ग्राम पोस्ट हड़िया कला, थाना रेवती, जनपद बलिया से श्रवण पासवान अपने पुत्र राहुल कुमार पासवान के लापता होने की सूचना दे रहे हैं। 29 मार्च 2026 से लापता राहुल कुमार पासवान की उम्र 28 वर्ष है और कद 6 फीट है। राहुल कुमार पासवान के बारे में किसी भी तरह की सूचना मिलने पर कृपया मोबाइल नंबर 7348628480 पर सूचित करें। मोबाइल नंबर एक बार फिर नोट करें 7348628480। ग्राम पकड़ी, थाना पकड़ी, जिला बलिया से संजय राजभर अपनी बेटी कविता राजभर के लापता होने की सूचना दे रहे हैं। 25 मार्च 2026 से लापता कविता राजभर की उम्र 17 वर्ष है, कद 5 फीट 2 इंच और रंग सांवला है। कविता राजभर के बारे में किसी भी तरह की जानकारी मिलने पर कृपया मोबाइल नंबर 9454403004 पर सूचित करें। मोबाइल नंबर एक बार फिर नोट करें 9454403004। ग्राम इमंडी पोस्ट छाता, थाना बांसडी रोड, जनपद बलिया से मुन्नीलाल राजभर अपनी बेटी प्रियंका के लापता होने की सूचना दे रहे हैं। 8 नवंबर 2025 से लापता प्रियंका की उम्र 14 वर्ष है और कद 5 फीट है। प्रियंका के बारे में किसी भी तरह की सूचना मिलने पर कृपया मोबाइल नंबर 6391873418 पर सूचित करें। मोबाइल नंबर एक बार फिर नोट करें 6391873418। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुईं। आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल ID है csumumbai@gmail.com।
0: आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। आज इसमें कलाकार हैं ब्रज किशोर त्रिपाठी। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस निर्गुण से।

0: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा,
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
0: कहाँ
3: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की।

0: और डायरेक्ट टू हार्ट,
1: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
0: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
1: दूरदर्शन डीटीएच सर्विस डीडी डायरेक्ट प्लस।
0: फॉर डिटेल्स लॉग ऑन टू www.ddindia.com।

0: ब्रिज किशोर त्रिपाठी के द्वारा गाए इस लोक भजन के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। भोजपुरी भाषा के कार्यक्रम देश हमार में लीजिए सुनिए ब्रह्मानंद शुक्ल से काव्य पाठ।
1: हे राम पाकल्याम, हे राम पाकल्याम, जिंदगी भइल बेकाम कब सरी, सांसत आफत थाकल देही, सांसत आफत थाकल देही, झूठ मूठ के ई नाता नहीं, अपने मना बात बात दबाई, का कहीं कुछ कही ना पाई, आगे पाछे केहू नाई, आगे पाछे केहू नाई, सबके चाही हमसे दाम, हे राम पाकल्याम, जिंदगी भइल वे काम, कब सरी कब गली कब टबकी एकर कौन ठिकान, के सुनवैया सब कहवैया, के सुनवैया सब कहवैया, तनिक तनिक पे हमें डटवैया, देही में जबले बा काबू, देही में जबले बा काबू, तबले सब बा आपन बाबू, थकले पे अब का केहू पूछी, सबे भइल बे गान, हे राम पाकल्याम, जिंदगी भइल बे काम, कब सड़ी कब गली कब टबकी एकर कौन ठेकान, का कहीं का कहीं कुछ समझ न आवे, का कहीं कुछ समझ न आवे, मुहवा से कछ कही ना पावे, का कहीं कुछ समझ न आवे, मुहवा से कछ कही ना पावे, टपा टप टप के सबके जुबान, टपा टप चप टप के सबके जुबान, सब डांटे मुअल ठेकान, कहते भर में बिगड़े बात, कहते भर में बिगड़े बात, कब निकसी हमरो परान, हे राम पाकल्याम, हे राम पाकल्याम, जिंदगी भइल बेकाम, कब सड़ी कब गली कब टपकी एकर कौन ठेकान, सब झपिलावे यस बात निकारे, सब झपिलावे यस बात निकारे, खटिया बहरे मोर निकारे, सब झपिलावे यस बात निकारे, खटिया बहरे मोर निकारे, मरा चाहे उफर परा तू, मरा चाहे उफर परा तू, जम के राय निहारा तू, ब्रह्मा का लिखलें, ब्रह्मा का लिखलें कब मिली, ब्रह्मा का लिखलें कब मिली, अंतिम ठेकान, हे राम पाकल्याम, जिंदगी भइल बेकाम, कब सड़ी कब गली कब टपकी एकर कौन ठेकान। अब दूसरका जोन बा एगो गीत सुनी, काम किच में बीतल जाला, काम किच में बीतल जाला, जिंदगी भइल बतासा, काम किच में बीतल जाला, जिंदगी भइल बतासा, आ केकरा से हम बाप का बतियाई, केकरा से हम का बतियाई, सब नंगा नाच तमाशा, काम किच में बीतल जाला, जिंदगी भइल बतासा, दुखवाया अपन सब गोहरावे, दुखवाया अपन सब गोहरावे, अब केहू ना सुनवैया, अब मतलब के सब संगी साथी, मतलब के सब संगी साथी, कहे के बाबू भैया, काउ करी हम जिंदगी बीतल, काउ करी हम जिंदगी बीतल, सुख जनली ना बारह मासा, काम किच में बीतल जाला, जिंदगी भइल बतासा, केकरा से हम का बतियाई, आ घूरे जैसन हमरी जिंदगी, घूरे जैसन हमरी जिंदगी, सब फेंके खरपतवारा, घूरे जैसन हमरी जिंदगी, सब फेंके खरपतवारा, जरगे मोर जवानी बचपन, जरगे मोर जवानी बचपन, अब कौनो ना पतवारा, सब झपिलावे यस बतियावे, सब झपिलावे यस बतियावे, बचत जाया हताशा। सब से पिलावे असबत आवे बचत जायत हताशा। अब बात बात आकाम किच में बीतल जाला जिनगी भइल बताशा। बात बात के उलट पलट में केहू ना बचवैया। बात बात के उलट पलट में केहू ना बचवैया। जिनगी में मोरे का बाटें जिनगी में मोरे का बाटें ब्रह्मा रेख खिचवैया। हे माई हे दादा हमरे हे माई हे दादा हमरे अब केहू के नाहीं आशा। अकाम किच में बीतल जाला जिनगी भइल बताशा। काम किच में बीतल जाला जिनगी भइल बताशा। आ केकरा से हमका बतियाई केकरा से हमका बतियाई सब नंगा नाच तमाशा। अब तीसर की कविता जौन बा ओके आप सुनी। जाते के पीसल जाते के पीसल पच जाला आ दाँते के पीसल नाहीं। जाते के पीसल पच जाला दाँते के पीसल नाहीं। आ किच काँव में जिनगी बीतल किच काँव में जिनगी बीतल बूझे केहू कुछ नाहीं। आ जाँते के पीसल पच जाला दाँते के पीसल नाहीं। मेहरी अभुआले लैका तड़पे मेरी अबुआले लैका तड़पे घरवा भरियस गरजे बरसे। आ जैसे हम नोहर मनई जैसे हम नौकर मनई आ कैसे कहीं राखी नाई अपने मन ही। अरे बाप रे काव करी अरे बाप रे काव करी घर छोड़ ले अब चाही। अब जाते के पीसल पच जाला दाँते के पीसल नाई। किच काँव में जिनगी बीतल बूझे केहू कुछ नहीं। अरे बाप रे काव करी अरे बाप रे काव करी कहाँ चल जाई जहर माहूर खाई बाकी कहे का पाई। देहिया के हालत केहू नाहीं बा बूझे देहिया के हालत केहू नाहीं बा बूझे। हे राम मौत और कुछ ना सूझे। आ जब सबके हम बिगड़ले बाटी करे सब मनमानी। आ जाँते के पीसल पच जाला दाँते के पीसल नाहीं। किच काँव में जिनगी बीतल बूझे केहू कुछ नहीं। राम

0: में बड़ा भारी कल्याण, राम नाम के भजन कैले में बड़ा भारी कल्याण। आ घर त्याग वनवासी बन ले, घर त्याग वनवासी बन ले, वह बासत काम बने चाहे बिगड़े। अब बने चाहे बिगड़े हमसे का मतलब बप्पा, आ रही चाहे उफर परी, रही चाहे उफर परी, मो सबके गोलगप्पा। हे मनवा छोड़ा माया, हे मनवा छोड़ा माया, आ काहें सब काहें असब जाना घरे मलाई। आ जाते के पीसल पच जाला, दाँते के पीसल नाहीं, किच गाँव में जिंदगी बीतल, बूझे केहू कुछ नाहीं।
1: भोजपुरी भाषा के कार्यक्रम देर समार में अभी आप सुन रहे थे ब्रह्मानंद शुक्ल से कविता पाठ। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए प्रादेशिक संगीत।

प्रादेशिक संगीत में अभी आप सुन रहे थे मालवीय निमाड़ी लोकगीत। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार हम अपने लखनऊ केंद्र के माध्यम से रिले करेंगे।

0: ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, खेल है एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता, संवर्ग की लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक संपन्न। कल आयोजित होगा परीक्षा का दूसरा चरण। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में आज किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निपटारा। और महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश के कई जिलों में किए गए विविध आयोजन। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद में किया 15 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश भर से आए करीब 1400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार खेल की भारत की प्राचीन विधाओं से प्रेरणा लेते हुए खेल के सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विकास हुआ है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बन गया है।
2: प्रधानमंत्री जी के इस विजन को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू करने में सफलता प्राप्त की। पिछले 11 वर्ष में हमने देश के अंदर एक नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को व्यापक रूप से प्रभावी क्रियान्वयन होते हुए देखा है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम बना हुआ है। खेलो इंडिया या फिट इंडिया मूवमेंट हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो, या फिर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताएं या विधायक लीग की प्रतियोगिताएं, ये सभी हमें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है।
1: भाजपा विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और राज्य में पार्टी की पहली सरकार का नेतृत्व किया। राज्यपाल आरएन रवि ने श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। श्री योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी और उनके उज्जवल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट के माध्यम से लिखा कि श्री अधिकारी के ऊर्जावान नेतृत्व में सोनार बांग्ला का संकल्प सिद्ध होगा और प्रदेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक उत्थान के अमृतकाल में प्रवेश करेगा। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को भी बधाई दी। प्रदेश में गुरुवार से डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इसी क्रम में मिर्जापुर में आज जनगणना 2027 के मद्देनजर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। एक कॉलेज के एनसीसी कैडेटों ने जागरूकता रैली निकालकर आम जनमानस को जनगणना की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्नाव में भी जागरूकता रैली और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं बिजनौर जिले में आज मीडिया के लोगों को स्व जनगणना करने के लिए प्रेरित किया गया। जनगणना के संबंध में जिला जनसंख्या अधिकारी वान्या सिंह ने बताया कि स्वगणना की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जा सकती है।
3: स्वर्णा कार्यक्रम है। ये 20 दिवसीय थीम बेस्ड कार्यक्रम है। जो आज का जो दिवस है वो युवा खेल और स्पोर्ट्स मीडिया डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें आज कलेक्ट्रेट बिजनौर में हमने जनपद बिजनौर के सभी मीडिया बंधुओं को यहाँ पर आमंत्रित किया और आप सभी के माध्यम से हमने एक सहयोग की अपेक्षा की है कि ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हो, आप लोग भी अपना स्वर्णा कराएं और आम पब्लिक को भी इसे करने के लिए मोटिवेट करें।
1: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हुई। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट रहा। बस्ती जिले में जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना और पुलिस अधीक्षक डॉ यशवीर सिंह ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। कल परीक्षा का 2रा चरण आयोजित होगा। पेश है एक रिपोर्ट।
4: परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में एक एक प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और निगरानी टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रही हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। 10 मई को प्रथम पाली में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत और मनोविज्ञान सहित 5 विषयों तथा द्वितीय पाली में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी और कला सहित 4 विषयों की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया गया। औरैया में लोक अदालत में 22,000 से अधिक वादों का निस्तारण किया गया। के जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि लोक अदालत में दिए गए फैसलों पर अपील नहीं होती है।
5: लोक अदालत में जो वाद निस्तारित किए जाते हैं उसमें कोई भी उसकी अपील नहीं होती और हमेशा के लिए वाद का निस्तारण हो जाता है और पक्षकारों के मध्य जो सौहार्द का माहौल बना रहता है। इसमें यह भी फायदा है इसका कि सिविल वादों में कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है।
1: सुल्तानपुर में आयोजित लोक अदालत में किसानों और ऋणदाताओं को भी राहत मिली। दिव्यांग किसान जयप्रकाश सिंह का 2.25 लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण मात्र 75,000 रुपए में निस्तारित हुआ।
6: हमारा केसीसी का लोन था किसान क्रेडिट कार्ड का, जो कि 2,25,000 रुपए अब तक हो गया था। उसे जज साहब ने 75,000 रुपए में सेटलमेंट किए हैं, जिसमें 25,000 रुपए अभी दिया जा रहा है। 50,000 रुपए के लिए हमको समय मिला है 2 महीने का, हम दे देंगे।
1: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज देवरिया में कृषि भवन के जीर्णोद्धार के उपरांत तैयार हुए भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने भवन के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि भवन का जीर्णोद्धार कराया गया है, इससे विभागीय कार्यों के संचालन में सुविधा मिलेगी। उन्होंने कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ किया जाए। साथ ही कृषि क्षेत्र में आधुनिक और नवाचारी तकनीकों को किसानों तक पहुंचाकर उन्हें अधिक से अधिक लाभान्वित किया जाए। प्रदेश के होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आज कौशाम्बी में महिला थाना के पास जिला कमांडेंट होमगार्ड्स भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने के लिए अनेक कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि नए भवन के निर्माण से विभागीय कार्यों में सुगमता आएगी तथा आमजन को बेहतर सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। प्रदेश के कई जिलों में आज महाराणा प्रताप की जयंती पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से महाराणा प्रताप को नमन किया। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फरुखाबाद रोडवेज बस स्टैंड पर महाराणा प्रताप की 15 फीट से ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित की गई। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल बस्ती में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और सभा को संबोधित किया। ITF जूनियर सर्किट की तीसरी वरीय भारत की कार्तिका पद्मकुमार ने आज ITF जूनियर J30 लखनऊ

टेनिस टूर्नामेंट में बालिका एकल की ट्रॉफी जीत ली है। वहीं एक दिन पूर्व युगल खिताब जीत चुके ऋभव सरोहा ने बेहतरीन लय बरकरार रखते हुए बालक एकल में भी विजेता होने का गौरव हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, खेल है एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा का पहला दिन आज शांतिपूर्वक सम्पन्न। कल आयोजित होगा परीक्षा का दूसरा चरण। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में आज किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निपटारा। और महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश के कई जिलों में किए गए विविध आयोजन। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद में किया 15 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: मीडियम वेव के मीटर पर इस समय आप आकाशवाणी गोरखपुर के कार्यक्रम सुन रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आज इसमें आप सुनेंगे संगीतकार अनु मल्लिक द्वारा संगीत से सजाए कुछ फिल्मों के गाने।

अब जो गीत आप सुन रहे हैं उसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और आवाज़ दी है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: स्वच्छता से ही मिलेगी खुशहाल और सुरक्षित जिंदगी।
4: स्वच्छता का संकल्प लाओ, गंदगी को दूर भगाओ,
3: कूड़ेदान में कूड़ा डालो, साफ सफाई का ध्येय अपनाओ।
4: हर गली हर मोहल्ला हो साफ, स्वच्छता से ही मिलेगी खुशियों की सौगात।
3: स्वच्छता का ये संकल्प लें, गंदगी को दूर भगाएं,
4: हर जगह स्वच्छता का दीप जलाएं, स्वस्थ और सुंदर जीवन को अपनाएं।
5: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
6: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
7: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
7: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
7: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
6: For details, log on to www.ddindia.com।
5: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
8: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं संगीतकार अनु मलिक द्वारा संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मों से लिए गए गाने।

जोश फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं, आवाज़ अभिजीत की है। गाने के बोल लिखे हैं समीर ने।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
2: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
2: चलो
1: कहाँ
2: एडमिशन कराने?

0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे संगीतकार अनु मलिक के संगीत से सजाए कुछ फिल्मों से लिए गए गीत। हम आकाशवाणी गोरखपुर से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम, इसमें लीजिए सुनिए भावेश मिश्रा से वार्ता। विषय है पूर्वांचल के विभिन्न उत्सव और त्यौहार।
1: श्रोताओं, आज हम अपने पूर्वांचल के कुछ खास पर्व की बात करेंगे जो यहाँ की संस्कृति और परंपरा को सजोए हुए हैं। किसी खास ऋतु से जुड़े ये त्योहार ना जाने अपने आप में कितने वैज्ञानिक तथ्य समेटे हुए हैं। जैसे गर्मी के शुरुआत में मनाया जाने वाला सतुवान पर्व हर साल ये संदेश लेकर आता है कि हमें अब स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना है, जिसमें चने और जौ के सत्तू को कच्चे आम और पुदीने की चटनी के साथ ग्रहण किया जाता है, जो कि पाचन क्रिया को पूरी तरह से सुदृढ़ बनाता है। और फिर गर्मी के शुरुआत से सत्तू का सेवन पूरी गर्मी तक किया जाता है। ये पर्व किसानों के लिए नई फसल के स्वागत और खुशी का प्रतीक है, क्योंकि भाई इस समय जौ और चने की नई फसल जो आ जाती है। एक महीने के खरबास के समाप्त होने के बाद मनाए जाने वाले मेष संक्रांति के इस पर्व पर पवित्र नदियों में स्नान और फिर दान करने की भी मान्यता है। और दान की बात की जाए तो इस दिन नया अनाज, फल, आम का टिकोरा, गुड़, पंखा और जल से भरा मिट्टी का पात्र दान करने की भी परंपरा है। साथ ही कई जगहों पर गाय और चींटियों को गुड़ और सत्तू भी खिलाया जाता है। और श्रोताओं, अब बात करते हैं प्रकृति को समर्पित पर्व छठ की, जो कि पूर्वांचल और बिहार का खास पर्व है। चार दिनों तक चलने वाला ये पर्व चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तक चलता है। षष्ठी के दिन डूबते सूरज और सप्तमी के दिन उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है, जो प्रतीक है जीवन में आए सभी प्रकार के दिन रात का, अंधेरे और उजालों का। यानी प्रकृति द्वारा ये संदेश देना कि चाहे जिंदगी में शाम हो या सवेरा, हमें उतनी ही उत्साह के साथ आगे बढ़ना है। इस पर्व में प्रकृति से जुड़े ना जाने कितने ऐसे फलों को शामिल किया जाता है जो शायद हमें साल भर में इसी पर्व में देखने और खाने को मिलते हैं। ये प्रकृति के महत्व को साझा करता है, जहां कूस, सुथनी, साठी के चावल जैसी चीजों को एकत्रित किया जाता है। सचमुच ये पर्व ना केवल परिवार को एकजुट करता है, बल्कि पूरे प्रकृति को एक सार कर देता है। श्रोताओं, अब बात करते हैं पूर्वांचल के पर्व फगुआ की, क्योंकि भाई फगुआ का रंग पूर्वांचल में शिवरात्रि से ही शुरू हो जाता है। गांव में फगुआ के दिन सभी के द्वार पर फगुआ होता है। अद्भुत बात यह है कि फगुआ मंडली सभी के द्वार पर फगुआ के रंग के साथ संगीत के रंग भी बरसाती है। ये पारंपरिक फगुआ गीत जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाए गए हो। गांव के पुरनिया लोग इसे गाते भी बिल्कुल सदे हुए गायक की तरह ही हैं। फिर शुरू होता है सिलसिला ठंडई का और बिखरता है घर में फगुआ गीत का रंग। श्रोताओं, अपने देश में लगभग हर रिश्ते से जुड़े रीति रिवाज और व्रत त्योहार हैं, जिसके जरिए सभी रिश्ते आपस में मजबूती के साथ बंधे रहते हैं। अपने पूर्वांचल में मनाया जाने वाला गोवर्धन पूजा और रक्षाबंधन के अलावा एक और व्रत है जो भाई बहन के रिश्ते से संबंधित है, जिसे माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकम तिथि को मनाया जाता है। जी, हम बात कर रहे हैं पीड़िया व्रत की, जिसमें बहने दिन भर निर्जला व्रत करने के बाद शाम को रसियाव और दही चूड़ा खाकर व्रत पूर्ण करती हैं। और इस व्रत में ये भी मान्यता है कि रसियाव खाते समय भी मौन व्रत रखना होता है। और लड़कियां अपने भाई की संख्या के आधार पर सोरैया निगलती हैं। भाई की संख्या के अनुसार प्रति भाई 16 धान से चावल निकालकर सोरैया निगला जाता है। इस व्रत की तैयारी गोवर्धन पूजा से शुरू हो जाती है, यानी उसी के गोबर से घर की दीवारों पर पीढ़िया लगाई जाती है। और पीढ़िया व्रत की सुबह दूज के दिन इसे निकालकर नदी या पोखरे में प्रवाहित किया जाता है। इस एक महीने में हर दिन लड़कियां रात में जहां पीढ़िया लगाई होती हैं वहां पूजा करती हैं और रात में जागकर पीढ़िया गीत भी गाती है। श्रोताओं, अब बात करते हैं मानसून के शुरुआत में मनाए जाने वाले आदर या आदरा पर्व की, जो कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खास करके गांव में मनाया जाने वाला पर्व है। हाँ, और जो ऋषि, वर्षा और हरियाली से जुड़ा है। इसमें बनने वाले पकवान में आलू परवल की रसेदार तरकारी यानी सब्जी, दाल भरी पूड़ी, खीर, और हाँ, इसकी थाली में पका आम काटकर जरूर परोसा जाता है। इसे आर्द्रा पर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आर्द्रा नक्षत्र में मनाया जाता है, जिसमें इंद्र देवता की पूजा की जाती है। इस पर्व में गंगा स्नान और उपवास की भी परंपरा है। घर की महिलाएं हरियाली की पूजा करती हैं और फिर आती है धान की बुआई की शुभ घड़ी। सचमुच ये पर्व गाँव में आज भी खेतिहर गीतों की गूंज और उत्सव का माहौल दे जाता है। इसी तरह हमारे पूर्वांचल का एक खास त्योहार है जीवतिया, जिसे संतान की सुरक्षा और समृद्धि के लिए मनाया जाता है, जिसमें माताएं दिन भर निर्जला व्रत करके दूसरे दिन पारण करती हैं। सचमुच त्याग और आस्था को दर्शाता ये पर्व बार बार माँ के वात्सल्य को मन में उकेर देता है। तभी तो माँ सिर्फ जननी नहीं, जीवन के सृजन के साथ साथ आजीवन सुरक्षा के लिए ना जाने कितने जतन करती हैं। कई जगहों पर आज भी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद घर यानी देर से जल ग्रहण किया जाता है अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार। इस पर्व के पहले रात पे पूड़ी, सतपुतिया की सब्जी और नोनी का साग बनाया जाता है, जिसे व्रत के दिन भोर में तरोई के पत्ते पर चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही दही चूड़ा और गुड़ भी चढ़ाया जाता है। फिर इसी प्रसाद को सुबह खाया जाता है और जीवतिया व्रत शुरू होता है। और हाँ, इस पकवान में से चील और सियार को भी समर्पित किया जाता है, जो ये दर्शाता है कि हमारे पर्व न केवल हमारे लिए बल्कि प्रकृति से जुड़े हर जीव जंतु भी इससे जुड़े हैं। प्रकृति के इन सभी चीजों में उनका भी अंश है। तभी तो व्रत के दिन शाम को बरियार के पौधे की पूजा की जाती है, उनको अकवारी दी जाती है। इस पौधे से पुत्र को अपने ही जैसा बरियार यानी मजबूत बनाए रखने की माताओं द्वारा प्रार्थना की जाती है। श्रोताओं, जीवतिया पर्व का प्राकृतिक और पर्यावरणीय महत्व भी है। यह त्योहार प्रकृति के साथ संबंध को दर्शाता है क्योंकि यह उपवास और पूजा के माध्यम से प्रकृति के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करता है।
0: पूर्वांचल के विभिन्न उत्सव और त्यौहार, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे भावेश मिश्रा से ये वार्ता। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
5: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
4: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
5: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
4: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
5: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
6: स्वच्छता से ही मिलेगी खुशहाल और सुरक्षित जिंदगी।
7: स्वच्छता का संकल्प लाओ, गंदगी को दूर भगाओ,
6: कूड़ेदान में कूड़ा डालो, साफ सफाई का ध्येय अपनाओ,
7: हर गली हर मोहल्ला हो साफ, स्वच्छता से ही मिलेगी खुशियों की सौगात।
6: स्वच्छता का ये संकल्प लें, गंदगी को दूर भगाएं,
7: हर जगह स्वच्छता का दीप जलाएं, स्वस्थ और सुंदर जीवन को अपनाएं।

जब दिल ने किसी को याद किया हो, जब कोई धुन दिल में उतर गई हो और कभी किसी को सुनाना हो कोई गीत, तो बस आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आ रहा है आपके दिल की आवाज, जहां आपके प्यार भरे संदेश और आपके पसंदीदा गीत बनेंगे किसी की मुस्कान। तो उठाइए फोन, कीजिए हमें कॉल हर शनिवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0551-220-5386 और आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं हर रविवार 10:05 पर। हमें रहेगा आपका इंतजार, जहां दिलों की दूरियां गीतों से मिटती हैं।

आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। इसमें आज कलाकार हैं वनिता सिंह।

शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इसमें कलाकार हैं वनिता सिंह।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार थी वनिता सिंह। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 14.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही क्षणों में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में PWD की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले BJP मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 9 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम TVK के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
3: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में TVK 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में TVK नेता अधव अर्जुन ने बताया कि VCK और IUML दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे TVK की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि TVK पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, VCK और IUML से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सही

0: सहयोगी पार्टियों के दो दो विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. Five MLAs also sworn in as Cabinet Ministers. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IUML and left parties. Set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects during his day-long visit to Karnataka and Telangana tomorrow. Enforcement Directorate arrests Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in alleged money laundering case. And in archery, India's Sahil Jadhav wins bronze medal in men's individual compound event at World Cup Stage 2 in Shanghai. Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, five other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtania, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as Cabinet Ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naveen and several other leaders of the BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishakh, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. We have more from our correspondent.
5: After taking the oath as Chief Minister of West Bengal, Shubhendu Adhikari held meeting with the Chief Secretary, Home Secretary and other officials of the state at the PWD tent at Maidan. Meanwhile, renovation works are underway at the Writers' Building in Kolkata for reshifting of the Secretariat of the State Government, which was shifted from this heritage building to the Navanno after Mamata Banerjee came to power in 2011. The new BJP government will work from the Writers' Building, which is a heritage structure. In an important development today, Special Observer for the West Bengal for SIR, retired IAS officer Subroto Gupta has been appointed as the advisor to the Chief Minister of West Bengal and the 2017 batch IAS officer Shantanu Bala appointed as the personal secretary to the CM. It is learned that on 30th May, the newly elected MLAs of West Bengal will take oath at the assembly in Kolkata. Kollan Laha reporting from Kolkata.
4: The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats. Prime Minister Modi congratulated Shubhendu Adhikari on taking oath as Chief Minister of West Bengal. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay today met Governor Rajendra Arlekar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form the government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is set to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu tomorrow. Tamilaga Vetri Karagam, TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from the Congress, left parties, Vidutalai Chiruthaigal Kachi, VCK, and the Indian Union Muslim League, IUML. Vijay, who won from two assembly constituencies, will have to vacate one seat, reducing the TVK's strength to 107. The combined strength of the supporting parties, including the Congress with five MLAs and CPI, CPIM, VCK and IUML with two MLAs each, stands at 13. Our correspondent has filed this report.
6: TVK leader Joseph Vijay met the governor along with the supporting MLAs of the Congress, the left party CPI and CPM, VCK and the IUML to form the government. 6 days after the results, this is the fourth time that he met the governor on the issue of having a majority. The governor had earlier cancelled the appointment and was to leave for Kerala, but then he invited the TVK leader to once again meet him today. The party has 120 MLAs for support. Apart from the Congress, who broke the alliance with the DMK, rest of the parties have rendered unconditional support. DMK leader and former Chief Minister MK Stalin, AIADMK General Secretary Edappadi Palaniswami extended greetings to the new government which is to be formed tomorrow. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
4: Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana tomorrow. Mr. Modi will first travel to Karnataka to participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. He will also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Thereafter, Prime Minister Modi will travel to Telangana to lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. These projects collectively aim to strengthen connectivity, improve logistics efficiency, enhance safety and provide a better travel experience for people. Later in the day, Mr. Modi will reach Jamnagar on a two-day visit to Gujarat. On Monday, Mr. Modi will participate in Somnath Amrit Mahotsav, marking the 75th anniversary of the restoration of the Somnath Temple. As part of the celebrations, the Prime Minister will participate in a series of auspicious religious and cultural events. Our correspondent reports, the five-day celebrations underway in Gujarat highlight the historic significance of the temple and celebrate its enduring legacy.
7: The celebration honors the enduring legacy of the Somnath Temple. It marks 1,000 years since the first recorded attack on the Somnath Temple in 1026. Somnath Temple holds a sacred place as the first among the 12 Adi Jyotirlingas of Lord Shiva. Somnath Temple has been repeatedly ravaged and plundered by invaders over centuries. Every time, devotees and rulers have rebuilt it and restored its lost glory. Somnath Temple, therefore, stands as a testimony to India's unshattered faith that has risen victorious over repeated assault over centuries. The festivities will culminate on 11th of this month with a grand Kumbh Abhishek at the temple spire using water from 11 sacred shrines. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
4: The Prime Minister will also travel to Vadodara, where he will inaugurate the Sardar Dham Hostel. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Atal Pension Yojana have completed 11 years of providing social security cover to citizens across the country. Prime Minister Narendra Modi highlighted the impact of the schemes launched by the NDA government 11 years ago. He stated that these initiatives reflect the government's commitment to ensuring dignity, assurance and financial security for the people of the country. Mr. Modi noted that the PM Jeevan Jyoti Bima Yojana and PM Suraksha Bima Yojana have positively impacted lives at the grassroots level and strengthened the social security framework in the country. Highlighting the benefits of the Atal Pension Yojana, Mr. Modi said the scheme has enabled several people to lead a more secure life in their old age and reflects the government's commitment to making social security accessible and inclusive. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. India has conducted a successful flight trial of an advanced Agni missile with MIRV, Multiple Independently Targeted Re-entry Vehicle System, from the Dr. APJ Abdul Kalam Island in Odisha. In a social media post, the Defence Ministry said the missile was flight tested yesterday with multiple payloads targeted to different targets spatially distributed over a large geographical area in the Indian Ocean region. Defence Minister Rajnath Singh has complimented DRDO, Indian Army and industry on the successful flight test of Agni missile with MIRV capability. Mr. Singh said the achievement will add an incredible capability to the country's defence preparedness against the growing threat perceptions. The government has announced the winners of the National Panchayat Awards 2025. 42 panchayats from across the country have been selected for the honours. According to the Ministry of Panchayati Raj, Karnataka has secured the highest number of awards with 6 panchayats, followed by Andhra Pradesh and Odisha with 5 awards each. The award distribution ceremony will be held in New Delhi on the 3rd of next month. The winning panchayats will receive financial incentives ranging from 50 lakh rupees to 5 crore rupees. The ministry said the awards aim to encourage inclusive, participatory and sustainable development in rural India while strengthening grassroots governance in line with the vision of Vikasit Bharat 2047. The Enforcement Directorate, ED, has arrested Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in connection with an alleged money laundering case involving Hampton Sky Realty Limited. Earlier, the ED had conducted operations at five locations in Delhi, Gurugram and Chandigarh in connection with the case. The action was taken under the criminal sections of the Prevention of Money Laundering Act, PMLA 2002. The case pertains to alleged large-scale money laundering through fake GST purchases of mobile phones worth over 100 crore rupees and subsequent exports to round-trip illegitimate funds from Dubai to India. The ED reportedly obtained multiple fake GST purchase bills from non-existent firms based in Delhi to claim fake input tax credit and GST refund on export credit and duty drawback benefits. The Central Bureau of Investigation, CBI, today conducted searches at 17 locations in Mumbai with three cases registered against Reliance ADA Group companies in connection with alleged frauds involving thousands of crores of rupees. The CBI said these searches were conducted at the residential premises of directors of the companies as well as at the office premises of intermediary companies whose accounts were used for diversion of bank funds. The CBI informed that the total quantum of alleged loss in these cases is 27,337 crore rupees. The United States has said it is awaiting Iran's formal response to a proposed 14-point framework aimed at preventing a wider regional conflict, even as fresh military and political tensions continue across West Asia. U.S. Secretary of State Marco Rubio said Washington remains engaged in diplomacy, while President Donald Trump indicated that Tehran's reply could determine the next phase of negotiations. Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi criticized recent American military actions, accusing Washington of undermining diplomatic efforts through escalation. The India Meteorological Department, IMD, has predicted heavy rainfall over Kerala, Lakshadweep, South Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 to 3 days. The weather agency has issued a yellow alert for heavy rainfall in 7 districts of Kerala till tomorrow. Fishermen have been advised not to venture into the sea along the coasts today due to rough weather conditions. The Wrestling Federation of India, WFI, today issued a show cause notice to grappler Vinesh Phogat, accusing her of indiscipline and anti-doping rule violations. In the 15-page notice, the WFI said Vinesh is ineligible to compete in domestic events until the 26th of June this year for not completing the mandatory 6-month notice period required for athletes returning from retirement under UWW anti-doping rules. The Federation has sought her explanation on 4 broad charges, including her disqualification from the 2024 Paris Olympics. She has been given 14 days to respond to the notice. In archery, India's Sahil Jadhav won a bronze medal in the men's individual compound event at the World Cup 2026 Stage 2 in Shanghai, China today. The 25-year-old Maharashtra archer defeated Denmark veteran player cum coach Martin Damsbo 147-144 in the bronze medal playoff to secure India's first medal of the ongoing tournament. In IPL cricket, Gujarat Titans were 221 for 4 in 19.2 overs against hosts Rajasthan Royals in Jaipur when reports last came in. Rajasthan Royals won the toss and opted to bowl. Last night, Kolkata Knight Riders defeated Delhi Capitals by 8 wickets in Delhi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. 5 MLAs also sworn in as Cabinet Ministers. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IUML and left parties, set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects during his day-long visit to Karnataka and Telangana tomorrow. Enforcement Directorate arrests Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in alleged money laundering case. And in archery, India's Sahil Jadhav wins bronze medal in men's individual compound event at World Cup Stage 2 in Shanghai. That is all in the news at 9. Good night.

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं, शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928 6 जनवरी महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धोंडोपंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से। मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले, लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष की ये यात्रा जिसमें अनगिनत आवाजें घुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाये हुए हैं, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियां हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। अब आज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे, मुझे कहने दीजिए, अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है, लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें अपनी चीजें? आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो उस दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगू थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात करूं, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेती थी और उस कहानी को बयान करती थी, उस कहानी की वही नायिका है। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं पूरा। तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था, उसने हमारा शेपअप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरीय नहीं समझा जाता था। तो नहीं, बहुत छोटी कलाकार हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से ये जरूर यहाँ अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने FMs हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पे बनाएगा? यदि हम भी वही सब करने लगे तो मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुनाए। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही आकाशवाणी की वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। दो बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहां भी यहाँ भी। वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे खाटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहां के पारंपरिक लोक कलाकार, उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते, आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में कैसे, वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता है आज फिर से उसी तरह से उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है, वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप 2-2 गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहाँ, जब आप वहाँ पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर्ड नहीं था। फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए भी था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि उस सबके लिए कुछ ना कुछ है।

0: पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है, और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं, विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी बहुरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता, पर समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी 100-100 रंग।
1: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैक्लुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
2: लेकिन सच तो ये है कि मैक्लुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है, जहां पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
1: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
2: ये दिन महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं, बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
1: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है, जहां 7 समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR।
2: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है, जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
1: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
3: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय, एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया, क्योंकि ये माना गया कि वे फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है, उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाई, जो हमारे 2-3 वर्टिकल हैं, उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का ना केवल प्रचार प्रसार करें, बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र, वो विश्व में हैं, और हमारे 11 ऑफिस जो हैं वो भारत के अंदर हैं, प्लस जो हमारे भारतीय मिशन हैं और दूतावास और प्रधान कौंसल, वो हैं 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपने सभ्यता, संस्कृति, अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं, और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट, विदेशी आर्टिस्ट हैं, जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती, और वो सबके लिए आनंद का विषय है। और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्र

0: को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है और 4000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती हैं और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप है जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7 से 8 हजार स्टूडेंट्स हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल ब्रांड एम्बेसडर्स।
1: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे। सुनिए इन आवाजों को जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छाव में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया।
2: नमस्ते प्यारे दोस्तों, मेरा नाम एके जुगबाय है। 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली। मुझे 1 साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ।
3: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है। मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली केंद्र में हिंदी का 1 साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और PhD का कोर्स भी पूरा किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग के स्टेट यूनिवर्सिटी में और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है भारतीय लोगों के साथ। मैंने बहुत काम किया है अनुवाद के क्षेत्र में और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में जो कि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए। हमारे पढ़ाई के दौरान हम ICCR के 2 टूर ले पाए और हम गए थे मुंबई, गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे। और ICCR के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए। और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अलग अलग देशों के दोस्त हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है। और मैं सबको ये बोलूंगी, भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए और आपको सफलता मिलेगी।
4: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
1: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है। चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो या भारतीय संगीत की मधुर तान, दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है।
4: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।
1: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
4: और मैं प्रांजल।
5: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी 100-100 रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर। आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी। वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं। सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी। वोकल फॉर लोकल हुनरमंद।
6: मेरा नाम सुनीता जाखड़ है। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ। तो उसी से मेरा आइडिया है। मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, 1-2 स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया। फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट्स को। फिर और हौसला बढ़ाते रहे, मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मैं जो भी हूँ अपने

0: कस्टमर्स की वजह से ही वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना जीपर्स होना चाहिए, इतने इसमें वेट होना चाहिए, चाहिए कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B मैं एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ। बाकी दो अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे इसमें शेखावटी की हवेलियां मैंने बनाई है, इस पे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहां का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहां से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊं। मैं हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है।
1: मेरा नाम साक्षी है और मैं भादरगढ़ हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है, हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है। तो मैं उसके ऊपर कार्य कर रही हूँ। जिससे मैंने बहुत बचपन से ही करते थे तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी तो उन्होंने भी बहुत सारा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशंस में भी जाते रहते थे बचपन से। तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे, लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन्स हैं जो ये कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीश लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9 से 10 साल हो गए हैं मुझे आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे तो उसके बाद मुझे मौका मिला ताकि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भादरगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा, श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, वो वहाँ पे आए थे तो मैंने उनका काम देखा, फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली। तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
2: मेरा पूजा राहुल नाम है, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ के साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है, हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस। जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इतनी जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते हैं कारीगर घर में जो काम करते हैं पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
3: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद, सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।
4: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को। हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
5: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
4: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
5: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
4: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है, बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
6: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बहुत देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब

0: होती है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो है वो एक साथ मिलके रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज है, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट्स, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पर लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रैलिक ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से ले में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए, हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है कंपैशन, विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहा है।
1: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद
2: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।
1: ये आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
2: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
3: भारत में और भारत की यह वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पिलर के रूप में है। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और क्योंकि निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए देश और दुनिया से अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले हैं, स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है, एक नई जो है उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं ये मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
2: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
1: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूँ और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल
2: और मैं नेत्रा।
4: बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है, और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पीवी काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया, और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ।

0: राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। उधर तमिलनाडु में तमिलग वेत्री कड़गम TV के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में TV के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता
2: तथा ICCR के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। वे भारत एवं विदेशों में एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में अनेक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं।
3: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स National Program of Music, we bring to you a Santoor recital by Rajkumar Majumdar. Rajkumar Majumdar is one of the most versatile Santoor players in India, renowned for his distinctive style and exceptional tonal quality. His performances are widely admired by music connoisseurs, particularly for his remarkable ability to play the santoor with both hands in a vibrant and dynamic manner, creating a truly captivating musical experience. He began his musical journey with training in tabla under his father, the eminent classical vocalist, late Sangeet Sadhak, Pandit Prashant Majumdar. He later underwent advanced training in tabla under illustrious gurus including Pandit Prem Ballab of the Delhi Gharana, Professor Gyan Prakash Ghosh of the Farrukhabad Gharana, and the legendary Pandit Samata Prasad of the Banaras Gharana. A gold medalist in tabla, his deep understanding of rhythm laid a strong foundation for his musical evolution. During this period, he was inspired to learn the santoor under the guidance of the legendary santoor maestro, Pandit Bhajan Sopori of the Sufiana Gharana. His innate sense of rhythm combined with melodic sensitivity enabled him to emerge as a distinguished instrumentalist, earning accolades at both national and international levels from various prestigious musical organizations. Rajkumar Majumdar is an A-grade artist of All India Radio and Doordarshan and an empaneled artist of ICCR. A celebrated performer in India and abroad, he has presented his art on numerous prestigious occasions.
2: आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उजित उदय कुमार। राजकुमार मजुमदार अपने कार्यक्रम का आरंभ राग जनसमोहिनी से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप जोड़ और झाला। विलंबित रचना रूपक ताल में निबद्ध है और मध्य लय रचना 3 ताल में निबद्ध है।
3: He is accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. Rajkumar Majumdar begins his santoor recital with rag Jansammohini, presenting Alap, Jod and Jhala. Vilambit composition is set to Rupak Tal and Madhyalay. Drut composition is set to Teen Tal.

0: ये था राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जनसम्मोहिनी। राग जनसम्मोहिनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। मध्य लय व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was Rag Jansammohini. Continuing his recital, he now presents Rag Abhogi. Madhyalaya and Drut composition is set to Teen Taal.

0: अभी आप सुन रहे थे राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उजित उदय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: You just heard Santoor recital by Rajkumar Majumdar. With this, we come to the end of tonight's national program of music. He was accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: द दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R. N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, five other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shuddhiram today were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naveen and several other leaders of BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishakh, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay today met Governor Rajendra Arlekar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is said to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu tomorrow. Tamilaga Vetri Karagam TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from Congress, left parties, Vidudalai Sirithagai Kachi, VCK and the Indian Union Muslim League, IUML. Vijay, who won from two assembly constituencies, will have to vacate one seat, reducing TVK's strength to 107. The combined strength of the supporting parties, including Congress with five MLAs and CPI, CPIM, VCK and IUML with two MLAs each, stands at 13. The top brass of the Congress party today held a meeting in New Delhi to discuss government formation in Kerala. The meeting convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence was attended by senior party leader Rahul Gandhi, party general secretary in charge of the state Deepa Dasmunshi, general secretary organization KC Venugopal and senior Kerala leaders Ramesh Chinnitala and VD Satheesan. The party said Congress Chief Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala Chief Minister and the name will be announced very soon. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana tomorrow. Mr. Modi will first travel to Karnataka to participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. He will also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Thereafter, Prime Minister Modi will travel to Telangana to lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. These projects collectively aim to strengthen connectivity, improve logistics efficiency, enhance safety, and provide a better travel experience for people. Later in the day, Mr. Modi will reach Jamnagar on a two-day visit to Gujarat. India has conducted a successful flight trial of an advanced Agni missile with MIRV, Multiple Independently Targeted Re-entry Vehicle System, from Dr. APJ Abdul Kalam Island in Odisha. In a social media post, the Defence Ministry said the missile was flight tested yesterday with multiple payloads targeted to different targets spatially distributed over a large geographical area in the Indian Ocean region. Defence Minister Rajnath Singh has complimented DRDO, Indian Army and industry on the successful flight test of Agni missile with MIRV capability. Mr. Singh said the achievement will add an incredible capability to the country's defence preparedness against the growing threat of perceptions. In archery, India, Sahil Jadhav won a bronze medal in the men's individual compound event at the World Cup 2026 Stage 2 in Shanghai, China today. The 25-year-old Maharashtra archer defeated Denmark veteran player-cum-coach Martin Damsbo 147-144 in the bronze medal playoff to secure India's first medal of the ongoing tournament. And with that, we end this news bulletin.
3: मीडियम वेव 330.03 मीटर, अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10:20 हुए हैं। आज की यह सभा अब सम्पन्न होती है। कल सवेरे 5:52 पर अपने प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।